आप कोई भी स्टोरी डालते हैं ऑनलाइन फॉर 20 सेकंड, 20 सेकंड की जो स्टोरी डालते हैं उसमें डेटा आपका इज इक्विवेलेंट टू लिसनिंग टू अस फॉर एन आर. सो यस, बने रहिए होम सिक रेमेडीज के लिए. 5599 नंबर जहां पे आप मुझे टेक्स्ट भेजेंगे. बचाओ क्या?

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। स्वागत करते हैं फिर से आपका। और ये रहा जो मैंने मैसेज पिक किया है फ्रॉम आर लिसनर क्यूरा केतन। स्पेंड माय एंटायर सैटरडे स्टैंडिंग इन द फ्रीजिंग रेन इन अ लाइन ऑफ 40 पीपल जस्ट फॉर अ 10 मिनट फ्लैट इंस्पेक्शन। ओह, बैक होम फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव वाज सो सिंपल। यू जस्ट टॉक टू समवन इन द नेबरहुड, shook hands and moved into a spacious home with yard. Here in Auckland, you have to submit bank statement, payslips, personal references and practically audition just to rent a tiny cold bedroom for $300 a week. Standing in that queue feeling like a complete stranger in cold city made me so homesick for the warmth and ease of home. काफी दर्द आपके इस मैसेज में दिख रहा है। मेरा कॉल तो ये रहेगा, सबसे पहले तो ऑफकोर्स रेंटल नाइटमेयर की जो बात की है वो थोड़ी सी तो प्रॉब्लमेटिक है, और काफ़ी हद तक मैं एग्री भी करूंगा कि इतना वो नहीं होना चाहिए। कुछ लूपसोल है उसे फिक्स करना चाहिए वैसे तो। बट यस, ये जो यहाँ एक छोटे से कमरे के लिए आप 40 लोगों की लाइन में ठंड में खड़े होने हैं, और टेनेंसी एप्लीकेशन भरते वक्त ऐसा लगने जैसे कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो आप, ये एक्सपीरियंस किसी को भी डिसअपॉइंट कर सकता है। चाहे आप फीजी से हो या फिर इंडिया से या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, वहाँ पे घर ढूंढना रिश्तों, आपसी भरोसे और खुले दरवाजों पर चलता है। यानी कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं से रेफरेंस के थ्रू आपको मिल सकता है। यहाँ पे भी करता है बट नॉट एज फार एज आई नो उतना हद तक नहीं। पर यहाँ पर चीज़ जो है वो कुछ ज़्यादा फोकस करती है ऑन डॉक्यूमेंट्स और स्ट्रिक्ट फॉर्म्स, इन चीज़ों पे आके डेफिनेटली रुक जाती है। बट ऑफ कोर्स निखिल भाई, इस रेंटल क्यू वाले डिप्रेशन में अकेले बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज का होमसिक रेमेडी ये है कि सबसे पहले तो अकेले रूम ढूंढने की बजाय आप 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर पूरा हाउस रेंट पर लीजिए। यानी कि सिंगल रूम की बजाय आप पूरा घर साथ में ले तो वुड बी बेटर। ये मेरा कॉल है। कॉस्ट भी डिवाइड हो जाती है और साथ में जो बिल्स आते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। दूसरा, सिर्फ फॉर्मल रियल स्टेट वेबसाइट पर डिपेंड मत रहो, लोकल देसी कम्युनिटीज बोर्ड्स या फिर फ्लैटमेट ग्रुप चेक करो जहां डायरेक्ट लैंडलॉर्ड्स मिलते हैं और बात सीधी आपसी भरोसे पर हो जाती है। यानी कि अगर आप किसी टेंपल में या फिर गुरुद्वारा या फिर मॉस्क या फिर यू नो एनी वे यू वांट टू गो चर्च, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिटी बोर्ड्स होते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। एंड आई होप यू फाइंड द बेटर प्लेस, और यू ऑलरेडी डिड। बट थैंक यू अगेन फॉर दिस लवली मैसेज निखिल भाई। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का।
1: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: For 75 years, Fiji Oasis connected Fiji to the world and brought the world closer to home. From the very first flight to the journeys they take today, Fiji Oasis has been bringing families together, welcoming loved ones home and carrying dreams across the world. Now, Fiji Airways celebrates 75 incredible years with their special 75th anniversary sale. Only for a limited time, book now at fijiairways.com. Fiji Airways, 75 years connecting Fiji to the world.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hai. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. To jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
8: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a Dash. Now that's a good call. Dash!
9: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है बिल्कुल मौसम की तरह कभी धूप कभी बादल अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
10: Make layovers something to look forward to with the American Express Gold Rewards business card. You can earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Plus, enjoy 2 priority pass visits each year in over 1,300 airport lounges worldwide. Search Amex Business and turn payments into points. Offer ends 14th of December 26, 1.5k minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. T's and C's for membership rewards and lounge exclusions apply. Priority pass enrollment required.
11: Please use your imagination for the following ad.
12: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
11: Imagine winning $4 million this Wednesday. Play in store or online.
2: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
1: Lunchbox with Ketan.
13: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
1: Hum. Office shout out.
0: ये रही ऑफिस शाउटआउट के मैसेजेस आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे पढ़ूंगा मैं एक आया है मुझे लेकिन आई वांट टू हैव फ्यू मोर तो आप मुझे भेज दीजिए 5599 पे बट मीनवाइल मैं आपको आपके लिए कुछ मैसेज पढ़ लेता हूं एक बात आपके साथ शेयर करता हूं मैं इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स Reach in and check how you are doing. Reach out and talk to a trusted professional. Support is available at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342 for free and confidential mental health support. Well, yes, ये तो थी बात message की, but yes, यहाँ पे message पढ़ लेता हूँ. दो और message आए हैं. So yes, Harish भाई कहते हैं. At office today and I bought a beef noodle bowl off for lunch. That's so cool. Thank you so much. Neha kehti hai, work from home today. My wife made... Hey? Neha kehti hai, my wife, sorry. Maybe either wo kuch aur bolna chahte aur my wife likha hua gaya. My husband bolna hoga meri khayal se. Made vegetable pulao and there you go ek just message aaya unka wo keh rahe hain sorry my husband made vegetable pulao for lunch today that's so cool thank you so much and aakhri message inhone apna naam likha hai but ye kehte hain on site today I packed a chicken souvlaki from home that's so cool yaar inhone likha hai my favorite cuisine is greek wow that's so yummy yaar
2: Of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

Well, न्यूजीलैंड की आज की खबर पढ़ लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। आज यानी कि आज है 9 तारीख और आज से करीबन 120 साल पहले 9 सितंबर को न्यूजीलैंड का पहला फैटल कार एक्सीडेंट हुआ था और जेनेट मैकल टिमरू के पास अपने फैमिली फार्म पर चलाते वक्त एक स्टीप मडी रोड पर कंट्रोल उन्होंने खो बैठे और कार का जो ओवरटर्न है वो होने के बाद उनकी जान चली गई। वैसे जेनेट एक एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंट ड्राइवर थी और उस वक्त कार्स में आज जैसे सेफ्टी फीचर्स भी नहीं हुआ करते थे। आई कैन सी द फोटो देयर, बहुत ही कार तो बहुत ही बढ़िया लग रही है बट अगेन स्पीड भी उतनी नहीं हुआ करती थी और रोड जो थे वो भी इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज है। एंड उस टाइम प्रॉपर सड़क भी वैसे नहीं थी, वहाँ पे जानवर और ये सब जो है आसपास आते रहते थे, सो देयर कुड बी अ मैनी और प्लेंटी ऑफ डिफरेंट रीज़न ऑफ हैविंग दिस, ये फेसिंग दिस एक्चुअली। सो या फोटो काफ़ी वैसा है लाइक ऑब्वियसली एक्सीडेंट होते हुए भी दिख रहा है एंड देन द वेरी फर्स्ट कार जो उनकी पहली फ़ोटो थी वो भी उन्होंने वहाँ पे लगाई है। बट यस 1906 में हुआ था, तब मेरे ख्याल से कार्स का नया चलन ही हुआ था, नॉट वेरी फार फ्रॉम एक्चुअली लॉन्चिंग। बट यस मेरा सवाल पता है यहाँ पे क्या है, न्यूजीलैंड में पहली कार कब आई? पहली कार कब आई, कौन से साल में आई, ये मेरा सवाल है आप सभी से। बताइए मुझे 5599 पे।

0: वेलकम बैक। वेल, एक सवाल किया था मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कि न्यूजीलैंड में कौन सी और कब पहली कार आई थी, तो आपने जवाब तो नहीं दिया। आई एम प्रीटी श्योर दैट शायद आपको पता नहीं होगा, बट विच मेक सेंस यार, इट इज नॉट ईजी टू कीप यू नो ऑल द नॉलेज इन योर स्टोर। और देयर यू गो, एक मैसेज आया, उन्होंने कहा है 1890s, देखते हैं जवाब क्या सही है, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, अभी पढ़ लेते हैं। वेल, न्यूजीलैंड की जो पहली इंपोर्टेड मोटर कार थी वो थी दो बेंज व्हीकल तीन, या जिनके नाम लाइटनिंग और पेट्रोलेट थे, और ये 19 फरवरी 1890, अरे वाह क्या बात है, क्लोज इनफ यार, 19 फेब 1898 को वेलिंगटन पहुंची थी। उसकी पता है डिटेल्स क्या थी, की डिटेल्स, पहली कार तो थे इनमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विलियम मैकलीन ने फ्रांस से इंपोर्ट किया था, और ये न्यूजीलैंड आने वाली पहली इंटरनल कंबशन इंजन ऑटोमोबाइल्स थी। उसकी जो तारीख है 19 फरवरी 1898 को एक स्टीमर शिप के जरिए वेलिंगटन पहुंची थी। मैकलीन ने इन दोनों गाड़ियों का नाम लाइटनिंग और पेट्रोलेट रखा था, और लेकिन उसका रूल भी कुछ बनाए गए थे, इन गाड़ियों को चलाने के लिए एक अलग कानून बनाना पड़ा था। इन्हें इनके आने से पहले हॉर्सलेस कैरिजेस के लिए कोई लॉ नहीं था, इसीलिए मैकलीन ने जल्दी में मैकलीन मोटर्स कार एक्ट 1898 पास करवाया ताकि इन गाड़ियों को चलाना लीगल हो सके। दैट्स सो कूल राइट। बट क्या आपको न्यूजीलैंड की अर्ली रोड ट्रिप के बारे में पता है, एनी आइडिया, मुझे आप बता सकते हैं 5599 पे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
2: हम।
3: We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in

0: Securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
1: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off. Experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
2: Lunchbox with Ketan.
3: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
4: वेलकम बैक. वेल, न्यूजीलैंड में टूरिज्म फंडिंग को लेकर नेशनल पार्टी ने एक नया प्रपोजल अनाउंस किया है. बेड टैक्स को रूल आउट करने के बाद नेशनल का प्लान है कि इंटरनेशनल विजिटर लेवाई का एक हिस्सा डायरेक्टली लोकल काउंसिल को दिया जाएगा. प्रपोजल के मुताबिक अगले चार सालों में रीजन्स को टूरिज्म रिलेटेड स्पेंडिंग के लिए अराउंड $385 मिलियन मिल सकते हैं. फंडिंग में से $100 मिलियन हर साल डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन को मिलेगा. $50 मिलियन एक नए टूरिज्म प्रायोरिटीज फंड में जाएंगे और बाकी अमाउंट काउंसिल को इंटरनेशनल विजिटर मेंबर्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. ऑकलैंड और क्वींसटाउन को सबसे बड़े बेनिफिशरी में देखा जा रहा है. ऑकलैंड को पहले साल अराउंड 19.1 मिलियन मिलेगा और क्वींसटाउन को 17.1 मिलियन मिलने की एस्टीमेट है. नेशनल का कहना है कि ये फंडिंग विजिटर्स से आई लेवी से होगी और न्यूजीलैंडर्स पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा. फंडिंग काउंसिल्स को जुलाई 2027 से मिलना शुरू हो सकता है अगर नेशनल री इलेक्ट होती है तो.
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Welcome back. Well, आप बस बने रहिए because next hour में between 1 to 2 आपको एक बोर्डिंग कॉल का क्यू मिलेगा. उस क्यू को सुन के आपको फट से रुवा पे जाके बोर्ड नाउ कोड के साथ सबमिट कर देना है, बिकॉज ये मौका आपको ठीक एक घंटे के लिए वैलिड रहेगा जैसे ही आप क्यू सुनते हैं तो. और उस एंट्री के साथ ही आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं. पहले तो थैंक यू सो मच टू सोलोमन एयरलाइंस. Flying 4 times each week, non-stop from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com पर. Terms and conditions do apply. और साथ में आपको $1,000 की spending money भी मिलने वाली जो आप वहाँ पे use कर सकते हैं. What a time यार, what a perfect time before you get back to summer, full time and very busy schedule.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल आज जान लेते हैं। 18 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 20% चांस है बारिश के, लेकिन आज का सनसेट होगा 6:08 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे।
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। स्वागत करते हैं इस आर में फिर से आपका। वेलियस बने रही, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे गपशप करने हैं आपसे, बस रूबरू होने का मौका चाहिए मुझे। तो यस, ये ब्रेक के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ, आप बस बने रहिए, बहुत सारी बातें करनी है। आप सबसे पहले तो ये गाना सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत है, और साथ में आप मुझे इस आर में ये भी एक्सपेक्ट करिए दैट आप एक तो ऑफकोर्स बोर्डिंग कॉल का क्यू भी मिलने वाला है, लेटेस्ट खबर भी मिलने वाली है, बॉलीवुड की खबर भी मिलेगी, और साथ में चटपटी और भी लेटेस्ट खबर यहाँ न्यूज़ में क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए।
0: बचाओ क्या?
3: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ, बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब,

0: हम पॉडकास्ट के लिए आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आए हैं। सबसे पहले तो एसीटी पार्टी की इमिग्रेशन स्पोक्सपर्सन डॉक्टर परमजीत पमान ने विजय एंड पूजा को ज्वाइन किया है और उन्हें एक्सप्लेन किया है द पार्टीज न्यू इमिग्रेशन प्रपोजल। पीआर होल्डर्स के लिए प्रपोज्ड 2 साल का न्यूजीलैंड में रेसिडेंस, एवरी रोलिंग 5 ईयर रूल, एक्सेप्शंस और करंट पीआर होल्डर पर इसका इम्पैक्ट, सब पर डिस्कशन हुआ है, जिसे आप सुन सकते हैं कंप्लीटली फ्री रो ऐप के जरिए, मतलब डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। डेटा होना पड़ेगा, मेरे को लगता है डेटा तो डेफिनेटली वहाँ पे चाहिए आपको, बिकॉज उसके थ्रू नहीं कर पाएंगे, बट डेटा भी बढ़िया यार, आप 1 घंटे का सुन सकते हो फॉर जस्ट इक्विवेलेंट टू 20 सेकेंड्स ऑफ रील यू पोस्ट ऑनलाइन। टेक्स्ट BF 5599 पे आपको भेजना है BF, ताकि आपके फ़ोन पर लिंक ऑटोमेटिकली पहुँच जाए। अनफिल्टर्ड की तरफ से क्रिएटर अभी उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है रिगार्डिंग बिकमिंग वन ऑफ न्यूजीलैंड रिकॉग्नाइज्ड साउथ एशियन कम्युनिटी वॉइसेस, स्पेशली फॉर द फीजी इंडियन कम्युनिटी। न्यू कंट्री में सेटलिंग, कॉमेडी, प्रैक्टिकल टिप्स और कंटेंट क्रिएशन की ग्रोइंग बिजनेस पोटेंशियल पर कैंडिड कन्वर्सेशन, ये बात उन्होंने कही है। ड्राइव लिख के 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप तक फुल ऑडियो लिंक पहुंच जाए। अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्मे को भी आप सर्च कर सकते हैं रो ऐप पे या फिर स्पॉटिफाई पे।
1: लंच बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
2: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
3: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
6: MediaWorks complaints. How can I help?
7: Yeah. Hello.
6: Hi.
7: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
6: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
7: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
6: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
7: Great. Sing it to me.
8: Advertise with
9: MediaWorks.
8: New Zealand listens to us.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह,
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस।

0: RNZ. Lunchbox with Ketan. मुझे पसंद है लड़का. हम.
1: Welcome back. ये रहा लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत. और यहाँ पे इन्होंने बात कही है निशा ने हेंडरसन से. इन्होंने मैसेज किया है, वो कह रही है, माय रेंट इज अबाउट पीपल हु कीप स्नूजिंग देयर अलार्म एंड देन कंप्लेन दे आर ऑलवेज लेट. इफ यू नो यू नीड एन आवर टू गेट रेडी, व्हाई सेट द अलार्म फॉर 30 मिनट्स बिफोर लीविंग. दैट इज सो ट्रू. मोस्टली तो घर पे ही होता है, बट घर पे तो सुना भी सकते, पड़ोस में क्या सुनाए. बट इनफैक्ट काफी लोग शेयर भी करते हैं फ्लैट्स, वहां पे भी हो सकता है कुछ यू नो इस तरह की. मतलब मेरे साथ तो होता था, बट मेरे साथ अलार्म से ज्यादा इरिटेटिंग होती थी स्नोरिंग. और मुझे कहीं कहीं लगता है कि यार मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि इतना ज्यादा मैंने उस इंसान को सुनाया है स्नोरिंग की वजह से कि मुझे लगता है कि वो कर्मा हो रहा है मेरे साथ. इफ यू नो व्हाट आई मीन. बहुत सुनता हूँ, बहुत गालियाँ पड़ती मुझे घर पे, बट वैसे अच्छा हूँ मैं. कुछ बढ़िया. आप किस लेवल पे अपने आप को आउट ऑफ 10 कितनी रेट करेंगे आपके हस्बैंड को या फिर आपकी वाइफ को या फिर आपकी सिबलिंग्स को इन टर्म्स ऑफ स्नोरिंग. 5599 में बताइए. आप बिना नाम दिए भी बता सकते हैं. जस्ट से कि माय हस्बैंड इज लाइक यू नो आई वुड रेट हिम 10. 10 इज लाइक लिटरली यू कैन नॉट स्लीप एट ऑल. आपको उससे ना 10 से 15 मीटर दूर रहना पड़ता है. और अगर यू नो देन यू कैन रेट अकॉर्डिंगली. बट यस बताइए मुझे 5599 पे.
0: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: वेलकम बैक. सोचा यार एक और हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड बता दूं मैं. आज 50 साल पहले की कहानी है. 9 सितंबर 1976 को न्यूजीलैंड में एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ जिसने प्राइवेसी को लेकर काफी डिबेट शुरू कर दी थी. फांगरुई कंप्यूटर सेंटर न्यूजीलैंड के फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस थे और इस सिस्टम के थ्रू पुलिस, ट्रांसफॉर्म और जस्टिस ऑफिशियल्स एक ही नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे. डेटाबेस में व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर्स और फायरआर्म्स लाइसेंसेस, ट्रैफिक ऑफेंसेस, क्रिमिनल कन्विक्शंस और थाउजेंड्स ऑफ न्यूजीलैंडर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर थी. गवर्नमेंट के लिए ये क्राइम फाइटिंग का एक पावरफुल टूल था लेकिन सिविल लिबर्टीज ग्रुप के कंसर्न थे. क्या गवर्नमेंट के पास सिटीजन्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होना सेफ थी या नहीं? क्रिटिक्स ने इस सिस्टम को जॉर्ज ओवल के 1984 के बिग ब्रदर से कंपेयर किया. इंटरेस्टिंगली 1982 में फांगरुई कंप्यूटर सेंटर एक बॉम्ब अटैक का टारगेट भी बना. सेंटर इवेंचुअली 1995 में क्लोज हुआ और सिस्टम 2005 में डीकमीशन कर दिया गया. सो यस, 1976 की टेक्नोलॉजी ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया, कन्वीनियंस और प्राइवेसी के बीच बैलेंस कहां होना चाहिए.

वेलकम बैक। ये रही अभी के लेटेस्ट खबर। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी 2 साल की स्टैग्नेशन के बाद रिकवरी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक आगे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी होने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टूरिज्म रिकवरी और पहले की इंटरेस्ट रेट्स कट्स इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन हाई इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर और रिन्यूड मॉनिटरी टाइटनिंग हाउसेस और बिजनेस पर प्रेशर बना सकती है। रिपोर्ट्स में काउंसिल रेट्स कैप को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रपोज सिस्टम्स में एनुअल रेट इंक्रीजेस को इनिशियली 2-4% का टारगेट रेंज में रखने की बात की गई है। साथ ही डेटा सेंटर्स जैसे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी फोकस में है, क्योंकि इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ सकती है। मूडीज को ओवरऑल मैसेज है कि न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सिस्टम और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स रिकवरी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट फाइनेंसेस और ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को केयरफुली मैनेज करना होगा। जी हाँ, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो रिकवरी ट्रैक पर है, लेकिन रोड अहेड बिल्कुल स्मूथ नहीं है।

0: Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: सोना संसार पापा टोयोटा के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा टोयोटा, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड इस्तमा की लाइट्स, पापा टोयोटा।
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटा। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
7: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
8: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
7: हैवान, स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
9: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
8: ये आखिरी
7: हैवान, रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 11th सितंबर। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
10: ग्रेट न्यूज, flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
11: Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
11: इसके पीछे
13: हम।
11: लंच के मंच पे
14: बॉलीवुड से खबर लाया हूँ। बॉलीवुड की तरफ से ऑल टाइम टॉप ग्रॉसर लिस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स शामिल हो चुके हैं। पेज 3 पर ऑफ कोर्स बद्रीनाथ की दुल्हनिया सबसे ऊपर है, जिसने इंडिया में करीबन 116.68 करोड़ का कलेक्शन किया था लाइफ टाइम। उसके बाद गोलियों की रासलीला रामलीला 116.33 भी है, जय हो 116 करोड़ पर है। लिस्ट में अग्निपथ, रावण, गजनी, बर्फी, पुष्पा, द राइज और मुंजिया जैसे पॉपुलर फिल्म्स भी शामिल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलेटिवली न्यूयर फिल्म भी इस लिस्ट में स्ट्रांग पोजीशन बना रही है। सिकंदर करीबन 103.45 करोड़ में हो चुकी है और केसरी चैप्टर 2 ने 93.28 करोड़ का कलेक्शन हासिल कर लिया। लेकिन यह सबसे खास बात मिर्जापुर, जो अगर आप देखने गए हैं, नहीं देखने गए, आई एम नॉट श्योर, मैं तो देखने नहीं गया हूं, अगर आप देखने गए तो बताइए मुझे कैसी लगी। वो 100 करोड़ क्लब के करीब पहुंच चुकी है। किसी ने पोस्ट मारा था, इतना कलेक्शन तो उसने 3 सीरीज से नहीं निकाला जितनी एक फिल्म ने निकाल लिया है। दैट्स सो कूल, राइट? बट यस, आप मुझे बताइए अगर आपने फिल्म देखी तो कैसी लगी। 5599 पे
11: Lock your property's true sale value with

0: बाई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: वेल, बात करते हैं अब एक नए पॉडकास्ट की। जब 10,000 पब्लिक सर्वेंट स्ट्राइक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं जब तब पब्लिक

सर्विस पब्लिक सर्विस एसोसिएशन PSA के नेशनल सेक्रेटरी ड्वेन लियो ने करीबन कल सुबह द ब्रेकफास्ट शो में विजयन पूजा से बात की है और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। इसमें मेजर इंडस्ट्रियल एक्शन के पीछे के कोर इश्यूज पर बात की है। सो यस, इस पॉडकास्ट को अगर सुनना है तो आप इस इंटरव्यू को अगर सुनना है तो आप फट से मुझे BF लिख के 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक आप तक पहुंच जाए।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Kia ora, namaste, sat sri akaal, welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan hai aur aap bas bane rahi because is saal mein aapke liye sports se leke bahut sari khabrein main leke aane wala hu. So aapko kahin jaane ki zarurat nahi hai, bas enjoy karte rahiye. Bahut hi khoobsurat mauka hai aapke paas. So yes, stay tuned. Aur thodi barish ho rahi hai baad. Agar aap जहां से भी सुन रहे हैं, डू लेट मी नो वहां पे बारिश हो रही है नहीं हो रही है, इसके अपडेट मुझे दे सकते हैं आप 555 99 पे.
1: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं अभी की लेटेस्ट खबर। ऑकलैंड जिम में एक एलिजिट अटैक हुआ है और उस पर सीरियस चार्जेस भी लगे हैं। माउंट वेलिंगटन के एक जिम में एक वुमेन पर एलिजिट अटैक के बाद एक मैन को चार्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मैन ने सिक्योरिटी गेट जंप करके जिम में एंट्री की थी और वुमेन पर एलिजिटली असॉल्ट भी किया। इंसिडेंट को फैमिली हार्म मैटर के तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मैन पर बाउंडिंग विद इंटेंट टू कॉज ग्रेवियस बॉडली हार्म के चार्जेस लगे हैं, जो कि काफी सीरियस दिखते नजर आ रहे हैं। सो एनी अपडेट रिगार्डिंग दिस, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू लेट यू नो।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
6: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
8: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
12: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
13: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
12: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
14: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
15: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
16: Fresh deals on favorites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
17: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.

0: Breakfast with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे हम skip या replay.
2: Well, पीजी कीर्तन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपका जो सहयोग मिला है वो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो अब इस बार ये जो चांस है हम आपको देना चाहते हैं, जहां पे हम पीजी कीर्तन संग्रह आप सभी के लिए लेके आए हैं, सभी कलाकारों के लिए एक मौका जहां पे आप अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं. वेल, रिकॉर्डिंग जो है वो है 25 सितंबर को होने वाली है वैदिक सेंटर में पापा टोटे में. लेकिन उससे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जो है उसे आपको पाने के लिए 5599 पे KR लिख के हमें भेज दीजिए, ताकि वो लिंक आप तक पहुंच जाए और उसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर, कीप इन माइंड कि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, नथिंग मोर देन दैट. रजिस्ट्रेशन के बाद ही फाइनलाइज होगा कि कौन रिकॉर्डिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप में गया है या फिर नेक्स्ट राउंड में गया. तो सिर्फ 20 आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग ही की जाएगी, और हम रिकॉर्डिंग कंफर्मेशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. रजिस्ट्रेशन है उसकी आखिरी तारीख जो है सिर्फ 13 सितंबर तक ही है, यानी कि बहुत ही कम टाइम बचा आपके पास. इट इज 8 टुडे, तो मेरे ख्याल से 5-6 दिन बाकी है. टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई फॉर दिस वन. एंड यस, साथ में एक और चीज ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए, जहां पे आपने देखा ही होगा कि 1000 लोग जो है पब्लिक सर्वेंट्स स्ट्राइक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. तब पब्लिक सर्विस एसोसिएशन PSA के नेशनल सेक्रेटरी ड्वेन लियो ने कल सुबह ब्रेकफास्ट शो में विजयन पूजा से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था मेजर इंडस्ट्रियल एक्शन के बारे में बात करने के लिए, और उनके कोर इश्यूज के बारे में भी बात करने के लिए. तो इस इंटरव्यू के अगर आपको सुनना है तो हमें BF लिखे और 5599 पे भेज दीजिए, ताकि आप तक लिंक पहुंच जाए और आप एक्सक्लूसिवली हमसे ये इंटरव्यू पा सकें और सुन सकें.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

रग्बी पास की एनालिसिस के मुताबिक रीसेंट स्प्रिंगबोक सीरीज ने ऑल ब्लैक्स के कुछ वीकनेसेस एक्सपोज किए हैं। टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कॉम्पिटिटिव रग्बी खेली, लेकिन सेट पीस, फिजिकैलिटी और फॉरवर्ड डोमिनेंस में काफी गैप नजर आया। आर्टिकल के मेन पॉइंट पे ये बात हुई है कि करंट ऑल ब्लैक स्क्वाड में चीफ के प्लेयर्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के ट्रेडिशनल पावर हाउस टीम्स की तरह उनके पास रीसेंट ट्रॉफी विनिंग पेडिग्री नहीं है। ऑथर ये कहते हैं कि पास्ट की सक्सेसफुल ऑल ब्लैक्स टीम्स ऑकलैंड ब्लूज या कैंटरबरी क्रूसेडर्स के डोमिनेंट कॉम्बिनेशन पर काफी हैवीली बेस्ड थी। सिंपल शब्दों में कहूं तो ऑल ब्लैक्स टैलेंट और एफर्ट्स के दम पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्गर फॉरवर्ड, बेटर सेट पीस और प्रूवन विनिंग कॉम्बिनेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।

एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है, नशा में शॉपिंग, क्या रिटेलर्स का फायदा उठा रहे हैं या नहीं, यानी कि व्हेन यू आर ड्रंक व्हाट इज हैपनिंग। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इतनी इजी हो चुकी है कि एक ड्रिंक के बाद भी लोग शॉपिंग करने लगते हैं, और ये रिटेलर्स के लिए बहुत ही बड़ा बिजनेस बन चुका है। रिसर्च के मुताबिक ड्रंक शॉपर्स हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में लोग इम्पल्सिव डिसीजन ज्यादा ले सकते हैं, और इसी वक्त बाय नाउ लिमिटेड टाइम डील्स और ओनली टू लेफ्ट जैसे मैसेजेस और टेम्पटिंग लगते हैं, और भी ज्यादा टेम्पटिंग लगते हैं एक्चुअली। एक्सपर्ट्स के सवाल है कि क्या ऑनलाइन रिटेलर्स जानते हुए भी कस्टमर्स भी कभी यू नो इम्पेयर्ड जजमेंट का फायदा उठा रहे हैं या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स को कूलिंग ऑफ पीरियड्स और स्पेंडिंग लिमिट्स जैसे सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। तो अगली बार ड्रिंक के बाद अगर ऑनलाइन शॉपिंग का मन करे तो पहले एक बार कार्ड को देख लेना और खर्चा देख लेना, या फिर इफ समवन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू और मे बी समवन यू नो वेरी पर्सनली एंड आप ट्रस्ट करते हो, उनसे भी पूछना भाई मैं करने जा रहा हूँ इज इट ओके और नॉट। बट यस, ये मतलब ये तो आर्टिकल है, बट एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, नॉट लिटरली आई डिड, बट आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड। सो वी वर हैविंग अ पार्टी मेरे घर में, और वहाँ पे यू नो एवरी वन केम, और उसे थोड़ा क्या दिखावटी पना ज़्यादा था, यू नो मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, इट इज़ वेरी रूड टू से, बट ही लाइक्स टू शो ऑफ, लाइक ही डजन अंडरस्टैंड कि भाई क्या उसका यू नो रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। सो वॉट ही डिड इज लाइक ऑब्वियसली हम नए थे, इंडिया से जस्ट आए थे, एंड ही वॉज हैविंग गुड मूड, गुड पार्टी, ये भी एंजॉय करा था, एंड देन उसके बाद उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक हो गया। ऑल दो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ एल्कोहल हियर, बट येस उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी, और उसके बाद उसने किसी के इन्फ्लुएंस, किसी के बहकावे में आके बैक टू बैक और भी ड्रिंक्स ऑर्डर करते रहा वो। आई एम सेइंग इट अगेन, मैं बिल्कुल भी इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज लिटरली इट्स नॉट अ काइंड ऑफ थिंग यू शुड बी डूइंग इट। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ, यू नो आई डोंट ड्रिंक, सो ऑफ कोर्स एंड आई अप्रिशिएट हु डोंट ड्रिंक एज वेल, बट येस सेम टाइम उसने बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर कर ली थी जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय समवन, या फिर किसी ने उकसाया होगा कि भाई ड्रिंक्स किधर है, ये सब किधर है, एंड देन ही वॉज लाइक या मैं खरीदता हूँ, मैं करूँगा, एंड देन नेक्स्ट टाइम इट वॉज नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नॉर्मल हुआ, एंड देन ही वॉज लाइक लिटरली क्राइंग, एंड यू वोंट बिलीव बट ही एक्चुअली स्पेंड दैट नाइट $2,500, वो भी हम स्टूडेंट टाइम पे थे। सो उस $2,500 को कमाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, यू नो ही वॉज लिटरली वर्किंग ओवर टाइम टू गेट दैट मनी बैक, बट गुड थिंग इज कि उस बंदे ने उससे ऐसी सीख ली है दैट ही लिटरली हैव स्टॉप्ड और मे बी लिमिटाइज हिमसेल्फ कि भाई मैं इस लिमिट से ज़्यादा नहीं पीऊंगा, आई नो दैट आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ बट मैं इस लिमिट से ज़्यादा नहीं पीने वाला। सो दैट इज़ द गुड थिंग ही डिड विच आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। बट यस, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो यू नीड टू मेक श्योर दैट आप कितना पी रहे हैं कितना नहीं है लिमिट करें। Although saying it again, मैं बिल्कुल भी अल्कोहल को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा। Lunchbox with Ketan. मुझे पसंद है लड़का। 80s के रेट्रो गाने।

0: या रॉक एंड रोल। Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Get your flooring project started now with Flooring Extra at the Auckland Home Show. So come see us for Auckland Home Show exclusive savings on Bremworth carpets, quickstep laminate, timber and more. Can't make it to the show? Visit one of our 10 Auckland showrooms to discover the deals. But be quick, savings are only available from Thursday 10th to Sunday 13th of September.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
4: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
5: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में।

ऑब्वियसली बनाया तो टेक्नोलॉजी इंसानों ने, ये तो इंसान ने पकड़ भी लिया और उसका बहुत ही बुरा यू नो पनिशमेंट भी मिला है। वेल, ये इंसिडेंट में बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में एक स्टूडेंट एग्जाम के दौरान स्मार्ट ग्लासेस पहने हुए पकड़ा गया। यूनिवर्सिटी का जो रूल है उसके मुताबिक एग्जाम्स में स्मार्ट ग्लासेस और स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इनविजिलेटर ने स्टूडेंट को ग्लासेस के साथ स्पॉट किया, ग्लासेस रिमूव किए और फिर स्टूडेंट को एग्जाम कंटिन्यू करने दिया, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक मिसकंडक्ट इन्वेस्टिगेशन की और स्टूडेंट को पेनल्टी फेस करनी पड़ी। इशू ये है कि स्मार्ट क्लासेस अब सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, कुछ मॉडल्स में कैमरा, ऑडियो और AI फीचर्स भी होते हैं। मतलब थियोरेटिकली एक स्टूडेंट क्वेश्चंस को कैप्चर करके इंफॉर्मेशन या AI असिस्टेंस तक पहुंच सकती है बिना फोन निकाले। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के कंप्यूटर साइंस लेक्चरर उलरिच स्पेडल कहते हैं कि फ्यूचर में एग्जाम सुपरवाइजर के लिए स्मार्ट ग्लासेस को आइडेंटिफाई करना एक रियल चैलेंज हो सकता है और ये टेक्नोलॉजी रैपिडली काफी पॉपुलर होती नजर आ रही है। मार्केट में कुछ स्मार्ट ग्लासेस हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में के हैं, लेकिन चीपर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी के लिए चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी हर दिन स्मार्ट होती जा रही है, जबकि एग्जाम्स में टीचिंग रोकने की ट्रेडिशनल मेथड्स उतनी इफेक्टिव नहीं है। और एक्सपर्ट एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर यही टेक्नोलॉजिकल स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज तक पहुंच गई तो एग्जाम हॉल में चीटिंग डिटेक्ट करना और भी मुश्किल हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स के ग्लासेस ही नहीं उनकी आंखों पर भी नजर करनी पड़ेगी। वेल, आई थिंक उसका सुझाव यही है दैट द टाइम व्हेन ऑल दीज ग्लासेस आर गेटिंग अपग्रेडेड, व्हाई डोंट वी हैव अ रूम with scanning system, like you know any student who is going through they will have automatic detection of like electric thing, because obviously AI machines jo hain ye abhi hal filhal to physical electric cheezon se bani hai, right? hardware hai, so that definitely it can detect by anyone any machine, so wo agar aisa scanner agar dal sake तो वुड बी ग्रेट। अगर आपके सुझाव में भी कुछ और सजेशन है बताइए, जो यू नो माइट गोना हेल्प टू द यूनिवर्सिटी कि ऐसी गलतियां ना हो। दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: And that's all for today. बहुत ही बढ़िया आज का दिन, आज की बातें, आज का वक्त और आपके साथ बातें. आप बस बने रहिए, सुनते रहिए. कॉफी ब्रेक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा. How it is, and I'm signing off from today's lunchbox show. I'll see you tomorrow same time.
2: Bye bye, take care. Bye.

0: خوش رقصة.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This
4: record,
3: is my
4: I
3: fancy
4: say.
3: English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. TradeDepot.co.nz.
2: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 12 panel hybrid solar system. Fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइट 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: Time check. Brought to you by Mann Tires for all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
1: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
5: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Labor has unveiled its policy around the use of AI, promising to meet international tech giants head on. Leader Chris Hipkins says we've given away too much control.
6: If government doesn't take an active role now, we risk losing our future to the big tech companies.
5: The Civil Aviation Authority will look into the cause of a fatal helicopter crash in North Canterbury. 47-year-old Carl James West died after the aircraft came down an airwell yesterday. Three jurors from the Lindsay Clancy murder trial in the US have spoken for the first time. The 36-year-old admitted she killed her children but argued she was mentally ill. It ended in a mistrial. Kelly Farina telling NBC one man held out.
7: We read to him on numerous occasions the definition of reasonable doubt, but he had the hardest time getting off the fact that Lindsay viciously killed her children.
5: A new study suggests that taking paracetamol during the first 4 months of pregnancy might have an impact on female reproductive organs. The Danish findings have linked use of the painkiller with smaller ovaries and wombs in three-month-old babies. The authors acknowledge the study can't prove paracetamol causes the differences or whether there are any long-term effects. To sport a late night in the city that never sleeps, it's 11 o'clock in New York. The All-American Women's Quarterfinal at the US Tennis Open was won a few minutes ago by third seed Jessica Pegula, who beat Emma Navarro in three sets. The feature men's match between second seed Carlos Alcaraz and American hopeful Ben Shelton is just starting. And India's cricket tour here is well over a month away, but more than 50,000 tickets have been snapped up already.
8: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इसमें टेम्परेचर बाहर का 16.9 डिग्री से और आज को ओवरनाइट 8 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है मौसम आज का ब्राइट सनी गुड वेदर सनसेट आज का 6:08 पर
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
10: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
11: कॉफी ब्रेक विद सैंडी
9: 3:02 हो चुके हैं अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ अभी से लेके 4 तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है कॉफी ब्रेक में हाउ आर यू डूइंग हम्प डे पे हम आ चुके हैं इट इज वेंसडे सो इसलिए बोला जाता है हम्प डे बिकॉज इसके बाद कहते हैं कि जो बाकी का वीक है ये ईजिली निकल जाता है सो हाउ इज इट गोइंग फॉर यू ईजी जा रहा है आपके लिए या फिर टफ जा रहा है जरूर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं वेदर इज़ लाइक ऑलमोस्ट आज बाहर तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे गर्मियाँ शुरू हो चुकी है फुल गर्मियों वाली फीलिंग आज एक्चुअली में आ रही है बट माइंड इट आज रात को थोड़ा चिली एज़ कम्पेयर टू राइट नाउ टेम्परेचर रहने वाला है लाइक 8 degrees, 7 degrees के अराउंड टेम्परेचर जा सकते हैं आज ओवरनाइट का सो या थोड़ा चिली ज़रूर रहेगा बट इट्स गोन बी गुड वेदर इन द कमिंग डेज एज वेल कल दो हल्की सी बारिश होने के चांसेस ज़रूर है सो आज शो में और क्या क्या होने वाला है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात होने वाली है इसके बारे में भी यहाँ पे आपके साथ में शेयर करती रहूँगी और क्या आपके लिए कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं गोना शेयर दैट एज वेल

0: Haunted.
1: Kundi ghar dao, ya seedha andar aao.
2: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
3: 3:17 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड घूमती हुई आरजू यहाँ पे आ चुकी है.
4: घूमती हुई आरजू.
3: हाय आरजू,
4: आप कैसे हो?
3: बढ़िया बढ़िया, हाउ आर यू डूइंग?
4: आई एम गुड. यू गुड? गुड हूँ.
3: या आज का डे कैसे गया है सो फार?
4: आज का डे बहुत अच्छा लगा, लाइक मजा आया काम करने के लिए. लाइक टाइम वेंट बाय फास्ट, आल्सो वी डिड सो मच, लाइक मेरी माय नॉर्मल काम, यू नो,
3: एंड आई सेड नाइन टू फाइव जॉब करने
4: वाली. मेरी कोवर्कर्स के साथ भी बहुत मजा आया. वी वर प्लेइंग लाइक डार्ट्स, लाइक इट वाज रियली फन. एंड हमने लाइक साथ मिलकर वी मेड सम मौरी बॉइल अप.
3: Oh, what is it?
4: It's like you pork bones ke saath broth bana ke, you put like potatoes, kumara, watercress aur uske saath.
3: Ye yahan pe kaam pe banaya hai kya?
4: Ha, kaam mein.
3: Kaise? Pavilion mein.
4: Pavilion mein. And then
3: stove ke upar wo banaya
4: tha. Ha, so content ke liye. So
3: content ke liye banaya.
4: Content ke liye, but also female lunch bhi.
3: Yeah, yeah.
4: Bahut maza aaya, khaya, and then like we were talking just earlier, bahut achha dhoop hai and I wanted to just take a nap.
3: In fact, aisi dhoop hai ki man kar raha hai ki gaadi mein aise jaake gaadi lock karke
4: so jao,
3: check karke us dhoop mein so jao. Ye aisa wala weather hai.
4: Something about that car mein sleeping under the sun, it's so nice. I don't know,
3: yeah, but anyway, last time kab kiya tha ye?
4: Kya
3: gaadi mein aise so jana?
4: मैं तो हमेशा का घर जाके एकदम आई जस्ट स्टे एट इन माय कार फॉर एटलीस्ट 10 to 15 और लाइक मोर मिनट्स.
3: ये काफी लोग करते हैं ना.
4: इट्स सो आई डोंट नो, इट्स नॉट द वर्ड, आई डोंट थिंक डिफ्रॉस्ट इज द वर्ड, बट लाइक व्हाट इज इट भाई,
3: ये अपन डिफ्रॉस्ट करती है.
4: हाँ, मेरी सब काम की टेंशन स्ट्रेस, आई थिंक, आई डोंट नो, अभी समटाइम्स यू जस्ट लाइक इट्स लाइक going inside home with like, you know, without
3: fresh
4: any
3: mind.
4: Fresh mind, I guess, maybe, I don't know.
3: Yeah.
4: I just like to just be in my gaadi and like and scroll on TikTok, yeah, if you just do nothing, play music and just chill.
3: Oh, you but spend sleep. Some quality time with yourself.
4: Sometimes I'm just sleeping while I'm snoring her.
3: And then you go home.
4: Like I
3: was parking mein.
4: Nahi. So I go home and meri ghar ki aage mein parking mein I stay like minimum 20 minutes.
3: Oh wow.
4: Every time. Yeah. I don't know. I just have it. And I found out a lot of other people also do it.
3: Yeah, would love to know.
4: Yeah, would love to know, huh?
3: Kaun hai jo aise karta hai ki ghar jaane ke baad आप गाड़ी में रहते हो 15-20 मिनट, मतलब वहाँ पे बैठे रहते हो गाड़ी में, और देन मतलब हाउ फनी ना, कुछ लोग मतलब ऐसा ड्राइव करते हुए पूरे ट्रैफिक में जाते होंगे, जल्दी घर पहुंचो, जल्दी घर पहुंचो, जस्ट टू बी इन द पार्किंग.
4: दैट्स ट्रू.
3: एंड बी देयर फॉर 20 मिनट्स.
4: It's honestly very therapeutic. I don't know, मुझे बहुत अच्छा लगता है.
3: Like, it's very interesting.
4: Like, I just get to like, I don't know, आराम से just, you know, and then I go in.
3: क्या होता है कि मेरे को लगता है कि देन यू वो डीफ्रॉस्ट यू डू थिंग कि काम का जो है उसको निकालो वहीं पे रिलैक्स करो और फिर जब अंदर जाओ देयर इज नो वर्क रिलेटेड स्टफ.
4: एग्जैक्टली. Maybe that's the process.
3: Maybe you're like वो energy तुम करते हो कि shred off अपने से करनी होती है, तो maybe you're doing that.
4: वो maybe that my own mental exercise.
3: Wow.
4: Mental health की, I don't know.
3: It's very interesting.
4: Do you go home and like do it or not?
3: अपनी पार्किंग में जाती हूँ, सामने से मुझे फेस दिखाई देता है मेरे डॉग का.
4: Also, you have to come out.
3: अगर मैं और देर बैठी रहूंगी वो बॉब बॉब करना शुरू कर देता है, तो
4: fair enough.
3: I have to come out. पूरे घर को पता चल जाता है कि बाहर कोई आया है. So ये होता है. But would love to know, अगर आप करते हैं ऐसे, and I'm sure कोई ना कोई तो ऐसे करते ही होगा. और मुझे लगता है ना कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, फ्लैटिंग करते हैं, वहाँ पे बहुत कॉमन होता है ये. I think so.
4: Yeah. To be honest, जब मैं घर जाती हूँ, कोई भी घर में नहीं है. Maybe because of that as well. क्योंकि my sisters they finish at 5 o'clock. I finished 3 p.m. में, so.
3: Okay.
4: So I kinda reach the earliest. सभी लोग after six ही घर पहुंचते हैं. सो
3: मतलब तुम्हें तो धूप एंजॉय करने का टाइम मिलता है घर जाके.
4: हाँ, एवरी टाइम. हाँ, या
3: नाइस,
4: इट्स नाइस,
3: सो नाइस. या एनीवे, बट अभी तक किसी ने ऐसा बताया नहीं है, तो
4: ठीक है, आई गेस आई एम द ओनली वन. आई एम श्योर समवन Anyone
3: give
4: else?
3: You the ground only.
4: Please 5599 mein message kijiye. I'm sure I'm not the only one.
3: Yeah, even I'm sure. You're not the only one. Karte honge kaafi.
4: Rusbe maybe? Do you think?
3: Nahi. I don't think so.
4: His wife be like, oh, what are you doing? No, anyway, come on.
3: You answered it. So I don't think वो करता होगा वो कर पाएगा ये
4: होता
3: है राइट वे में बट या और कौन करता है यहाँ पे मैसेज करके बताओ 5599 पर.

0: 3:26 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं कॉफी ब्रेक. फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड आरजू ने यहाँ पे बताया कि वो डिफ्रॉस्टनी क्या होती है,
1: डीकंप्रेस. हाँ,
0: मेरी डीकंप्रेस करती है अपने आप को. हाँ. जब वो घर पहुंचती है तो पार्किंग में शी स्पेंड्स लाइक 15-20 मिनट्स डेली.
1: हाँ, मिनिमम
0: मिनिमम अपनी गाड़ी में बैठती है वो और उसके बाद वो घर के अंदर जाती है.
1: जी,
0: दिस इज योर वे ऑफ रिलैक्स करना, काम का जितना भी है निकालना. हाँ. घर पे फ्रेश एनर्जी के साथ जाना.
1: एग्जैक्टली, बहुत लाइक आराम मिलता. आई डोंट नो, इट्स सो लाइक हाउ यू सेड, जब आप धूप के नीचे इन द कार यू फील सो रिलैक्स. You feel like that. Try it. Yeah. Don't look at your dog. You just look the other direction. You just feel so relaxed and like, yeah. But looking at the text as well.
0: काफी लोगों ने message किया actually. में एक ने बोला है कि my husband does stay in his car for 30 minutes.
1: See? 30 minutes. Over 30 minutes. आधा घंटा.
0: आधा घंटा, yeah. So nice. Cool. एक ने बोला है I always do it.
1: See?
0: And then the, another high five. One. I said because I want to relax my feet and body from all the exhaustion.
1: हाँ, exactly.
0: Yeah, nice. Yeah. So काफी लोग ये करते हैं ऐसे. Nice.
1: अब आप ही हो एक अकेले.
0: अभी वो टैग इधर आ गया है.
1: Yeah. आप माइनॉरिटीज में अब.
0: मे भी मुझे अपने घर के बाहर कहीं और पार्क करके अपने नेबर्स के पास पार्क करके वहां बैठना पड़ेगा. वो भी नहीं कर सकती ना, वो बाहर आके पूछ के क्या हुआ.
1: Yeah.
0: क्या दिक्कत है. वहां भी नहीं रिलैक्स कर सकती.
1: एग्जैक्टली. exactly. नहीं, आप घर जाओ और आप उधर डिफरेंट डायरेक्शन में देख कर. Okay. और यू कुड ब्रिंग योर सीट डाउन फ्लैट करके, यू नो, लाइक ऑल द वे बैक एंड देन योर डॉग वोंट सी यू.
0: ओया, anything,
1: let me know. Next try. Week I'll catch up with you. Yeah, and you tell me aapko kaisa laga.
0: Yeah, I will try this.
1: Yeah,
0: so arzu ki aisi aur bhi baatein sunne ke liye you need to tune in
1: Sunday 6 a.m. say 12 p.m.
0: so 6 hours arzu yahan pe aapka Sunday mornings mein saath deti hai. Thank you arzu.
1: Thank you. Chatbusters. Thoda sa hall bana de. Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington, and Westgate. Up to 60% off on now.

0: 22 मिनट बाकी है 4:04 ड्राइव शो आप लिए यहाँ पे शुरू हो जाएगा। वैसे सेवरल यूनिट्स जो है ऑफ स्पीड कैमरा ट्रेलर्स, इन्हें डैमेज किया गया है ओवर दिस टाइम। सो स्पीड कैमरा ट्रेलर्स जो है इन्हें काफ़ी जगह पे इंस्टॉल किया गया था इस साल में। ये जो ट्रेलर्स है इसमें स्पीड कैमरा है एंड दे आर एबल टू प्लेस्ड एनीवेयर। सो दे वर फर्स्ट रोल्ड आउट इन सेप्टेम्बर 2025 एज पार्ट ऑफ एफर्ट, जहाँ पे क्रैशेज को रिड्यूस करने का ये एफर्ट रहा है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया है बाय द मेम्बर्स ऑफ द पब्लिक। NZTA ने कन्फर्म किया है विद फिगर्स रिलीजिंग कि अंडर द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एक्ट जो ट्रेलर्स है दे वर डीफेस्ड अ टोटल ऑफ 18 टाइम्स बिटवीन द स्कीम स्टार्ट एंड 18th August। सो यू नो ग्राफिटी उनके ऊपर बना देना, देन टेम्पर्ड करना, डैमेज करना। इन वन इंस्टेंस ट्रेलर वॉज स्प्रे पेंटेड एंड हैड अ टायर स्लैश्ड एज वेल। नन ऑफ द 10 ट्रेलर्स हैड बीन डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, सो नन वर डीकमीशनड या फिर नीडेड रिप्लेसमेंट। लेकिन बार बार जो है इन्हें टेम्पर ज़रूर किया जा रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि यू नो ये जो ट्रेलर्स स्पीड कैमराज के रखे हैं ये पब्लिक सेफ्टी के लिए ही रखे गए हैं, जिससे जब स्पीड कैमराज में जब डाटा रिकॉर्ड होता है तो जो क्रैशेस के चांसेस है वो कम होते हैं, बिकॉज एवरीवन इज़ अवेयर कि यहाँ पे यू नो स्पीड कैमरा है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, एक डर की वजह ही सही, लेकिन काफ़ी लोग देन उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। एंड दीज वर द रीजंस कि ये चीज़ें लगाई गई है एंड या उन्हें डैमेज करना इज़ नॉट रियली गुड। सो या ये स्पीड कैमराज के साथ लगता है कि और भी कैमरा लगने चाहिए जहाँ पे जो डैमेज कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए।
1: Bollywood.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफी कमाल, ब्यूटीफुल डे इन अ सुपर सिटी. मतलब बहुत लाइट विंड्स, आफ्टरनून सी ब्रीजेस, एंड इट्स बीन वेरी हॉट. एक्चुअली फील्स लाइक 16 डिग्रीज. एक्चुअल टेम्परेचर भी 16 है. ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोना गो रियली लो, 8 डिग्रीज होगा आज ओवरनाइट. 6:08 पे सनसेट.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: आज है 9 सितंबर, 9/9/26 और 4:03. वेलकम टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे. हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून.
4: गुड आफ्टरनून रुज़बे, हाउ आर यू?
1: एक नंबर, हाउ आर यू डूइंग?
4: गुड. और वेदर भी आज का क्या मस्त है ना.
1: वेदर बहुत ब्यूटीफुल है आज, मतलब मजा ही आ गया.
4: लास्ट आवर में यहाँ पे आरजू आई थी, एंड आरजू शेयर्ड समथिंग, एंड उससे काफी लोगों ने रिलेट किया.
1: क्या, क्या
4: काफी लोग
1: किया?
4: वो करते हैं जो आरजू करती है. सो आरजू क्या करती है, एंड आई एम श्योर वो तुम नहीं करते हो.
1: अच्छा?
4: मैं तो नहीं करती हूँ और तुम तो डेफिनेटली वो नहीं करते हो.
1: अच्छा ठीक है, कुछ खर्चे के रिलेटेड कुछ काम है क्या?
4: नहीं नहीं. अच्छा. नहीं नहीं, सुकून के रिलेटेड काम है.
1: ओ यार, ऐसे क्यों नहीं, मैं सुकून नहीं यार, ये क्या नॉनसेंस है.
4: सो लेट, हां, हियर इट आउट ना. सो आरजू क्या करती है, जब यहाँ से वो घर जाती है, 15-20 मिनट वो सिर्फ गाड़ी में बैठती है घर के बाहर पार्किंग में. वो उसके मुझे डिफ्रॉस्ट निकला, डिफ्रॉस्ट नहीं करती अपने आप को, बेसिकली वो
1: डिस्ट्रेस करती है.
4: हाँ, डिस्ट्रेस करती है अपने आप को,
1: एक्लिमेटाइज कर रही है अपने आप को कि चल भाई अभी मैं घर जा रही हूँ.
4: तो जितनी एनर्जी है वो काम की जो कुछ भी, वो वहाँ पे ऐसा थोड़ा उसको
1: ड्रेन आउट जैसे,
4: हाँ, करती है, एंड देन शी एंटर्स आउट. बट वो 15-20 मिनट
1: एवरी डे
4: 15-20 मिनट वो गाड़ी में स्पेंड करती है.
1: इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू. आई रियली विश टू डू इट, लेकिन मैंने एक बार किया था, क्योंकि ये होता ही है, बहुत नॉर्मल है, ये होता है. लाइक काफी बार ना, अगर मैं रेडियो सुन रहा हूँ या मैं कुछ पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ,
4: तो फिर कंप्लीट करना चाहते
1: हो, मन नहीं कर रहा है निकलने का. मैं बैठा रहता हूँ थोड़ा देर के, भाई देखते क्या हो रहा है. लेकिन फिर मेरे को ऊपर से ऐसा, ऐसे विंडो से ऐसा कोई झांकता है, देखता है कि अरे क्या हो गया, किधर, काय को, व्हाट इज हैपनिंग.
4: या
1: सो या,
4: so 100% वो आरजू ने ही बोला है कि आई डोंट थिंक सो रुज़बे कर सकता है ये, रुज़बे करता होगा ये. शी सेड इट वेरी कॉन्फिडेंटली दो.
1: मैं करता हूँ कभी कभार, मेरे को समटाइम्स लगे नो, आई जस्ट लाइक टू.
4: और मे बी जब किसी से बात कर रहे होते हो फोन पे, तो आपको मे बी फोन पे कन्वर्सेशन खत्म करनी है, देन यू वॉन्ट टू गेट आउट, यू नो, कई बार होता है वो भी. ब्लूटूथ लगा होता है ना गाड़ी में,
1: और बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि मन ही नहीं करता है गाड़ी से निकलने का. लाइक अगर मैं घर पे जा रहा हूँ और घर पे कोई नहीं है, मुझे पता है,
4: तो फिर तुम बैठे रहोगे,
1: सिट इन द कार. एंड आई थिंक द अदर रीजन फॉर दैट आल्सो इज कि गाड़ी गर्म हो गई होती है ना. अब तुम बाहर निकलोगे ठंड में, फिर तुम जाओगे घर में,
4: बहुत पंगा होता है,
1: तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे बैठ लेता हूँ, थोड़ा मस्त, सीट भी गर्म है, और यू नो, लेट्स जस्ट.
4: बट व्हाट इज द अदर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, व्हाट इज योर थिंग टू डी-स्ट्रेस, मतलब अपने आप को रुज़बे कह रही हो, आरज़ू की लैंग्वेज में डीफ्रॉस्ट कैसे करते हो अपने आप को आप?
1: या हाउ डू यू डीफ्रॉस्ट योरसेल्फ?
4: या
1: आप बताइए यहाँ पे 0800-004866. मे बी यू माइट हैव समथिंग हैंडी जो हमारे काम आ जाए और हम भी यूज करें.
4: कभी कभी होता है कि काम पे आपका बहुत बिजी डे गया होता है, बहुत हैवी डे गया होता है, देन यू वॉन्ट टू, यू नो, बेसिकली जस्ट डीफ्रॉस्ट एंड देन get into another energy, because आपको घर पे अपना time spend करना है then. So आप क्या करते हो? Anything happening?
1: I have my hack.
4: Yeah, what is it?
1: So मेरे को once I like a lot of times if I'm feeling very low or like if I'm feeling very lost या जो भी ऐसे, I have got my go to podcast जो मैं सुनता हूँ. It's called Cyrus Says.
4: Oh yeah, he's very good.
1: Cyrus Brocha.
4: Yeah.
1: उसके 1700-1800 एपिसोड हो गए रहेंगे अब तक.
4: वाओ,
1: एवरी वीक. वो इतना रेगुलर बंदा है ना, उसने मेरे को इंस्पायर किया है.
4: कंसिस्टेंसी अगर सीखनी है तो उस बंदे से सीखो.
1: एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर फॉलोइंग इज, व्हाट योर लाइक्स आर, व्हाट यू नो, इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन एट इट, एंड दैट इज व्हाट वी आल्सो फॉलो. इट्स कम फ्रॉम देयर.
4: या
1: सो आई लिसन टू हिज पॉडकास्ट. बहुत ही उसमें ऐसे जोक्स होते हैं, टाइम पास होता है, जो भी, मतलब यू नो, फालतूगिरी होती है, जो भी होता है. बट आई जस्ट आई लव लिसनिंग टू इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना लोड लेना जरूरी नहीं है जिंदगी में,
4: 100% नहीं जरूरी है। मेरे भी दो चीजें हैं, म्यूजिक एट टाइम्स, इफ मतलब मैं गाड़ी में अपना अगर म्यूजिक लगा लूँ वो, एंड सेकंड थिंग इज की देयर आर फ्यू पॉडकास्ट ऐसे, मुझे कभी कभी जब मैं सर्च करती हूँ मुझे कोई मेल रॉबिन्स के कुछ अच्छे पॉडकास्ट मिल जाते हैं, इवन शी इज वेरी गुड, एंड एंड मुझे उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगता है, शी ऑलवेज सेज कि हाय आई एम योर फ्रेंड Mel.
1: Oh, अच्छा.
4: So like that's how she introduced herself. तो उसके अंदर कनेक्टिविटी कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छी होती है, तो उसके भी काफ़ी इंस्पायरिंग होते हैं एपिसोड्स एक्चुअली में. सो या म्यूजिक आई थिंक फेवरेट प्लेलिस्ट लगा लो, एकदम चिल्लो के जाओ. सो दिस इज वन थिंग आई डू एंड दिस इज अनदर थिंग रुज़बे डू. आप क्या करते हैं?
1: आप क्या करते हो आप बताइए यहाँ पे यार, कॉल करके 0800-004-866 या फिर मैसेज भी आप कर सकते हो ड्राइव कीवर्ड के साथ, यहाँ पर मैसेज कीजिए. यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हैं पहले से ही.
4: हाँ वो पहले के मैसेज है, वो
1: काफी कर रहे हैं ये गाड़ी में बैठना, 30 मिनट गाड़ी में बैठे
4: 30 मिनट.
1: वाह क्या बात है,
4: सही है. उसे प्रेप कहते हैं.
1: किस चीज का प्रेप?
4: अंदर जाने से पहले, वो जैसे शो करने से पहले एक प्रेप होती है ना, ये भी प्रेप है जो उनके हस्बैंड 30 मिनट बैठ रहे हैं. आई एम जस्ट सेइंग,
1: डोंट से

0: वेल एन आर कली तो डिस्को चली है, लेकिन हम लोग यहाँ पे खलबली मचाएंगे. Because you're listening to the Drive Show with Sandy and Rizvi. Right, तो आज हम बात करना चाहते हैं आपके साथ एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक के ऊपर. और देखो, आपकी गलती है क्योंकि आप बोलते हो हमेशा कि आप टॉपिक्स बहुत सही लेकर आते हो, बहुत ही सही लगता है, तो हमको इतनी तारीफ हजम नहीं होती है. तो हम अब ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे जहां आप बोलो कि यार ये क्या ही टॉपिक है, क्यों इस पे बात करना है. बिकॉज अक्सर यही होता है इस टॉपिक को लेकर घरों में,
1: इसके ऊपर बात नहीं होती हो, या फिर कह दिया जाता है कि इसके ऊपर अगर बात करोगे तो अशुभ है.
0: तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर हमें कभी भी कुछ जब करते हैं और हम अपसेट हो जाते हैं वो चीज़ को लेकर, तो उनका एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है काफ़ी बार कि हम जाने के बाद तुम्हें पता लगेगा.
1: ये होता है, या फिर
0: लाइक मैं जब नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं जब नहीं रहूंगा यहाँ पे, तब तुमको पता चलेगा,
1: तब तुमको पता चलेगा. एंड अगर कुछ बात होती है घर के बारे में बात होती है, तो अरे जाने के बाद सब तुम्हारा ही तो है ना.
0: ओ हाँ, ऐसी भी बातें होती
1: है ना, ऐसे होते ना कि ये सब और किसके लिए हम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं.
0: सो व्हाट वी वांट टू आस्क इज टुडे दैट डू यू हैव अ कन्वर्सेशन इन योर फैमिली अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ.
1: क्या आपके घर में डिनर टेबल पे, डाइनिंग रूम, मतलब आपके लिविंग रूम में, कहीं पर भी जब आप कन्वर्सेशंस करते हैं अपनी फैमिली के साथ, विद योर पेरेंट्स, विद योर किड्स, आपके अपने बच्चों के साथ या आपके अपने पेरेंट्स के साथ, क्या ये कन्वर्सेशन होती है अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ जो एक दिन होने वाला है, अबाउट डेथ बेसिकली, कि बाद में क्या.
0: फुल रणवीरिया फील आ रहा है मेरे को आज.
1: क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है?
0: But it's not though. About मौत के बारे में सोचा, but have you thought about कि अगर समझो कल को आपको कुछ हो रहा है, तो what is going to happen with your family? Like, do you have those conversations with your family, with your parents or with your children or
1: क्या इसके बारे में बातें होती है आपके घर में? क्या आज हमें yes or no चाहिए और आपका view चाहिए इसके बारे में, because इसके बाद में कुछ important आपके साथ हम share करने वाले हैं.
0: काफी बार लोग ये भी बोलते हैं ना कि मैंने कहीं तो सुना था, किसी ने बोला था कि वो लोग ने अपना funeral plan कर दिया था.
1: Oh yes,
0: कि yes. मुझे ये सारी चीजें
1: आजकल कुछ लोग ये भी कर रहे हैं.
0: Yeah. Hi.
2: मैं अंजलि बोल रही हूँ. यस, वी डू डिस्कस, और स्पेशली बच्चे के साथ, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी एंड माय हस्बैंड और समथिंग, वी गो समवेयर, आई मीन यू डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट सेकंड.
1: या
2: सो एटलीस्ट द किड्स शुड नो व्हाट, वेयर आर द थिंग्स, वेयर आर द डॉक्यूमेंट्स, विल्स के क्या सीन है, वो सब इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो, बिकॉज अगर इफ यू डोंट लेट योर किड्स नो और एनी वन नो, देन आगे चलकर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. बट हाँ, एक फनी नोट पर मैं, आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड, लाइक यू नो समटाइम्स व्हेन वी डू टॉक अबाउट इट, ओह व्हाट इफ आई डाई, व्हाट विल हैपन, तो मेरे हस्बैंड बोल रहा ठीक है तू अगर चली जाएगी तो मैं दूसरी बार, मैंने कहा अच्छा ठीक है, इफ यू गोना गेट मैरिड ओह फाइंड अनदर वुमन, आई विल बी चुड़ैल एंड गोइंग टू कम रन आउट.
1: Yeah, it's a good one. But good to hear, Anjali, कि आप अपने घर पे discussions करते हैं अपने बच्चों के साथ.
0: But Anjali, how old are your kids?
2: One is 17 and the other one is 28.
1: Okay.
0: Wow. So yeah, so it is like you have a very like adult kind of conversations with them, like you know, एकदम ही.
1: I'm serious, yeah.
0: ये कौन सी age में शुरू किया आपने उनसे?
2: No, actually हम बहुत पहले से शुरू किए, बिकॉज द प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी कम्युनिटी में इट इज जस्ट लाइक अ टबू व्हेन यू टॉक अबाउट द डेथ.
1: 100%
2: बात कर रहे हो डेथ के बारे में, ऐसे क्यों बोल रहे हो, या बट टू बी ऑनेस्ट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द किड्स. एंड हम एक और भी चीज नहीं करते हैं जो हम यहाँ पर विल नहीं बनाते, एंड that's what actually is very important. If you own anything or assets and stuff, you should have a will. It is very important to have a will, you know, like even hamari life insurance ke liye bhi, it's very important that paperwork is well done, maintained and stuff, and you let your children know where it is. Agar if they're very young, then you have to find somebody whom you can really trust, who can really, you know, like execute while you're not there. Then I mean you've got to find somebody, and definitely there will be somebody in your family whom you can trust a lot. You know, if anything happens, then where will your kids will go? Especially underage hai, agar if they can't look after themselves, it's very important. You have to plan that. At least your kids will be in a peace of mind as well. You know, if anything happens and people around them can't fool, or kabhi-kabhi you don't know what will happen. The paise bhi chale jayenge, government hi le lenge if you don't create your will and stuff like that.
0: मेरे को एक बात बताओ अंजलि, आप कौन से सेक्टर में काम करते हो?
2: आप अकाउंटेंट
1: हो, ओके,
0: ठीक है.
1: नहीं सही है, क्योंकि जो आपने बोला है ना, ये हमारा नेक्स्ट था इन कन्वर्सेशन.
0: या
1: सो वी आर गोना टॉक अबाउट इट.
0: यू हिट द नेल
1: 100%.
0: यू हिट द
1: नेल इन द कॉफिन.
0: नहीं नहीं
1: नहीं, वो सो सॉरी,
0: जस्ट बिकॉज़ वी के बारे में बात कर रहे हैं. या
2: No, I'm not a lawyer, but I'm just being practical.
0: Yeah,
2: it's very good.
0: Yeah. Did your parents or in-laws speak to you about the same thing that you have your conversations with your kids?
2: To be honest, my dad never spoke to us in regards to all this kind of thing. Jab wo expired ho gaye, so phir we said, oh, okay, he's expired, what's next? And then... You know, like my mom didn't know much about it kind of thing. So it was very difficult. So that is a learning curve for me as well. Like it is very important to keep your paperwork very, you know, properly and
0: tidy.
2: Stuff like that in a very tidy and filed.
0: And also
2: and
0: communicate that with your
1: kids
0: or with your loved ones.
2: 100%. It's very important. And especially, द प्रॉब्लम क्या, हमारी कम्युनिटी में हम बात ही नहीं करते, और फिर हम किसी को ट्रस्ट ही नहीं करते. लाइक वी डोंट ट्रस्ट इन आवर फैमिली, अगर हम इसको दे देंगे तो पैसे ले चले जाएंगे. सो यू गॉट टू ऑल्सो बी प्रैक्टिकल, एंड यू हैव टू फाइंड समबडी हु यू कैन ट्रस्ट. एंड इफ यू कैन फाइंड एनीवन, देन देयर इज लॉयर्स, यू नो, लाइक पीपल आर हियर हु कैन रियली डू थिंग्स फॉर यू. और यू डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स इन न्यूजीलैंड एंड यू डोंट वांट टू get anyone involved from India, then lawyers are here who can execute your will and other things, whatever you need to be done. But it's very important.
0: Yeah.
2: And especially not even one person dies, like especially if your wife dies, even in our life insurance, you have to make sure that you have filled a paper that whatever money comes goes to your husband, because if you don't do that, it usually doesn't go to them, and there's a long process for that as well. So,
1: yeah, but
2: when
1: thank
2: we
1: you.
2: Were doing all these papers, we learned. Yeah.
0: परफेक्ट है अंजलि, थैंक यू सो मच
1: अंजलि,
0: थैंक यू.
1: आपने जो बताया अभी, इसी का अभी हम फॉलो अप करने वाले हैं और एक कुछ शेयर करने वाले हैं यहाँ पे.
0: जी, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर यू टू कम अप एंड यू नो स्पीक अबाउट दिस, बिकॉज समटाइम्स इट बिकम्स टू पर्सनल, राइट? एंड थैंक्स फॉर डूइंग दिस, बिकॉज आपने डेफिनेटली आज काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है और मोटिवेट किया है टू यू नो गो एंड हैव दीज कॉन्वर्जेशन एट होम.
2: 100%. Now it's just like it's very important.
1: Thank you. Thank you, Anjali. Take care.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 09278-8600.
6: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
0: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4-NZPMI
8: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
9: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo, and red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
0: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
10: Are you ready to go home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
11: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited, Bollywood's most wanted.
12: Kundi khad jao, ya seedha andar aao.
13: Main laun apna A game.
11: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: with Sandy and Rusbane. Brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम. Accurate traffic.
6: Choose short stay airport parking.
7: Cloudy overnight for Auckland, a low of 8. On the northern, it's slow heading north from Oniwa Road to Esmond. The northwestern, slow heading west through Rosebank. On the southern, heavy traffic northbound from Sylvia Park to Green Lane, south from Newmarket to Princes Street. We've got delays and cancellations on the trains on the western line. There is an emergency services incident unfolding at the moment at Baldwin Avenue Station.
6: Some airport moments are worth parking for. Choose P180 short stay airport parking.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा, कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
11: The Auckland Home Show starts tomorrow at Auckland Showgrounds. With inspiration from the front gate to the back fence, discover hundreds of exhibitors, expert advice and the all-new Garden Showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Buy tickets now and save at aucklandhomeshow.co.nz.
12: Thinking of updating your bathroom? Refresh your home with Myco. With 80 years experience, our expert team are here to help. Discover premium brands, style and quality all in one place. Make your dream bathroom a reality with Myco.
13: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of Jaiku J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura Jaiku. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
14: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
15: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
14: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
16: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
17: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.

0: ये एपिसोड आपको मिलेगा। हमारे पास वैसे इंक्वायरी आई थी रुजबे अबाउट फिजी कीर्तन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं।
1: उनको थोड़ी रिकॉर्डिंग करनी है,
0: नहीं फिजी कीर्तन रिकॉर्डिंग अगर किसी को करवानी है अपनी तो कैसे हो सकती
1: किसी
0: है,
1: किसी और को करवानी है,
0: किसी और को करवानी है तो कैसे हो सकती है। सो हम फिजी कीर्तन संग्रह जो है इसमें आप चाहते हैं अगर कि आपकी आवाज भी जाए अगर आप कीर्तन करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपको करना क्या है, के आर एज इन कीर्तन रिकॉर्डिंग, के आर लिख के भेजना है 5599 पर। ऑटो रिप्लाई में आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, फिल करो। सिर्फ 20 आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी, सो इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। बट अगर आपने फॉर्म फिल किया है इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्पॉट कंफर्म है।
1: ये मुझे नहीं पता था कि हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं फीजी ये कीर्तन रिकॉर्डिंग के लिए,
0: पिछले 2 दिन से ले।
1: तो मुझे क्यों नहीं बोला किसी ने यार, मैं मेरा क्यों नहीं नाम जा रहा है उसमें।
0: फॉर्म फिल करो,
1: इतना यहाँ पे डिमांड आता है रुजबे सिंह, दिस इज देयर बेस्ट अपॉर्चुनिटी।
0: But do you know kirtans?
1: तो सीख जाऊंगा उसमें क्या है, वो तो you have to hum together anyway ना, it's hum.
0: Yeah.
1: और मैंने गाया भी है यहाँ पे जब ये रेडियोथॉन में होता है।
0: Yeah, तुमने किया था।
1: तो फिर
0: रजिस्ट्रेशन रुजबे 13 सितंबर को बंद हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हें चेक करने पड़ेंगे। और ये रिकॉर्डिंग पता कब हो रही है,
1: कब
0: तो उस दिन तुम्हें जाना पड़ेगा।
1: कब हो रही है,
0: 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापाटोए में। अच्छा। अगर तुम शॉर्टलिस्ट होते हो तो।
1: एक्सक्यूज मी, शॉर्टलिस्ट वॉर्टलिस्ट नहीं होते हम,
0: सीधा पहुंच जाते
1: हम है। सीधा हम है शॉर्टलिस्टेड ऑलरेडी,
0: पहुंच जाना हाँ। वहां पे बहुत काम होंगे करने के लिए।
1: मैं जानता हूं, मैं विजय को जानता हूं।
0: ऐसा नहीं चलता, I mean, यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं चलता है यहाँ पे।
1: अच्छा ओके, एनीवे आपको क्या, आपको पता है कि अभी एक रीसेंट आर्टिकल आया जिसमें ऐसा पता चल रहा है कि न्यूयॉर्क में हमारे हम जो ग्रोसरीज लेते हैं वो सस्ते है कम्पेयर टू न्यूजीलैंड।
0: Why is that
1: news? पहले से ही पता था वो तो कि हम यहाँ पे सबसे महंगे ग्रोसरीज ले रहे हैं।
0: या ये आर्टिकल है कि
1: honestly एक बात बोलूँ, यहाँ पे ना पिछले साल मेरे कुछ मतलब ऐसी फ्रेंड्स और वो सब आए थे इंडिया से, और वो लोग बोलते ऐसा कुछ इतना महंगा नहीं है, वो थे भी काफी करोड़पति लोग।
0: okay.
1: बोलते महंगा नहीं है, नॉर्मली है, उसमें क्या है, इतना ही रेट का मिलता है हमारे यहाँ पे।
0: वहाँ पे महंगी चीजें खरीदते होंगे इसलिए उनको महंगा नहीं लगा,
1: उनको महंगा है। उनको क्या पता कि यहाँ पे हम सस्ती जगह पे भी महंगे वाले प्राइस पे कर रहे हैं काफी बार। बट एनीवे आपको क्या लगता है, सम ऑफ यू मे हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, क्या आपको लगता है सच्ची में यहाँ पे हम ग्रोसरीज ज्यादा महंगी पे कर रहे हैं कंपेयर टू एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड, अगर आपने वर्ल्ड घूमा है तो?
0: मैंने कंपैरिजन में मेरे को लगता है,
1: आपको लगता है,
0: मेरे को लगता है
1: कि हम यहाँ पे महंगा पे कर रहे हैं।
0: मेरे को इनफैक्ट यूके में भी लगा था कि थोड़ा सस्ता है, वहाँ पे कुछ चीजें काफी सस्ती थी। वहाँ पे आउटलेट्स का जो कॉम्पिटिशन है वो ज्यादा है, सुपर मार्केट का जो कॉम्पिटिशन है वो ज्यादा है, तो उसके कारण वो एक रीजन भी हो सकता है।
1: अभी जितने हैं यहाँ पे वो ही नहीं अब सस्टेन कर पा रहे, आप और बुला रहे हो, क्यों अभी और मार्केट किल कर रहे हो यार। Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with N-

0: brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: Star Insure, specialist motor insurance.
3: Cloudy overnight for Auckland with a low of 8. On the northern, it's heavy from the Harbour Bridge to Esmond Road. The northwest and slow from St Luke's to Rosebank. The southern's heavy northbound Sylvia Park to Green Lane. South from Dilworth Ave to East Tamaki Road. Very heavy on the southwestern through Mangere Bridge in both directions. And delays and cancellations on the western line with an emergency services incident at Baldwin Avenue Station.
2: Trust Star Insure's passionate experts to create personalised policies for your car, motorcycle or camper.
4: We're recruiting for New Zealand's most important jobs. And chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
5: Outdoor season is here at Freedom. Save up to $1,000 on outdoor furniture packages. From outdoor lounges to alfresco dining, save up to $1,000. Sale on now, only at Freedom.
6: TradeDepot.co.nz.
7: Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system. Fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
6: TradeDepot.co.nz.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
10: अब हमारा क्या होगा
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
9: तो क्या करें
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
13: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
14: What's better than getting the latest Galaxy phone? Getting a bonus 50-inch Samsung TV with it from Spark. Buy the new Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra or S26 Ultra interest-free over 24 or 36 months with an eligible pay monthly mobile plan and you'll get a bonus 50-inch Samsung TV. New Galaxy phone, new Samsung TV from Spark. Minimum $99 deposit, TV delivered separately. T's and C's apply.
15: Check.
16: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
17: 5 baj chuke hai, time for news.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
18: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. Emergency services have rushed to an incident that has shut down train services in Auckland's Mount Albert. It happened at Baldwin Ave Station, causing delays and cancellations on the Western Line. Police say there is no ongoing risk to the public. The government inquiry into the fatal Tauranga landslides has been given an extension. It was due to report back in December. However, the inquiry's chair has asked for extra time and Cabinet has agreed to a new date of February 18th. Labor has unveiled its AI election policy, promising to crack down on the overuse of power at data centres. Party leader Chris Hipkins wants global tech companies to pay their own way.
19: They've got to be renewable and they can't be competing with existing New Zealand consumers for existing electricity because that's just going to push up everybody's power bill.
18: Three jurors from the Lindsay Clancy murder trial gripping America have spoken for the first time. The 36-year-old killed her three children but argued she was mentally ill. It ended in a mistrial after one juror held out. Foreperson Ronnie Carlson telling NBC she doesn't know why.
20: He admitted he had reasonable doubt and I started filling out the forms. I was so excited. And then he said, but I'm still not going to say that she's not guilty.
18: To sport, the US Tennis Open quarterfinals have now dragged on to 1 o'clock in the morning in New York. Men's second seed Carlos Alcaraz is up a set over American contender Ben Shelton. It went to a tiebreaker. Shelton is up a break in the second set. And the Indian cricket tour here doesn't start until October the 22nd, but 50,000 tickets have been sold in the first 2 weeks of sales. There are 12 matches across all three formats.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: वेदर का हाल आज काफी कमाल ब्यूटीफुल डे इन आ सुपर सिटी. लाइट विंड्स का साथ रहेगा फाइन अंटिल इवनिंग. 6:08 पे होगा सनसेट. कल का दिन मिला जुला सा रहने वाला है. कल शाम को बहुत बारिश होगी. सुबह से बारिश शुरू हो जाएगी कल. एक्चुअली आज ओवरनाइट 8 degrees रहने वाला है.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
15: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
17: ड्राइव शो आपके लिए जारी है. पावर ड्राइव एट 5. 5:03. हाय सैंडी, हाउ इज इट गोइंग?
21: हाय रुज़बे, इट इज गोइंग गुड. यस, पावर ड्राइव एट 5 यहाँ पे शुरू हो चुका है एंड बहुत कुछ है इस आवर में आपके लिए. वैसे मैं अभी पढ़ रही थी लेबर पार्टी का AI प्लान भी पढ़ रही थी मैं. एक्चुअली में उन्होंने जो प्रपोज किया है, दे अनवेल्ड AI इन न्यूजीलैंड्स इंटरेस्ट एक्शन प्लान, जहाँ पे एक AI का डेडिकेटेड ऑफिस रहने वाला है. सो विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट. टफर रूल्स होंगे फॉर डाटा सेंटर्स. ह्यूमन मस्ट रिमेन अकाउंटेबल, ये इनका कहना है. रिव्यू करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शंस को. ऑनलाइन सेफ्टी एंड डी फेक्स के ऊपर भी काम होगा. सो ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर इनका ये जो प्रपोजल है.
17: क्या बात है. और भी कोशिश करेंगे इनसे बातें करें हम अबाउट व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, व्हाट सब्सटेंशियल चेंजेस आर यू गोइंग टू ब्रिंग.
21: और आपके कोई सवाल है एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, अगर आपको मौका मिले कि हर एक पार्टी से आप कोई एक सवाल पूछना चाहते हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है, जो आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, वो सवाल क्या होगा, ड्राइव कीवर्ड के साथ लिख के भेजिए यहाँ पे 5599
17: पर. वी विल ट्राई टू गेट इट टू द राइट पीपल फॉर देयर आंसर्स. लेकिन एनीवे अभी काफी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे 80s का थीम बहुत छाया हुआ है हर जगह.
21: एंड आई एम लविंग इट.
17: सैंडी कल से डाल रही 80s वाली चीज.
21: मैंने 80s का ट्रेंड डाला और जो मैंने अपने कपड़े देखे ना, मेरे को लगा कि यार आई नीड अ वार्डरोब चेंज नाउ. वो बहुत सही लग रहे हैं. मैंने कहा यार ये सही है. लेकिन काफी लोग ये कर रहे हैं एक्चुअली में. एंड रुज़बे की हमने ड्राइव शो की भी एक फोटो बनाई है, 80s की बॉलीवुड थीम की हमने फोटो बनाई है जो हमने फेसबुक पेज पे पोस्ट की है.
17: ओ, पोस्ट कर दी है
21: और हम के पेज पे भी, हमने इंस्टा पे भी पोस्ट की है. तो गो एंड चेक द पिक्चर. आपको रुज़बे तो चलो फिर भी उसमें लाइक यू नो हेयर स्टाइल उसने थोड़ा चेंज कर दिया है. ये उसने ज्यादातर किया है. रुज़बे इज लाइक क्या बोलूं मैं,
17: सेक्सी बोल सकते हो आप,
21: शक्ति कपूर
17: मतलब
21: हेयर स्टाइल में तुम्हें याद है मुझे कोई तो शक्ति कपूर. आई नो तुम रणवीर सिंह कहना चाहते थे.
17: इट इज मोर रणवीर सिंह लाइक. प्लीज वहां पे आप जाके बोलिए इज इट शक्ति कपूर और इज इट रणवीर सिंह. ये बस मेरे को ट्रोल करने के लिए ऐसी सारी चीजें बोल रही है.
21: अरे गाइस आपको याद है शक्ति कपूर का वो पुराना हेयर स्टाइल कुछ मूवीज में, जहाँ पे वो लंबे से बाल, ऐसे कर्ली से बाल,
17: स्ट्रेट बाल होते थे उसके. कर्ली बाल नहीं थे शक्ति कपूर के
21: किसी में. तो उसने वैसे कुछ ऐसा किया था कि वो हेयर स्टाइल वैसा है.
17: अच्छा.
21: या वैसे दूसरे क्लास से कुछ हॉलीवुड हेयर स्टाइल उसने उठाया है वहाँ पे. गो एंड चेक द पिक्चर. एंड अगर आपने 80s एरा ये ट्राई किया है AI में जाके, तो आप भी अपनी फोटोज वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं. दिस इज ऑल AI जनरेटेड बाय द वे, आपको बता दे.
17: ओ पता ही नहीं था सैंडी, हमको लगा आपने कपड़े वपड़े लेकर फोटोशूट करा.
21: लगा कईयों को.
17: अच्छा.
21: उनको लगता है कि इतना पैसा है कि अलग अलग कपड़ों में फोटोशूट होता है, तो या
17: मैं बहुत दुखिया आ गया हूँ ये AI से, एक चीज से क्योंकि क्या क्या होता था मालूम है, पहले हमारे एटलीस्ट हर साल में दो साल में एक बार फोटोशूट होता था
21: या
17: अभी हमारे फोटोशूट ही नहीं हो रहे,
21: तैयार करता था फोटोशूट हो रहा होता था, हम कहते हैं कि क्या जरूरत है, ये है ना
17: AI में डाल दो,
21: उसमें डाल देते हैं, कपड़े चेंज कर देते हैं,
17: हमारी टीम बस फोटो मंगाती है, बोलती है हाँ वही फोटो को अब हम AI में एक अलग प्रॉम्प्ट डाल के उसको बना के,
21: या
17: तो मेरा वही एक एंगल का फोटो, बट मैं खुश भी हूँ यार उसमें थोड़े अच्छे से बाल भी दिखे।
21: ये भी पॉइंट है, अगर आपने ट्राई किया तो आप भी वहां पे जाके जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू रियली वांट टू सी कि रुजबे की जो मैं लुक के बारे में बात कर रही हूँ, इज इट मोर ऑफ रणवीर सिंह या क्या,
17: उधर पोल डालो सैंडी, रणवीर और शक्ति
21: रणवीर और शक्ति कपूर आप जाके डिसाइड करो गाइज प्लीज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Traffic.
2: Carpet Court's massive madness flooring sale on now.
3: Clarting overnight for Auckland, a low of 8 delays on all train lines at the moment due to an ongoing emergency services incident at Baldwin Ave station. On the northern, traffic's heavy heading north from West Haven to Esmond Road. The northwestern slow from St Luke's to Rosebank. The southern is heavy northbound from Luke Street to Green Lane and south from Newmarket to Mount Wellington. Southwestern heavy around Mangere Bridge.
2: Save thousands on carpets, vinyl and hard floor. Sale on now. Visit Carpet Court today.
1: The shelves are filling up at Bunnings with brand new Bunnings Rewards. Whether you're just popping in or stocking up for a project, a trip to Bunnings can make you feel more rewarded. Every tap, tape, bolt, barbecue, shrub, drill, door, paint or mop can all earn you Bunnings Rewards. It's easy to keep track of. Simply download the Bunnings app, scan your Bunnings card and see your points stack. T's and C's and exclusions apply. Join Bunnings Rewards today. Bunnings Warehouse.
4: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
6: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
7: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
9: Are you ready to go home?
10: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
11: Power Drive at 5.
12: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
13: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए आज हम एक पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं हमने जिसके बारे में बात की थी पिछले
14: आवर में इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की थी कि क्या आपके घर में कन्वर्सेशंस होती है कि आपके बाद क्या होगा
13: आपके बाद क्या होगा मेरे जाने के बाद क्या होगा हाउ विल योर लव्ड वंस टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स आफ्टर यू गॉन
14: सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड मुझे लगता है कि बहुत ही टफ कन्वर्सेशन है घर पे होना एंड इस कन्वर्सेशन को लेके कई बार पेरेंट्स हेजिटेंट होते हैं कई बार बच्चे हेजिटेंट होते हैं कि यू नो अगर पेरेंट्स बात छेड़ते भी हैं तो बच्चों को कई बार होता है कि यार कैसी फालतू की बात कर रहे हो ये सब क्या लगे हुए हो छोड़ो मुझे नहीं इसके बारे में बात करनी
13: और जैसे हमारे एक अंजलि लिसनर ने शेयर किया पिछले घंटे उन्होंने कहा कि टैबूड है काफी बार बात नहीं कर पाते ना इस चीज के बारे में
14: स्पेशली हमारी कम्युनिटी में
13: हमारी कम्युनिटी में वैसा बहुत होता है बट हमने इस टॉपिक के अराउंड तानिया पिंटो के साथ बात की हु इज अ सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट और इन्होंने बात की है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ विल
14: विल हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या मतलब
13: क्या होता है वो मतलब
14: एवरीथिंग बिकॉज अभी तक ना जैसे होता है ना कि ये कन्वर्सेशन होती है यार मेरे जाने के बाद सब तुम्हारा ही तो है ये एक लाइन अलग होती है लेकिन एक्चुअली में किसी की चीज़ें होना वो भी न्यूजीलैंड में रह के इज़ वेरी डिफरेंट पोजिशन एंड इसके बारे में बहुत बातें की इस पॉडकास्ट में कि अगर कल को ये डिफ़िकल्ट बात है कन्वर्सेशन है लेकिन कल को अगर आप नहीं रहते हैं तो आपकी मनी का क्या होता है आपके घर का क्या होता है आपके कीवी सेवर का क्या होता है आपकी ज्वेलरी जो है उसका क्या होता है आपके बिजनेस क्या होता है
13: लॉट ऑफ टाइम्स विशेज आपके क्या विशेज है जो आप चाहते हो पूरे हो इसके बारे में भी काफी चीजें नहीं पता है काफी लोगों को,
14: काफी चीजें नहीं पता है।
13: दिस इज समथिंग दैट हैज बीन क्वाइट इनसाइटफुल फॉर अस एज वेल। आपको थोड़ा सा बिट सुनाते हैं, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो आपने फैमिली में सबने मिलकर सुनना चाहिए
14: या हर किसी को सुनना चाहिए।
13: अगर आपको इसका वीडियो चाहिए यूट्यूब पे तो आप हमें बताइए यहाँ पे। We'll try and see if we can put a video up because this video, is something that you could watch with your family.
14: Yeah, wo
13: you
14: bhi. Should. To sunne ke liye वैसे आपको drive keyword भेजना है 5599 पर तो आपको ये episode मिल जाएगा, but थोड़ा सा आपको सुनाते हैं।
13: There's one more thing you mentioned.
9: Estate administration.
13: Oh wow, estate administration. Now there's big terms, right?
14: Yeah.
13: And the reason why we've got you on is we want to know all the stories.
14: And to understand these terms as well.
9: Yeah.
13: Yeah, she wants to understand all the terms, but I want to know all the stories.
9: Yeah.
13: But the thing is, in your experience, now you deal with all of these trusts and things. We understand it's important to have a will.
9: Yeah.
13: But what are those things that you have come across where you think that, oh God, wish they had a will? Like, it, just like one standard specific scenario where you've thought, you've had that feeling in your
9: So many, but there's we have so many scenarios like that. I actually came across one just maybe a couple of weeks ago. It's not one of ours, but it's sort of related. So the wife has passed away. She left behind 2 children.
14: Mm-hmm.
9: And her husband is, because she didn't have a will, he went to court. And he was appointed as executor of the will. But he has no relationship with the kids.
14: Mm-hmm.
9: And the kids are being looked after by her mother.
14: Oh.
9: So now that
14: the kids were not of husband?
9: No, they were.
14: Okay.
9: But he has no relationship with them. So after she passed away, he kind of just disappeared.
14: Oh my God.
9: Yeah. So now her estate is coming into some money. And so her kids are now adults. They've, one of them at least is an adult. The other one is still a minor.
14: Mm-hmm.
9: So they are making a claim against her estate for funds because they're not, at this point, they're not going to be receiving anything from her estate, which is really sad because she died without a will. She didn't have a will in place. And so when you don't have a will in place, there are rules under the law. You get a prescribed amount, but it might not necessarily be what you would have preferred for everyone to get. So you would have wanted your children to be looked after. You'd want your children to inherit, a portion of your estate. And when you die without a will, that doesn't happen the way you would like it because there's already...
13: Well, all be details...
14: And this was actually eye-opening.
13: Mm.
14: A lot of things she told us, Tanya Pinto told us, was eye-opening because काफी चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता है।
13: और हम काफी बार take for granted ले लेते हैं। Actually, इस podcast में हमने और भी बहुत important चीजें discuss की है, बातें की इसके बारे में, जो मुझे लगता है कि आपने सह परिवार सुनना चाहिए। मैं usually recommend नहीं करता हूँ unfiltered आप सह परिवार सुने, लेकिन ये एक ऐसा podcast है जो आपने सह परिवार
14: सुनना चाहिए, 100% सुनना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता है ना कि कई बार हो सकता है कि कुछ डायरेक्ट आप कम्युनिकेट अभी हेजिडेंट है करने में, नहीं कर पा रहे हैं। गिव दिस पॉडकास्ट लिंक, शेयर इट विद योर फैमिली, इन फैक्ट शेयर दिस लिंक विद एनी वन हु मैटर्स टू यू। मेरे को ये लगता है ये उन सब के लिए है जो आपको अभी मैटर करते हैं ना, उन सबको ये लिंक सुनना चाहिए। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, आई विल से गाइज, इट्स नॉट ऑन द आर्टिकल्स आजकल न्यूज़पेपर्स में एवरीवेयर नहीं है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली हम यहाँ पे दे रहे हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, यू आस्क अस, आप हमसे पूछेगा, विल गेट द आंसर्स फ्रॉम यू फ्रॉम द प्रोफेशनल्स।
13: एक मैसेज आया यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि इट्स अ ग्रेट टॉपिक बट आवर पेरेंट्स वुड अंडरस्टैंड इट बेटर इफ इट्स इन हिंदी और पंजाबी, जस्ट अ रिकमेंडेशन। थैंक यू सिमरन,
14: दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सिमरन,
13: ग्रेट रिकमेंडेशन। However, I would still say that you could still introduce this topic to your parents, भले उनको ना समझ आए, ठीक है, सारी लैंग्वेज ना समझ आए, but at least you will be there to answer the questions, and that could be a way where you could have a conversation about.
14: तो बीच में हमने हिंदी यूज की है, it's a mixed language हमने इसमें जो यूज की है। तो आप बट इट्स अ ग्रेट पॉइंट एक्चुअली, वेरी गुड पॉइंट सिमरन, थैंक यू, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग इट दिस वे.
13: बट आपको चाहिए कि मैं पंजाबी बात करूं.
14: इनू पंजाबी भी आंदी है, बोल के दिखा
13: दिस वे पंजाबी. या चलते फटे नहीं, मेरे को आंदी है, मेरे को आंदी है, मेनू मेनू आंदी है पंजाबी, और मैं पंजाबी विच गल कर सकता है, कर सकता हूं.
14: ये लाइन तुमने परफेक्ट बोली है.
13: हां मेरे को मेनू आंदी है,
14: आंदी है
13: आंदी है
14: आंधी पंजाबी है इसकी.
13: अच्छा,
14: एनीवे, बट या गो एंड लिसन, एंड इफ यू आर हेजिटेंट अबाउट टॉकिंग,
13: मेरे को लग रहा है सैंडी इनको आप वीडियो का ऑप्शन दो. आप वीडियो देखना प्रेफर करोगे या ऑडियो सुनना प्रेफर करोगे, आप हमें यहाँ पे लिखकर बताइए. एंड इफ वी गेट मोर मैसेजेस फॉर वीडियो, देन सैंडी विल अपलोड अ वीडियो फॉर दिस एपिसोड.
14: ये तो मेरी हेल्प करोगी उसमें,
13: मैं हेल्प करूंगा आपकी. यस फॉर श्योर,
14: इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड वीडियो.
13: वीडियो इज मोस्ट वांटेड. गुड्डी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: बेनी दयाल की आवाज सुन रहे थे आप लोचे आई उल्फा टू स्टेट्स का ये गाना. यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. वैसे अभी आज हम आपके लिए यहाँ पे खेलते हैं सिचुएशनशिप. सिचुएशनशिप में हम आपको एक सिचुएशन में डालते हैं और फिर आप यहाँ पे कॉल करके बताते हो कि आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, आपने क्या किया ऐसे सिचुएशन में. सो सैंडी, व्हाट इज द सिचुएशन यार टुडे?
1: मेरे पास तो अभी फिलहाल तो सिचुएशन नहीं है कोई, बट आई हैव रेड द न्यूज़ जो मुझे अभी बहुत ही इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं. अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंट, बिकॉज 9/11 एनिवर्सरी आने वाली है, तो ही डिड दिस स्टेटमेंट.
0: इसी फ्राइडे को होने वाला है.
1: यस, ही डिड दिस स्टेटमेंट जहाँ पे ही सेड कि ही वॉज एट ग्राउंड जीरो और फायर फाइटर्स ने उसे लिफ्ट अप किया था एंड कैरिड हिम अवे. एंड ये बहुत ही ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है.
0: वो मतलब
1: इन्वॉल्व नहीं, मतलब कि वो भी था वहाँ पे बिल्डिंग में
0: था फंसा,
1: वो वहाँ पे फंसा हुआ था जिसको निकाला है. सो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में अभी यू नो निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन और क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स ओवर द ईयर. एंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये भी कहती है कि ट्रंप उसके आसपास भी नहीं था, वहाँ पे था ही नहीं वो उस समय पर जब ये सब कुछ हुआ था. एंड 2016 में बैक देन ही डिड समथिंग एल्स एज वेल, मतलब उसने कुछ और स्टेटमेंट भी दी थी, बट राइट नाउ हिज स्टेटमेंट इज कि वो ग्राउंड जीरो में था.
0: अभी यार 80 इयर्स ओल्ड है ना वो.
1: या बट द फनी थिंग इज कि व्हेन ही वाज गिविंग दिस स्टेटमेंट ना, तो पीछे आई थिंक वो आर्म्ड फोर्सेस थे या सिक्योरिटी थे, आई डोंट नो. वैसे लग रहे जो एक ही ड्रेस पहनी हुई थी सबने, वो जो सब खड़े थे ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप वो वीडियो देखोगे देयर वाज दिस वन पर्सन जिसके फेस पे स्माइल थी व्हेन ही वाज गिविंग दिस स्टेटमेंट.
0: यार इन लोगों को
1: जिससे सीरियस नहीं रहा गया. एंड देयर वाज अनदर पर्सन जो कि ही वाज च्यूइंग गम, मतलब च्यूइंग गम खा रहा था वो. तो ऑब्वियसली उसका तो पूरा कंट्रोल्ड इमोशन था.
0: इन लोगों को बहुत टफ होता रहेगा,
1: बहुत टफ होता होगा यार.
0: मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में रहने का ऑडिशन ये होता रहेगा कि वो बोलेगा तुमको स्ट्रेट फेस रखना है,
1: तुमको सुनना ही नहीं है.
0: हाँ,
1: मुझे कुछ भी हो रहा है तुम्हें सुनना ही नहीं है.
0: मुझे लग रहा है जो इंडिया गॉट लेटेंट में दो जो पीछे बॉडीगार्ड है ना,
1: या
0: वो बन सकते हैं ट्रंप के बॉडीगार्ड
1: उनका,
0: क्योंकि वो लोग एकदम स्ट्रेट फेस रखते हैं चाहे कोई कितना भी जोक मार ले.
1: इस सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते? यही सिचुएशनशिप पे आपकी, तुम कर पाते ऐसी जॉब रुजबे, लाइक बींग सीरियस ऑल द टाइम एंड इग्नोरिंग तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है. इट्स अ टफ जॉब और मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड जॉब है ये.
0: हाँ, इट इज एक्चुअली अ वेरी टफ टू कीप स्ट्रेट फेस. लाइक इमेजिन, इमेजिन आप काम पे हो, सिचुएशन आज का वही है, आप काम पे हो और
1: योर बॉस इज सेइंग समथिंग व्हिच यू नो कि इज नॉट ट्रू. हाउ वुड, मतलब तुम क्या करोगे उस समय पर? मेरी तो हंसी निकल जाएगी यार, टू बी ऑनेस्ट. मेरे साथ तो ये हो जाएगा कि मैं हंस पड़ूंगी.
0: You are not qualified for the job.
1: I'm not qualified for the job at all. और yeah, आप क्या करोगे? रजत तुम क्या करोगे? तुम कर सकते हो ये?
0: मैं तो स्ट्रेट फेस करके मैं अग्री भी करूंगा. मैं बोलूंगा हाँ बहुत सही बोल रहे हैं.
1: तुम रह सकते हो स्ट्रेट एकदम?
0: हाँ हाँ.
1: Oh my God, क्या सोचते हो तुम उस समय पर?
0: वो मेरा पर्सनल थॉट है ना. वो मैं क्यों बाहर बोलूँ अभी? वो मेरा पर्सनल थॉट है.
1: अरे इंस्पिरेशन चाहिए ना थोड़ी.
0: नहीं नहीं, मैं मतलब वैसे भी अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं एक स्ट्रेट फेस ये कॉमिक हूँ. मैं जोक मारूंगा और मैं स्ट्रेट फेस ही रखूंगा बहुत बार. मैं हंसता नहीं हूँ साथ में.
1: ओ, तुम स्टैंड अप कॉमेडी करते हो ना?
0: मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट.
1: या बट उसमें यही करना होता है.
0: मैं कुछ स्टैंड अप कॉमिक होते हैं जो खुद के जोक पे हंसते हैं जोर जोर से.
1: अकेले भी हंसते
0: हैं? मैं भी हंसता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है. लेकिन काफी बार कुछ मेरे को लग रहा है कि आई कैन कीप स्ट्रेट फेस एंड आई कैन लाइक यू विल नॉट बी एबल टू टेल इफ आई एम बीइंग सीरियस और इफ आई एम बीइंग लाइक इफ आई एम जोकिंग.
1: ऐसे ही है,
0: होता है ना ऐसा. कितनी बार मैं आपको भी कितने आपकी बातों पर अग्री करता हूँ, बोलता हूँ हाँ सैंडी, बट आपको क्या पता मैं मन में एक्चुअली हंस रहा हूँ कि ये क्या सोच रही है.
1: Well, आप ये जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप भी बताइए. आप इस सिचुएशन में है तो आप क्या करते हैं? 5599 पर या फिर कॉल करके 0800 हम पर.
2: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic.
3: Kitchen mania at the Auckland Home Show.
4: Cloudy overnight for Auckland, a low of 8 degrees. We've got delays on all train lines due to an ongoing emergency services incident at Baldwin Avenue Station. On the northern, heavy northbound from West Haven to Northcote Road, the northwestern slow from town to Rosebank. The southern, heavy traffic north from Luke Street to Green Lane, south from Newmarket to Sylvia Park. And the southwestern's heavy from Puhinui Road to Mangere Bridge.
3: Visit the Kitchen Mania displays at the Auckland Home Show this weekend.
5: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
10: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए यहाँ पे हम एक से एक गाने लेकर आते हैं और उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी करते हैं ना उसके बाद.
1: यहाँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए लेके आते हैं, जैसे कि हम बोर्डिंग कॉल जो है इसमें आपको 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू 102 विद सोलोमन एयरलाइंस जीतने को मौका मिलता है एवरी डे यहाँ पे, प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. जैसे ही बोर्डिंग कॉल आप यहाँ पे एवरी डे सुनते हैं तो

0: आपके पास 60 मिनट्स का समय होता है रोवा पे जाके, जो स्पेसिफिक टाइम है उसके आगे बोट नाउ लिखने का एंड टू क्लिक सबमिट। वैसे अगर आपको कंपटीशन पेज लिंक नहीं मिलता है तो 5599 पर BC वर्ड अगर आप लिख के भेजते हैं तो आपको कंपटीशन पेज लिंक जो है ये भी मिल जाएगा। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनाटू, विजिट solomons.com। वैसे ब्रेकफास्ट कैचअप में भी वहाँ पे सुबह विजय पूजा ने बात की टू द पब्लिक सर्विस एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी, जहाँ पे 10,000 पब्लिक सर्वेंट्स प्रिपेयर टू वॉक, दे वॉक ऑफ द जॉब बेसिकली। तो उनसे बातें हुई है। अगर आपको ये पॉडकास्ट चेकअप करना है तो BF लिख के भेजिए 5599 पर, आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। एंड थोड़ी देर पहले अभी हमने अनफिल्टर्ड का एपिसोड भी रिलीज़ कर दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट जहाँ पे हमने एक सीनियर ट्रस्टी से बात की है जो कि पब्लिक ट्रस्ट में है, तानिया पिंटो, जिनके साथ हमने ऐसी कन्वर्सेशन की है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन इन आवर हाउस होल्ड।
1: जी, तो विल्स के बारे में और पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई खुल के। इसको ज़रूर आप चेकआउट कीजिए। वीडियो के ऊपर काम चल रहा है हमारा, अभी काम कर रहे हैं, बट आप ऑडियो सुन सकते हो तभी के लिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली 6 बजे के बाद आपके लिए यहाँ पे हम आज ट्रेंड मेकर्स में क्या लेकर आने वाले हैं इसके बारे में हम जानेंगे बस 24 सेकेंड के बाद।
2: Gentlemen,

0: Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Throwback में आपके लिए एक मस्त सा गाना लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज 6 बजे के बाद सैंडी, व्हाट इज द थीम टुडे यार, व्हाट इज हैपनिंग इन ट्रेंड मेकर्स?
3: सो आज हम करने वाले हैं बर्थडे सेलिब्रेट ऑफ खिलाड़ी कुमार
2: राजीव भाटिया का बर्थडे. उनका बर्थडे आज होता है, उनका बर्थडे 9 सितंबर.
3: या टुडे राजीव भाटिया इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, मींस की
2: अक्षय कुमार. यस, सबको मालूम है अभी राजीव भाटिया मतलब अक्षय कुमार ही है. तो या अक्षय कुमार के बारे में बातें करेंगे, उनके गाने सुनाएंगे. आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो जिनको देखकर हमारे घर वाले बोलते हैं कि नहीं, इंडस्ट्री इतनी भी बुरी नहीं है.
3: His fitness thing is like बहुत ही क्लास, और काफ़ी समय से उन्होंने फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया हुआ था, इसलिए आज भी वो अर्ली मॉर्निंग जिस भी मूवी में वो काम करते हैं, उनके स्टारकास्ट का यही कहना होता है कि यू नो अर्ली मॉर्निंग ये उठते हैं, एंड या 4 बजे के करीब ये उठते हैं काम शुरू करने के लिए, तो इनकी वजह से बाकी लोगों को सुबह शूट करना पड़ता है,
2: बट फिर जल्दी भी खत्म कर देते हैं ना, वो भी एक सही बात है.
3: 100% या
2: सो या ही इज मेड फॉर हॉलीवुड. लेट्स सी, हॉलीवुड में कुछ काम करना चाहिए उन्होंने, बट उनके डेट्स बहुत बुक्ड आउट हो जाते हैं ना काफी टाइम से. काफी मूवीज की उन्होंने इस साल एक्चुअली ऑलरेडी. कौन सी, धमाल में वो नहीं थे ना?
3: धमाल में नहीं थे.
2: कौन सी तो भी एक मूवी में थे वो, हाउसफुल
3: जंगल.
2: वेलकम टू द जंगल आ गई क्या?
3: या आके चली गई.
2: वेलकम टू द जंगल भी आके चली गई?
3: या
2: सच्ची? ओके, एनीवे हम और बातें
3: अक्षय कुमार करते हैं.
2: और बातें करेंगे इनके बारे में 6 बजे के बाद. अभी के लिए दिस इज कुणाल गांजावाला एंड श्रेया घोषाल फॉर यू.

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Simplicity means lower KiwiSaver fees.
3: Cloudy overnight for Auckland with a low of 8. Delays on all train lines due to an ongoing emergency services incident at Baldwin Ave Station. On the Northern Heavy, heading north from Spaghetti Junction to Esmond Road, the northwestern slow from St Luke's to Rosebank. Town to Manukau, 33 minutes. Drury, 43. Just heavy northbound from Luke Street to Green Lane. The southwestern's heavy north through Mangere Bridge.
2: Keep more of your money with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
4: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie.
5: Nah, all good.
4: Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
6: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
7: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
8: The all-new Mazda CX-5 is big on the road ahead. With 5 years of Mazda care included, it's big on servicing, big on warranty, big on roadside assistance, and big on peace of mind. Mazda.
9: Zoom.
10: When India comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
0: Check.
11: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
12: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Police have laid a manslaughter charge 7 months after a fatal dog attack in Northland. Mihiata Te Rore suffered unsurvivable injuries at a rural address in Kaihu. The 43-year-old owner of the dogs was taken into custody today. An incident at a train station in Auckland's Mount Albert has forced the cancellation of some services. The Western Line is affected, with police saying there is no ongoing risk to the public. The Advertising Standards Authority has partly upheld a complaint against a national ad attacking Labor's capital gains tax policy. The ASA found National's claim that KiwiSaver would be hit was misleading. However, it found the claim about the impact on small businesses was not a breach. Business New Zealand is calling on politicians to find consensus on big issues. Its latest quarterly economic forecast paints a slightly brighter picture, but spokesperson John Pask says the looming election is making investors nervous.
13: Political parties can actually say, look, we've got to work together to try and actually improve the overall policy framework moving forward.
12: And a top travel writer from across the ditch has given one of our food staples the ultimate compliment. Nine Media's Justine Costigan has just toured New Zealand and has written her thoughts under the headline, "Sorry Australia, our neighbour does pies better than we do." Her favourite pastries were found in central Otago. To sport, 2 o'clock in the morning in New York, and there's still a bit to play at the US Tennis Open quarterfinal. American contender Ben Shelton is leading second seed Carlos Alcaraz 2-1. And to rugby league with Machinery House and a league of their own, coach Andrew Webster is giving Warriors fans the same message he's giving his players ahead of Saturday night against the Dolphins. Just be yourselves.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
5: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
9: Sujit kya jata hai? Mount Wellington ke electrical technician Shalane tatha Rajan Roland Krishi Shivlen aur Geeta ke pita कमलेश नारायण के पति नसोल 6 miles नसीनो फिजी के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-814-900 पर कॉल कर सकते हैं. माउंट वेलिंगटन के इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन शालीन तथा राजन रॉयलन कृषि शिवलेन और गीता के पिता कमलेश नारायण के पति नसोल 9 miles नसीनो फिजी के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-814-900 पर कॉल कर सकते हैं. अरुणा देवी गोसाई के पति नवाटू बा फिजी के भूतपूर्व निवासी पापाटोटो के राजेश कुमार गोसाई की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. दर्शन के लिए आप वेनसडे 9 सितंबर को 7 से 8 के बीच शाम को एंस फ्यूनरल होम जा सकते हैं, जिसके बाद शव को थर्सडे 10 सितंबर को दोपहर 1 बजे एमएमजी में दफनाया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0755-659 पर कॉल कर सकते हैं. अरुणा देवी गोसाई के पति नवाटू बा फिजी के भूतपूर्व निवासी पापाटोटो के राजेश कुमार गोसाई की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. दर्शन के लिए आप वेनसडे 9 सितंबर को 7 बजे से 8 बजे के बीच शाम में एंस फ्यूनरल होम जा सकते हैं, जिसके बाद शव को थर्सडे 10 सितंबर को दोपहर 1 बजे एमएमजी में दफनाया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0755-659 पर कॉल कर सकते हैं. सूचित किया जाता है उर्मिला देवी के पति वेसारी लामी फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार फ्राइडे 11 सितंबर को दोपहर 4 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-180-70-252 पर कॉल कर सकते हैं. उर्मिला देवी के पति वेसारी लामी फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार फ्राइडे 11 सितंबर को 4 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-180-252 पर कॉल कर सकते हैं. विनीता प्रसाद मोनिता शर्मा और डेविड कुमार के पिता मधुलता के पति वातुंगा सुआ फिजी के भूतपूर्व निवासी पापाकुरा के विकय कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप डेविड को 021-0445-056 पर कॉल कर सकते हैं. विनीता प्रसाद मोनिता शर्मा और डेविड कुमार के पिता मधुलता के पति सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी पापाकुरा के विकय कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप डेविड को 021-0445-056 पर कॉल कर सकते हैं. रवि रवि बा के स्वर्गीय वेलू रेड्डी के पुत्र सरस्वती रेड्डी उर्फ बेबी के पति पापाकुरा के विष्णु रेड्डी वेलिंगटन की रुक्मणी सामी उर्फ मंजू वैंकूवर कैनेडा के कर्णागरन रेड्डी के पिता पापाकुरा के श्री मुथुसामी रेड्डी की मृत्यु हो गई. दर्शन के लिए कल आप शाम 7 से 8 के बीच एंस फ्यूनरल होम जा सकते हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार फ्राइडे 11 सितंबर को सुबह 10 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप विष्णु को 0275628629 पर कॉल कर सकते हैं या 26 वेलफील्ड ड्राइव पापाकुरा जा सकते हैं। रवि बा के स्वर्गीय वेलू रेड्डी के पुत्र सरस्वती रेड्डी उर्फ बेबी के पति पापाकुरा के विष्णु रेड्डी, वेलिंगटन की रुक्मणी सामी उर्फ मंजू, वैंकूवर कनाडा के करनागरन रेड्डी के पिता पापाकुरा के श्री मुथुसामी रेड्डी की मृत्यु हो गई। दर्शन के लिए आप थर्सडे 10 सितंबर को 7 से 8 के बीच एंस फ्यूनरल होम जा सकते हैं शाम में, जिसके बाद अंतिम संस्कार फ्राइडे 11 सितंबर को सुबह 10 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप विष्णु को 0275628629 पर कॉल कर सकते हैं या 26 वेलफील्ड ड्राइव पापाकुरा जा सकते हैं। रीता कुमार और रानी रेखा की माँ, रॉबिन हसन और नरेश कुमार की सासू माँ, नेहा और अनिका की ग्रैंड माँ, भूतपूर्व वतुआलेवु नांदी फीजी निवासी मनुरेवा के चंद्रवती कृष्ण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। आप रॉबिन को कॉल कर सकते हो 0216193599। रीता कुमार और रानी रेखा की माँ, रॉबिन हसन और नरेश कुमार की सासू माँ, नेहा और अनिका की ग्रैंड माँ, भूतपूर्व वतुआलेवु नांदी फीजी निवासी मनुरेवा की चंद्रवती कृष्ण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी के लिए रॉबिन को कॉल करें 0216193599 पे। किशन मिस्त्री और श्याम मिस्त्री के पिता हिनाबेन मिस्त्री के पति पाकुरंगा के विनोद भाई मंगू भाई मिस्त्री की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 0216570160 पर कॉल कर सकते हैं। किशन मिस्त्री और श्याम मिस्त्री के पिता हिनाबेन मिस्त्री के पति पाकुरंगा के विनोद भाई मंगू भाई मिस्त्री की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप कॉल करें 0216570160 पे।
5: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
14: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
10: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
15: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
14: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
16: छह बजकर 10 मिनट, यू आर लिस्निंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे। ट्रेंड मेकर्स इज फाइनली स्टार्टेड।
17: या और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अक्षय कुमार का बर्थडे, राजीव हरिओम भाटिया का बर्थडे।
16: हरिओम, ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पे ना बिल्डिंग में सिक्योरिटी वाला होता था ना, तो वो हमेशा ऐसे ऐसे हरिओम ऐसे बोलते हैं।
17: हाँ।
16: आपके भी अगर ऐसे सोसाइटी में ऐसा कोई सिक्योरिटी वाला होता था जो आपको देखकर ग्रीटिंग में हरिओम ऐसा बोलता था, तो यहाँ पे कॉल करके बताइए।
17: रीजन टू रीजन डिपेंड करता है।
16: आपके यहाँ पे क्या बोलते थे ऐसे सिक्योरिटी वाले या फिर ऐसे?
17: नहीं याद है मुझे।
16: रात को ऐसे बोलते थे कि जागते रहो,
17: क्यों बोलते थे? जागते रहो, या फिर मैंने जो ज्यादा सुना है वो सीटी सुनी है, वो एक डिफरेंट टाइप की सीटी बजाते हैं। हाँ, ऐसे लंबी सी एक सीटी होती है, टक
16: टक। हाँ,
17: मैंने वो डेफिनेटली सुनी है। जागते रहो तो आई डोंट रिमेम्बर, मैंने सुना है।
16: ऐसी सीटी होती है वो?
17: हाँ, डिफरेंट सी रेफरी वाली सीटी होती है शायद से।
16: वैसे टाइप की
17: वो जरूर बजाते थे। बढ़िया, आपने क्या आपके क्या था वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बट टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग अक्षय कुमार बर्थडे, तो अक्षय कुमार के गाने आप यहाँ पे सुनने वाले हैं। मेरा सवाल है आपसे अक्षय कुमार को लेके, लिसनर से मेरा सवाल ये है आपसे कि अक्षय कुमार ने एक टीवी शो होस्ट किया है, उस टीवी शो का नाम क्या है?
16: बढ़िया टीवी शो था वो।
17: बढ़िया टीवी शो,
16: बहुत लोगों को बहुत एंजॉय किया वो लोग ने। क्या था वो टीवी शो का नाम, मैं खुद भूल गया हूँ।
17: अभी भी आता है,
16: अभी भी आ रहा है वो।
17: या
16: अच्छा, ड्राइव कीवर्ड के साथ आप लिखकर भेजिए फटाफट ये कौन सा ये टीवी शो है जो अक्षय कुमार होस्ट करते हैं।
17: शो का नाम ही ऐसा था कि इट वाज लाइक हां ये तो अक्षय कुमार ही होस्ट कर सकता है।
16: अच्छा,
17: सो उस टीवी शो का नाम क्या, 5599 पर लिख के भेजिए। एंड शुरुआत करते हैं अक्षय कुमार के कुछ एपिक गानों के साथ।
16: दिस इज राइट बैक फ्रॉम द 90s।
17: या
16: इसका बाद में काफी रिक्रिएशन बने हैं, बट ओरिजिनल का जो मजा है
17: अलग है।
16: वो ओरिजिनल का ही मजा है।
17: ओरिजिनल में डांस अक्षय कुमार का अलग ही है।
16: एंड दिस म्यूजिक, यार, इट्स जस्ट गॉट दैट वाइब। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति आपके लिए।

0: Trend Makers.
1: 3, 2, 1, Rush!
2: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
3: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile. Or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
5: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
6: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
7: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
8: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Madukau mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Madukau. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
9: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
10: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
0: The beat of Bollywood.
11: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
12: Are you ready to go home?
13: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
14: आप सुन रहे Trend Makers. आज अक्षय कुमार hits आपको सुनने मिलने वाले. अक्षय कुमार के actually काफी hit songs रहे हैं, मतलब
15: काफी ज़्यादा. Before we move ahead, Rusbe, वैसे जो हमें message आया कि Father's Day के winner कौन थे? ऑनर कंपटीशन में महेन कुमार इज द विनर एंड जो फेसबुक का कंपटीशन था उसमें सानवी प्रानवी इज द विनर.
14: अच्छा,
15: या सो लेट्स मूव ऑन. यस, अक्षय कुमार के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो टीवी शो के बारे में जो मैं बात कर रही थी, इट वाज फेयर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 and 2
14: जो अभी रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं,
15: जो अभी रोहित शेट्टी करते हैं. यस,
14: लेकिन मैं जिस सीरियल के, मतलब मैं जिस शो के बारे में बात कर रहा था, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया. तो ये भी आई थिंक सोनी पे ही आता है और सोनी लिव पे. एंड ये भी काफी फनी शो रहा है, मतलब काफी उसमें जोक्स वोक्स किए उन्होंने और ये सब किया है. एंड अक्षय कुमार का एक अपना अलग ही कैंडिड स्टाइल है ना, मुझे लग रहा है जो समय रैना ने जो स्टाइल स्टैंड अप कॉमिक्स में बहुत ज्यादा मतलब किया है, ये हमारे जो आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज है जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, इवन संजय दत्त फॉर दैट मैटर, शाहरुख खान, ये पहले से करते आ रहे हैं.
15: या इवन शाहरुख खान भी कर रहे थे, सलमान खान ऑफ कोर्स, यस, एंड अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी इज डूइंग इट.
14: अक्षय कुमार बहुत टांग खींचता है सबकी,
15: वो बहुत ज्यादा वो करता है. एंड
14: और ये सब हमने देखा था कपिल शर्मा शो में जब वो आते थे.
15: संजय तो थोड़ा हेजिटेंट हो गए थे. एक सीजन आया था बिग बॉस का जिसमें संजय दत्त एंड सलमान खान दोनों ने होस्ट किया था, और इस सीजन में थोड़ा टाइम के लिए सलमान खान वॉज गायब, इट वॉज ओनली संजय दत्त होस्टिंग इट. तो वेन ही वॉज अलोन होस्टिंग इट, वो थोड़ा हेजिडेंट था चीज़ों को लेके. मे बी ही वॉज बिट यू नो कंसर्न्ड अबाउट वो कैसे बोल रहा है, शायद वैसे. यू नो संजय दत्त को जो हम मीडिया के सामने देखते हैं खुल के बात करना, वो अलग लेवल
14: है. उसके बाद देखते हैं ना.
15: वो अलग लेवल था. तो मे बी मेकर्स को लगा कि वो संजय दत्त का रूप यहाँ पे देखने को मिलेगा.
14: वो लोग ने लेकिन लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं किया अच्छे से. पानी और
15: पानी वगैरह वो सब चीजें, या तो
14: या फिर पानी ज्यादा दे दिया,
15: ज्यादा दे दिया. So,
14: हाइड्रेट रखा उसको बहुत.
15: By the way, इस बार मैंने बिग बॉस देखा नहीं है मैंने, but I have seen the contestant बादशाह की जो अभी
14: मैंने रील देखा
15: है.
14: मैंने रील देखा, एक्स वाइफ उसकी अभी तो शादी हुई थी, एक्स वाइफ
15: हो गई, उसकी वो
14: अभी शादी होके एक्स वाइफ हो गई.
15: या और वो मैंने रील देखी जिसमें सलमान खान ने सेइंग टू हर ऑन स्टेज की अगर अगली पार्टी ने मूव ऑन कर लिया है तो यू ऑल्सो डोंट टॉक अबाउट इट, यू मूव ऑन योर लाइफ एंड Enjoy अभी. तो वो गई है घर पे,
14: एंजॉय कर रहे हैं और बिग बॉस के घर में गई है, क्या एंजॉय करेगी.
15: एक वो बंदा आया यार गजब बेइज्जती है.
14: हाँ वो मैं देख रहा हूँ, अब्बास खान,
15: who is famous for this one line.
14: अफसोस नहीं, अफसोस नहीं, अब्बास खान या जो भी उसका, आसिफ खान,
15: आसिफ खान
14: मैं उसका बहुत, वो बहुत दिख रहा है मेरे को मेरे रील पे.
15: गजब बेइज्जती वाला, उसकी जर्नी के रील मैंने देखी कि उसमें यू नो कैसे वो कहां से आया,
14: रेडी मूवी में बैकग्राउंड में खड़ा था वो ना.
15: तो कहता है कि हर पॉइंट पे यही होता है कि गजब बेस्ट उसके लाइफ में हो ही रहा था, तो वे लाइक चलो गजब बेस्ट इतना हो रहा है चलते हैं इसी के अंदर चलते हैं.
14: मैंने कुछ रील्स ये बार ये भी ऐसे भी देखे जो बोल रहे थे कि यार बिग बॉस देख रहे हैं लेकिन सारे कंटेस्टेंट्स को तो गूगल करना पड़ रहा है.
15: एक्चुअली मैंने भी किसी को रियलाइज नहीं किया कि कौन है, हाँ कौन है. गजब बेइज्जती वाला भी, ही इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट एक्टर ना,
14: उसको देखा है, देखा देखा
15: देखा है क्योंकि वो उसका वो एक मेम फेमस हो गया ना, गजब बेइज्जती है, दैट वाज अ रीजन कि ही गॉट फेमस. सो मुझे भी इसलिए अभी तक नहीं ऐसा कुछ लगा कि मुझे जाके कोई एपिसोड देखना चाहिए.
14: बट स्टिल इट इज, इट होल्ड्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंस बिकॉज अक्षय कुमार के लिए हम सेगमेंट कर रहे हैं और बातें हमारी हो रही बिग बॉस के बारे में. सो
15: सी ऐसे हम कहीं भी डाइवर्ट हो जाते हैं. अक्षय कुमार जिनके मूवीज को आपने हमेशा पसंद किया, चाहे वो कॉमेडी है चाहे वो एक्शन है, जो मार्शल आर्ट्स जिन्होंने सीखा और खुद के स्टंट्स अपने मूवीज में खुद किए उन्होंने. सो या उनका एक और गाना सुनते हैं
14: पहले कुछ. हाँ चलो गाना सुन लेते हैं उनका.

0: ट्रेंड मेकर्स में आज हम अक्षय कुमार का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्षय कुमार आज कितने साल के हुए सैंडी? वो
1: 1967 बॉर्न है।
0: ओ वाओ, गूगल करना पड़ेगा। ये 67 मतलब 59 इयर्स ओल्ड
1: is 59, so yeah. one year younger than Shahrukh and Salman.
0: 59 year old, अभी तक 60 mark नहीं पहुँचे ही है यार।
1: Yeah, see.
0: खिलाड़ी कुमार।
1: खिलाड़ी कुमार।
0: लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा 59.
1: मतलब किस angle से लगता है ये बंदा 59 यार?
0: अभी भी stunt कर रहा है।
1: Everything, so wow.
0: मैंने ना एक recently एक interview देखा उनका, जहाँ पे उनको वो बोल रहे पूछ रहे थे, एक इसने पूछा कि आप retirement का सोचा है क्या आपने? उसमें उसने बहुत अच्छा comment किया, बोलता है कि

0: रिटायरमेंट का थॉट आता है मेरे मन में, लेकिन वो 5 मिनट के लिए आता है सुबह सुबह और फिर निकल जाता है. फिर मेरे को बाद में फिर थॉट आता है कि अभी मेरे को सेट पे जाना है 200 लोग, मतलब यू नो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बड़े आर्टिस्ट जब काम कर रहे हैं वो सिर्फ अकेले नहीं काम कर रहे, वो इंडस्ट्री है, वो बाकी 200 लोगों को भी जॉब मिल रहा है उनके कारण.
1: 100%
0: सो इट इज kind of like he, like the way he said it, it was like more of his responsibility also. और फिर उन्होंने बहुत सही मैसेज दिया कि यार मेरे को लगता है कि रिटायरमेंट होना ही नहीं चाहिए कंसेप्ट, रिटायर करना ही नहीं चाहिए किसी ने, सबने काम ही करना चाहिए, या तुम जितना काम करोगे उतना तुम हेल्दी रहोगे.
1: 100% एंड अक्षय कुमार वैसे देखा जाए बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में भी आए थे. रिमेंबर इन्होंने जब डिफरेंट कंट्री की सिटीजनशिप ली थी तो इसके ऊपर काफी बवाल हुआ था कि ये इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं लेकिन सिटीजनशिप कहीं और के लिए बैठे हैं, देन ही कैंसल्ड इट.
0: वो सब बवाल तब उठा था जब उन्होंने वो एक इंटरव्यू में आम कैसे खाते हो वो पूछा था प्रधानमंत्री को.
1: Okay.
0: तो उन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया था एक इसमें और उनको पूछा था कि
1: इंडिया के प्रधानमंत्री का,
0: हाँ, कि आप आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, ऐसा कुछ तो भी था.
1: ओके.
0: तो उसके ऊपर फिर बवाल हो गया वो.
1: तो वो सिटीजनशिप पे पहुंच गया वो बवाल,
0: क्योंकि सब बोल रहे कि तुम इतना देशभक्त अगर हो तो तुमने कैनेडियन सिटीजनशिप क्यों लेके रखी है.
1: अच्छा ये था.
0: हाँ.
1: तो फिर ही कैंसल द सिटीजनशिप.
0: ही कैंसल्ड. इज लाइक, और वो उनका पॉइंट भी सही था, बोलते कि यार देख मेरा यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं था बॉलीवुड में, मेरे को एक बैकअप ऑप्शन चाहिए था. तो इसलिए मैंने,
1: व्हिच इज फेयर, आई मीन उन्होंने अपना फ्यूचर सोचा. क्योंकि ऐसा ही होता है ना बॉलीवुड में कि कभी होता है कि अगर नई करियर ज्यादा है देन यू हैव टू मूव ऑन.
0: उनका काफी लेट पीक हुआ ना करियर.
1: yeah.
0: खिलाड़ी कुमार वो बहुत लेट बने, पहले मेहनत बहुत की है उन्होंने.
1: yeah, he did his hard job.
0: मूवीज नहीं हुए इतने उनके हिट.
1: मूवी से पहले he was in Bangkok actually में, वहाँ पे वो शेफ थे.
0: शेफ थे, फिर वो कराटे क्लासेस भी लेते थे. बट एनी वे दैट वॉज ऑल अबाउट अक्षय कुमार एंड हिज सॉन्ग्स. जाते जाते आई थिंक वन सॉन्ग दैट मुझे अभी भी लगता है कि अक्षय कुमार के ऊपर वो पूरा थीम मूवी सब फिट होता है. ही इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इट बट आई थिंक ही इज द ओजी.
1: ही इज द ओजी ऑफ दिस मूवी. या
0: भूल भुलैया की बात हो रही है.
1: वो कॉमेडी जो उन्होंने इस मूवी में की थी, ये नो सीरियस एंड कॉमेडी को साथ में कैरी करना, दैट वाज एपिक. वो अक्षय कुमार को हम हेरा फेरी में भी इसीलिए पसंद करते हैं. सो इसी नोट पे
0: हेरा फेरी 3 दिखेगी हमको बहुत जल्द.
1: आई नो.
0: सो या विद दैट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग इन. मुलाकात होगी आपसे कल.
1: बाय
0: बाय.

0: हैप्पी आवर ऑन हम।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

0: dear.
1: Streaming on Rover.
2: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
3: Shower dome.
4: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
5: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
4: इसीलिए एनजेड पीएमआई से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
6: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही एनजेड पीएमआई के पॉल से बात कीजिए एनजेड पीएमआई टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4 एनजेड पीएमआई
7: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
8: Time check.
9: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
8: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. A person has reportedly died after being struck by a train in Auckland this afternoon. The incident at the Baldwin Avenue train station in Mount Albert was reported just before 3:30. In Dunedin, State Highway 1, the northern motorway has been closed following a serious two-vehicle crash. One person is reported to have critical injuries. The government inquiry into the fatal Tauranga landslides has been given an extension. It was due to report back in December. The new date is February 18. In sport, in the last hour, it was 25-4 in the morning in New York, the latest ever finish, when American Ben Shelton won a fifth set tiebreaker 10-7 to knock over second seed and two-time US champion Carlos Alcaraz in the quarterfinals. The match took 4 hours, 28 minutes. And another sign the next Warriors playoffs game is virtually certain to be at Eden Park. Fans who missed out on tickets for this Saturday's playoff clash with the Dolphins are gutted to see tickets appear online for several times their face value. Some sellers asking hundreds of dollars more than what they paid.
9: Sports News.
8: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari good brands bhi hai.
8: Night Cafe on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
12: Hello everyone, welcome to the show. Main Krish aa gaya hoon Night Cafe lekar. Aaj Wednesday hai, 9th September hai aur aaj midweek hai toh aise mein everyone is getting excited kyunki first three days of the week pretty much ho gaya hai. Kaam se aap laut chuke hain, aaram kar rahe hain aur we getting closer to the weekend aur sabhi ka intezaar hota hai towards the weekends kyunki aur bhi aaram karne ka mauka, bahar jane ka plan, family time karne ke liye jo aayojana, ye sabhi kuch hoti hai. Toh chalo midweek mein आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ मिडवीक मसाला. बहुत ही जल्दी आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं. वेलकम टू द शो एवरीवन. नाइट कैफे में आपका स्वागत है.
8: थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी, ये है मिडवीक मसाला.
12: नाइट कैफे मिडवीक मसाला ये जो प्रोग्राम है इसमें बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन ही होता है आपके लिए. एक के बाद एक आपके लिए होता है बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें, लेटेस्ट मसालेदार गॉसिप और आपके सितारे क्या कर रहे हैं ग्लिट्स एंड ग्लैमर बी टाउन में, उस पर जानकारी हम लेकर आते हैं आपके लिए. तो इसके लिए बस आप हमें सुनते रहो क्योंकि इस घंटे पर मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ. सलमान खान रिटर्न्स विद बिग बॉस 20, मनोज बाजपेयी प्लेज महात्मा गांधी, शर्मिला टैगोर रिटर्न्स टू हिंदी सिनेमा, हे बेबी 2 कन्फर्म कर दिया गया है और सैफ अली खान ने डिस्कवर किया है एक फैमिली कनेक्शन विद अमिताभ बच्चन, और करीना कपूर टॉक्स अबाउट रेजिंग हर सन्स, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. तो मिडवीक मसाला में यही होगा बॉलीवुड खबरें आपके लिए. समय रहा तो और भी आपके लिए हम शामिल करेंगे. फिलहाल कुछ गाने आपके लिए

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. और अभी midweek मसाला में हमारा पहला जो news है from Bollywood is September 6 को ये release किया गया information और कहा गया है कि Salman Khan will return as host for the 20th season of Big Boss और grand premiere stream किया जाएगा first on Jio Hotstar at 9 PM और Colors TV का schedule delay कर दिया गया है delayed television broadcast होगा at 10:30 PM और new season में 16 contest होंगे और they uses the theme वरदान theme के अराउंड ये होगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. मनोज बाजपाई को महात्मा गांधी कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो ये प्ले करते इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आए हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Midweek Masala.
1: You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. Krish के साथ है और रात 9 बजे तक आपके लिए चलता रहेगा midweek masala और मैं आपके साथ दूंगा till midnight all the way night cafe में. मनोज बाजपाई plays महात्मा गांधी. लखनऊ इंडिया की ये स्टोरी है जहां पर मनोज बाजपाई is portraying महात्मा गांधी in director सुधीर मिश्रा की upcoming film. और कहा गया है कि इस फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है लखनऊ में और वाजपेयी का अपीयरेंस इन द रोल ने काफ़ी कंसिडरेबल अटेंशन अट्रैक्ट किया है बिकॉज ऑफ द मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो इनके साथ हुआ है. इनफैक्ट आई हैवन बीन एबल टू सी अ पिक्चर, लेकिन इस खबरों की अगर माने तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ सुपर्ब. और इस फिल्म एक्सप्लोर करेगा इंपॉर्टेंट पीरियड कनेक्टेड विद गांधी और इंडियाज़ हिस्ट्री. शर्मिला टैगोर भी हिंदी सिनेमा वापस लौट रही है, इस पर जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ प्यारे प्यारे गानों के साथ में बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक के बाद एक हम लेकर आएंगे या आते रहे हैं और 9 पीएम तक ये चलता रहेगा। वेटरन एक्टर शर्मिला टैगोर को आपने देखा होगा फिल्मों में और अलग अलग किरदारों में, अभी ये वापसी कर रही है इन हिंदी सिनेमा मोर देन अ डेकेड के बाद। शी विल अपीयर इन वाइब, जिसको डायरेक्ट करेंगे हर सन इन लो कुणाल खेमू, और खेमू ने ही इनको कन्विंस किया है टू टेक द कैमियो रोल, ये कैमियो रोल में ही नजर आएंगे। और इन्होंने डिस्क्राइब किया है डायरेक्टिंग द लेजेंडरी एक्टर एज ए स्पेशल एक्सपीरियंस, अनुभव इनका बहुत ही यूनिक रहा है। हे बेबी 2 को भी बहुत ही जल्दी आप फिल्मी पर्दे पर देख पाएंगे, ये कन्फर्म हो चुका है। इनफैक्ट इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा बहुत ही जल्दी।

मिडवीक मसाला में अंतिम मोड पर हम आ चुके हैं और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. सैफ अली खान ने डिस्कवर किया एक फैमिली कनेक्शन विद अमिताभ बच्चन. इन्होंने कहा कि ये और अक्षय कुमार अपीयर्ड इन कौन बनेगा करोड़पति 18 प्रमोशनल एपिसोड. वहीं पर अमिताभ बच्चन ने रिवील किया एन अनएक्सपेक्टेड फैमिली कनेक्शन बिटवीन हिमसेल्फ एंड सैफ. और इस रिवेलेशन से सैफ सरप्राइज हो गए और अम्यूज्ड भी ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन. और ये एक्टर्स वर अपीयरिंग ऑन द शो टू प्रमोट द अपकमिंग फिल्म हैवान, जो बहुत ही जल्दी आप भी देख पाएंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ मिडवीक मसाला में. आज के लिए बस.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Kuch aur samajik suchnaye aapke liye. Experience the divine wisdom of Shri Krishna with Brajras Rashik. Dr. Shri Krishna Kinkar ji, jo Shri Dham Vrindavan ke hai. Naam Sankirtan world record holder hai. Ye ek 7-day Srimad Bhagavat Katha host kar rahe hai from 14th to 20th September. 7:30 p.m. To 9:30 p.m. hoga Bharatiya Mandir, New Zealand, Sandringham mein. Journey from Vrindavan to Auckland through Shri Krishna's divine लीलेस, टाइमलेस विजडम और इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके साथ यहां पर शेयर किया जाएगा और सेलिब्रेटिंग द डिवाइन स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड 100 ईयर्स ऑफ पिचवाई. आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर जाकर यहां पर इस ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन में भाग ले पाएंगे. बहुत ही अलग अनुभव होगा सेलिब्रेशन ऑफ श्री कृष्णा राइट हियर इन ऑकलैंड. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट
4: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
5: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
6: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
7: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs with 1% finance and $2,000 off. Experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
8: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
8: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
10: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
0: Bollywood का असली blockbuster.
11: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe on Hum.
12: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai Rova. Agar aapne abhi tak download nahi kiya hai, to zarur kijiyega. Rova ko use karne mein bahut fayde hain. Aapko pata hai, bahut sare competitions bhi Rova ke zariye hote hain. Hamare music plus stations bhi aap Rova par sun payenge. Hum rewind ho, hum 80s jukebox ho, Fiji bhajan ho ya Chardi kala Punjabi hits ho, Fiji kirtan sangra ho ya phir Rahat Fateh Ali Khan ke Sufi aur Qawwali songs ka ek bahut hi pyara list ho. तो ये सभी कुछ आपको रोवा पर ही मिलेंगे. तो रोवा पर पॉडकास्ट का भी एक्सेस आपको मिल सकता है. तो इस तरह से आप बहुत

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: Award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI
10: The beat of Bollywood.
11: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
10: Night Cafe. You're listening to Krish.
11: Let's go.
12: You're humming along with Krish on your number one. Hum playing Bollywood's biggest hits. Kuch na kuch alag hum par hota hai. Trend makers ke baare mein aapne suna hoga. About this musical podcast. Ye ek power-packed musical journey hai jahan par har gana curate kiya gaya hai around a unique theme in Drive Show with Sandy and Rizbe. From genres jo eras ko define karta hai to tributes celebrating legends of Bollywood. Chahe wo iconic singers ho, visionary composers ho, poetic lyricist ho, ya phir unforgettable actors ho. Har ek episode mein ek story aapko milega aur wo bhi through sangeet music. अगर ये जो एक और जो एपिसोड आप सुनना चाहेंगे ये इसमें अगर आप एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए सिर्फ जा रहे हैं यू आर कवर्ड क्योंकि स्पेशली क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है टू सेट द मूड कीप द एनर्जी अप और एवरी किलोमीटर ऑफ योर जर्नी काफ़ी एन्जॉयबल बन सकता है चाहे आप सनसेट्स को चेज कर रहे हो या हाईवेज क्रूज कर रहे हो या फिर सिटी ट्रैफिक में स्टक हो द मिक्स जो होंगे इस गानों का इट विल बी परफेक्ट ट्रेवल कंपेनियन ऑन द रोड लिसन करने के लिए टेक्स्ट करें TM 5599 पर और या सर्च करें ट्रेंड मेकर्स ऑन रोवा ओनली मैं

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे आप सुन रहे हैं और 8 टू मिडनाइट ये प्रोग्राम आपके लिए चलता है। वेलकम बैक। इस घंटे पर भी आपका स्वागत है। एज यू नो, जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और गाने भी और भी मज़ेदार और प्यारे हो जाते हैं, सेंशुअस भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही गाने हम लेकर आए हैं इस घंटे पर नाइट कैफे में। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, ये मिड नाइट तक चलता रहेगा आपके लिए और अभी से लेकर मिड नाइट तक प्यारे प्यारे गानों का वादा करता हूँ। और सबसे पहले तो 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूज़िक में आपके लिए जो लिस्ट में लाया हूँ बहुत ही अमेजिंग है। मीट ब्रॉस, अरिजीत सिंह को आप सुनेंगे ओ बेदर्दिया में, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ दीज डेज, जो लोग पसंद कर रहे हैं और एवरग्रीन सॉर्ट ऑफ बन चुका है क्योंकि गाने जो पहले रिलीज हुए हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में उनको बार बार सुनने में भी मज़ा आता है। कहके चित्रा, पूर्णिमा, विशाल ददलानी और श्रुति मिश्रा जैसे कलाकारों की आवाज़ों में प्यारे गाने आपके लिए।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You are listening to number one Humpling, Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ सामाजिक सूचना है आपके लिए. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है. ट्यूजडे 15 सितंबर से लेकर संडे 20 सितंबर के तक सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. और भी जानकारी के लिए आप 09836 4647 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. माँ प्रसाद हर एक दिन आपके लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Night Cafe on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
1: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
1: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
1: अभी. ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाओ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा कीवीज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स GWM मेलोकाओ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: The Auckland Home Show starts tomorrow at Auckland Showgrounds. With inspiration from the front gate to the back fence, discover hundreds of exhibitors, expert advice, and the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Buy tickets now and save at aucklandhomeshow.co.nz.
7: Thinking of updating your bathroom? Refresh your home with Myco. With 80 years' experience, our expert team are here to help. Discover premium brands, style, and quality all in one place. Make your dream bathroom a reality with Myco.
8: Get your flooring project started now with Flooring Extra at the Auckland Home Show. So come see us for Auckland Home Show exclusive savings on Bremworth carpets, quickstep laminate, timber and more. Can't make it to the show? Visit one of our 10 Auckland showrooms to discover the deals. But be quick, savings are only available from Thursday 10th to Sunday 13th of September.
9: Flooring Extra. Adore your floor.
10: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.

0: जेट बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
2: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
1: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
3: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
2: ये आखिरी
1: हैवान releasing in cinemas on 11th September. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
4: Bollywood ka asli blockbuster.
5: Pure sheher pe kabza hoga.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
0: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
0: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
2: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
3: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
4: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.

0: फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेनुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
4: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
3: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
5: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
4: ये आखिरी
3: हैवान releasing in cinemas on 11th September. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
6: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। फिर ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।
12: Playing Bollywood's biggest hits.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी. अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
4: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest Sarah.
5: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स.
4: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
5: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
4: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
5: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Club discount days वापस आ गए हैं Mitre 10 Mega Westgate और Henderson में इस Thursday और Friday Mitre 10 Club members को पूरे store में मिलेगा 15% off जो भी चाहिए stock करो और save करो TCs and exclusions apply Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
3: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
4: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
3: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
8: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
9: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाओ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz.
14: Night.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
3: Night flight on.

rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियां पकाएं, खुशियां खिलाएं।
1: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
2: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
1: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
3: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
2: ये आखिरी है।
1: Taiwan, releasing in cinemas on 11th September. Distribution partner, Forum Films. Rating TBC.
4: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
5: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
4: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
6: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
7: Media Works Complaints, how can I help?
8: Yeah, hello?
7: Hi.
8: Hi, yeah, can you guys take a radio jingle out of my brain?
7: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
8: Well, okay, well, what about something like a brain surgeon?
7: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
8: Great, sing it to me.
9: Advertise with
10: Media Works.
9: New Zealand listens to us.
11: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम
12: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
13: ए वॉल्यूम कम कर पापा जब जाएगा
14: भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू ओ भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू ओ भाई फू फुगड़ी फू यू

0: ये हाथत बॉम्ब सोड़ा अड़वे रॉकेट गए फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट अरे वारा बन मेरे जाई सबन ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर
1: Bhai Phu, Phugadi Phu, you like me and I like you too. Oh Bhai Phu, Phugadi Phu, you like me and I like you too. You like

0: Night Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider.

0: where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Viri. Call 24/7 on 0927-88600.
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
5: तो क्या करें?
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: The Auckland Home Showers are now at Auckland Showgrounds, with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice in the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Auckland Home Show, New Zealand's number one home show. We'll see you there.
10: Visit Flooring Extra at the Auckland Home Show this weekend for home show exclusive savings. Or discover the deals in one of our 10 Auckland stores. Hurry, savings ends Sunday.
11: Flooring Extra. Adore your floor.
12: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
13: Playing Bollywood's biggest hit.

0: make a difference. अगर आप struggle कर रहे हैं, talk to someone you trust. अगर आपका कोई जान पहचान वाला मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, reach out. Together, we can save lives. Asian Family Services, free counseling और mental health support offer करता है. आज ही पहला कदम उठाइए. Call Asian Helpline on 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
1: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
2: Time check.
3: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
4: Good morning, is it okay? Good morning.
2: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
5: Morning, I'm Grace Conker with the latest at 6. An Auckland community is reeling after a student was killed by a train. A Mount Albert Grammar pupil is understood to have died after being struck at a Baldwin Ave rail crossing yesterday afternoon. A number of high school students were on the platform at the time. Local board member Kendall Smith is calling on the community to come together and support one another. Online safety campaigners are calling for tougher rules around the misuse of AI. The issue has seen a Palmerston North school ban photos of its students from its social media pages. Sean Lyons from NetSafe says this is a great start.
6: An approach like this is to be commended, but it is one source. And I think we need to keep focusing on the actions of people who misuse technology to create harm.
5: Auckland's mayor has joined a chorus of others in calling for a solution to a tourism funding gap. A group of councils and industry bodies believe National's proposed visitor levy reset is a good start, but still falls short. Wayne Brown says a framework is needed that takes the pressure off ratepayers and isn't vulnerable to a changing government. Apple's annual event has begun, with speculation mounting it may announce its first foldable iPhone. It has unveiled the 18 Pro and Pro Max, which includes a new thermal system to keep devices from overheating. In sport, Ben Shelton produced the biggest win of his tennis career in the latest ever finish to a match at the US Open. The American bet Carlos Alcaraz for the first time to reach the semifinals.
7: This is the greatest moment on the tennis court of my life. I'm loving it.
5: The five-set epic finished at 3:30 in the morning, New York time. Former Black Ferns loose forward Rochelle Martin has been inducted into the World Rugby Hall of Fame. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
8: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
4: Suchit kiya jata hai ki Rita Kumar aur Rani Rekha ki maa, यानी रॉबिन हसन और नरेश कुमार की सासुमा वतवलेवु नैंडी फिजी के भूतपूर्व निवासी मनुरेवा की चंद्रावती कृष्णा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार इसी शनिवार को ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप 021-619-359 पर रॉबिन को कॉल कर सकते हैं। याद रहे रानी रेखा और रीटा कुमार की माँ यानी रॉबिन हसन और नरेश कुमार की सासुमा वतवलेवु नैंडी फिजी के भूतपूर्व निवासी मनुरेवा की चंद्रावती कृष्णा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार इसी शनिवार को दिन में 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-619-359 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि किशन मिस्त्री और श्याम मिस्त्री के पिता हिनाबेन मिस्त्री के पति पाकुरंगा के विनोद भाई मंगू भाई मिस्त्री की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोलोड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-257-0160 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे किशन मिस्त्री और श्याम मिस्त्री के पिता यानी हिनाबेन मिस्त्री के पति पाकुरंगा के विनोद भाई मंगू भाई मिस्त्री की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-025-7016 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि विनीता प्रसाद मोनिता शर्मा और डेविड कुमार के पिता मधुलता के पति यानी वतवांगा सुवा फीजी के भूतपूर्व निवासी पापाकुरा के विजय कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम इन ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0445-056 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे विनीता प्रसाद मोनिता शर्मा और डेविड कुमार के पिता मधुलता के पति यानी वतवांगा सुवा फीजी के भूतपूर्व निवासी पापाकुरा के विनय कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप डेविड को 021-0445-056 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि एल्विस गोसाई और कृष गोसाई के पिता अरुणा देवी गोसाई के पति नवातुम बाफी जी के भूतपूर्व निवासी पापाटोटे के राजेश कुमार गोसाई की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। शव को आज दिन में 1 बजे MMG में दफनाया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0755-659 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि एल्विस गोसाई और कृष गोसाई के पिता यानी अरुणा देवी गोसाई के पति नवातुम बाफी जी के भूतपूर्व निवासी पापाटोटे के राजेश कुमार गोसाई की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। शव को आज दिन में 1 बजे MMG में दफनाया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0755-659 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि रॉड्रिक राम और श्रीमल राम के पिता यानी उर्मिला देवी के पति वेसारी लेमी फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-1870-252 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे रॉड्रिक राम और श्रीमल राम के पिता यानी उर्मिला देवी के पति वेसारी लेमी फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-1870-252 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि रावी रविम्बा के स्वर्गीय वेलू रेड्डी के पुत्र यानी सरस्वती रेड्डी उर्फ बेबी के पति पापाकुरा के विष्णु रेड्डी वेलिंगटन की रुक्मणी सामी उर्फ मंजू वैनकूवर कैनेडा के कर्णागरम रेड्डी की पति की पिता यानी पापाकुरा के श्रीमुत्तु सामी रेड्डी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आप आज 7 से 8 के बीच एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी जा सकते हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार कल दिन में 10 बजे एंस फ्यूनरल होम 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप विष्णु को 027-256-8629 पर या साधना रेड्डी को 021-256-439 पर कॉल कर सकते हैं या 26 वेलफील्ड ड्राइव पापाकुरा जा सकते हैं। याद रहे रवि रविम्बा फिजी के स्वर्गीय वेलू रेड्डी के पुत्र यानी सरस्वती रेड्डी उर्फ बेबी के पति पापाकुरा के विष्णु रेड्डी वेलिंगटन की रुक्मणी सामी उर्फ मंजू वैनकूवर कैनेडा के कर्णागरम रेड्डी के पिता पापाकुरा के मुत्तुसामी रेड्डी की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आप आज रात 7 से 8 के बीच एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी जा सकते हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार कल दिन में 10 बजे एंस फ्यूनरल होम 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप विष्णु को 027-562-8629 पर और साधना रेड्डी को 021-256-439 पर कॉल कर सकते हैं या वेलफिड 26 वेलफिड ड्राइव पापाकुरा जा सकते हैं।
8: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: 8 degrees अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं आज का हाई 16 ओवरनाइट कम से कम 9 degrees रहेगा आज. जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा बादल छाएंगे हल्की बारिश के साथ शुरुआत और अर्ली इवनिंग से गंभीर बारिश की संभावना भी नजर आ रही है. सनराइज 6:28 AM पर सनसेट शाम 6:08 पर होगा.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
2: Breakfast catch up. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
4: Hello, Kia ora. Good morning. Namaste and welcome to Hum playing Bollywood's biggest hits. 9 minute ho rahe se mein hamare studios mein 6:00. Aaj hai Thursday, 10th of September. Aaj ki ye subah aap sabhi ke naam karte hue aapko a very good morning and welcome to the show. Good morning aapko bhi.
10: गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का. वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज थर्सडे है 10th of September. आज के इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयां हम आपको देना चाहेंगे. कल हमने आपसे कहा था कि आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए द ब्रेकफास्ट शो पर, तो लीजिए आ गए हैं और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक रहेंगे आपके साथ.
4: बिल्कुल, जहां पर शुरुआत हम ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ कर रहे हैं एंड इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम कैचअप जो है आपके साथ करें. जो भी चीज़ें ओवरनाइट हुई हैं, कल शाम को हुई हैं, दैट यू माइट हैव मिस्ड आउट ऑन या अर्ली इन द मॉर्निंग आज हुई हैं, तो इस पर अपडेट्स जो है हम आपको जरूर देंगे. इसके लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा फॉर दिस कैचअप. एंड डोंट फॉरगेट कि नॉट जस्ट खबरों के मामले में लेकिन बहुत सी एंटरटेनिंग चीजें भी दुनिया भर में होती है एंड वी विल कीप यू अपडेटेड विद दैट एज वेल.
10: तो हमारे साथ ही रहें, इनाम जीतने के बेहतरीन मौके, आपके मन चाहे गाने और खबरों में क्या कुछ है जिसके लिए आपको अपडेटेड रहना जरूरी है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारियां जो है ये हम आपको देंगे.

0: Sunny Side Up.
1: आज की चलिए जो सनी साइड अप स्टोरी है ये आपको जल्दी से हम सुना देते हैं, बता देते हैं. यू नो द पावर ऑफ द कम्युनिटी इज सो इफेक्टिव, सो बिग कि कभी कभी उस बात का एहसास हमें तब तक नहीं होता है जब तक उसका एक कुछ असर हमारे ऊपर ना पड़े या कुछ हम एक्सपीरियंस ना करें ऑन अ पर्सनल लेवल. और ऐसे में सच पावर जो है ये अलग अलग कहानियों से, स्टोरीज जो अराउंड द वर्ल्ड है, यहाँ से जब हमारे पास आती है तो हमें पता चलती है. एंड वी शेयर दोज ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑन सनी साइड अप. आज की स्टोरी इज ऑल द वे फ्रॉम फिलीपींस, जहाँ पर एक रिमोट विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है बेसिकली. और यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो फेस कर रहे थे एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर उनके स्टूडेंट्स, उनके पास बेसिक चीज़ों की कमी थी. उनके स्टूडेंट्स स्कूल तो आते थे लेकिन उनको कई तरह की इम्यूनिटीज़ जो है ये नहीं मिलती थी. एंड व्हेन द टीचर्स सॉ दैट, उनका दिल जो है ये हमेशा भर आता था. छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल और उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि जूते नहीं हैं, बैग्स नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं ढंग के पहनने को. और जब वो देखते थे ये सिचुएशन तो दे थॉट कि कैसे इनकी हेल्प की जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स अ हैंडफुल ऑफ टीचर्स कुड नॉट हेल्प द एंटायर स्कूल. जिसके बाद चलकर उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका जो ये निकाला, एंड दैट वाज टू रीच आउट टू द कम्युनिटी. उन्होंने बेसिक कम्युनिटीज के लिए स्कूल सप्लाईज या फिर जो शूज़ है, स्कूल शूज़ है, इसके लिए बातें जो है ये की अपने लोकल कम्युनिटी के लोगों के साथ. एंड वहाँ के जो प्रेस फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है बाकी लोगों तक पहुँचाया. और कमाल की बात ये थी कि ये रिक्वेस्ट कई बहुत से लोगों तक पहुंची और उन्होंने अपना हैंड जो है ये इनको दिया, एज इन मदद जो है ये दी.
2: और
1: फिर जी तैयार हो गए और फिर सभी लोगों ने मिलकर इस स्कूल के बच्चों के लिए जो बेसिक इम्यूनिटीज़ है ये प्रोवाइड की, जिनमें स्कूल सप्लाईज, स्लीपर्स, बुक के लिए बुक्स वगैरह जो है स्कूल के लिए, बच्चों के कपड़े तक लोगों ने वहाँ पर डोनेट किए. और एक थॉटफुल एक्ट ऑफ जेनरोसिटी जो है इसकी कहानी ये सामने आई.
2: दैट्स जैसे आपने कहा कि और कहावत भी है, एकता में बल है. जब एक इंसान अकेला कुछ करने के लिए सोचता है तो हालांकि शायद वो हासिल कर ले, लेकिन जब सभी मिलकर एक साथ किसी एक टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो बोझ भी हल्का हो जाता है और काम भी आसानी से हो जाता है.
1: एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि कितनी इजीली सबकी मदद हो गई जिनको मदद की जरूरत थी ना, कोई छूटा नहीं
2: जी.
1: तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कम्युनिटी जो एक साथ एकजुट होकर जब कुछ भी करते हैं. तो फिलहाल 20 मिनट हो रहे हैं 6:00 हमारे स्टूडियोज में. थोड़ी देर बाद आपके लिए ग्लोबल हेडलाइंस हम लेकर आएंगे, देखते हैं दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है फिलहाल.

0: Market Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or III Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: Club discount days वापस आ गए हैं Mytotin Mega Westgate और Henderson में इस Thursday और Friday. Mytotin Club members को पूरे store में मिलेगा 15% off. जो भी चाहिए stock करो और save करो. TCs and exclusions apply. Mytotin Mega Westgate and Henderson.
2: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
3: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल हीलो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudimahotels.com/foodfestival.
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari koi branch nahi hai.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
9: Global Headlines.
10: आज सुबह के मुख्य समाचारों में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एक बार फिर $100 पे बैरल पर पहुंच गए हैं जो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की चिंताओं के कारण जुलाई के बाद सबसे ऊंचा लेवल है यूएस द्वारा ईरानियन ऑयल टैंकर्स पर स्ट्राइक और ईरान बैक्ड हाउथीज द्वारा सऊदी अरेबिया पर हुए अटैक्स के बाद ब्रेंट क्रूड जो है बढ़कर $100 पर और यूएस क्रूड ऑयल जो है लगभग $95.70 पे बैरल तक पहुंच चुका है भारत में गुजरात के गांधीनगर में कल शाम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत बड़े क्रेन के गिरने से कम 10 मजदूर डेब्री यानी मलबे के नीचे दबे हैं स्टेट कैपिटल के एक इलाके में हुए इस हादसे के बाद अभी तक 4 वर्कर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है जबकि 10-15 मजदूरों के अभी भी फंसे होने की खबर है उनको बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है फिजी की इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर लिंडा तंबुया ने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यूज रिपोर्ट को पार्लियामेंट के एक स्पेशल सिटिंग में पेश किया जाएगा जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सितंबर सिटिंग तक लाने का टारगेट है सरकार चाहती है कि यह रिपोर्ट जल्द से जल्द पब्लिक की जाए जिसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में लाने का टाइमलाइन फाइनल किया जाएगा पीजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बिल को फुल पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजारा जाएगा जिसमें पब्लिक को सोचने का टाइम मिलेगा और गवर्नमेंट तथा ऑपोजिशन की एक बायपार्टिसन कमेटी इस पर विचार करेगी 4R स्टेडियम गोविंद पार्क मुंबई में इस सप्ताह अंत दयाल स्टील्स मुंबई एफसी और ग्लोबल केयर सुवा के बीच पहला एक्स्ट्रा बैटल ऑफ द जायंट्स का सेमीफाइनल एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है ग्रुप स्टेजेस में दोनों ही टीम्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए 2 जीत और 1 हार का सामना किया जहां सुवा ने अपना पूल टॉप किया और बा रनर्स अप रही 17 टाइम्स चैंपियन बा एफसी के पास होम एडवांटेज है जबकि सुवा के पास 2018 के फाइनल में बा से मिली 2-0 की हार का बदला लेने का मौका है ये मैच शनिवार को 2:30 बजे शुरू होगा, जिसके बाद रिवा एफसी और नसीनू के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। एक्स्ट्रा बीओजी का फाइनल रविवार को 3 बजे से खेला जाएगा। यूएफए चैंपियंस लीग के 2 मैचेस फिलहाल खेले जा रहे हैं। बार्सिलोना की जीत फाइनूट के खिलाफ 4-0 से हो रही है, जबकि वीएफबी स्टटगार्ट वाइकिंग से 3-1 से आगे हैं। और भी मैचेस जो है 7 बजे से शुरू होंगे, जिन पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हमले कराते रहेंगे।
6: Bollywood's most wanted.
9: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ।
11: मैं लाऊं अपना ए गेम।
6: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा आपके लिए लेकर आ रहे हैं एंड इट्स 26 मिनट्स अवे फ्रॉम 7 फॉर नाउ. आपके लिए आज थर्सडे 10th ऑफ सितंबर की ये सुबह ब्रेकफास्ट कैचअप जारी है. वैसे गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस हमारे पास आए हैं, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट एज वेल, क्योंकि आपने समय निकाल कर हमें याद किया, हमें गुड मॉर्निंग विश किया एंड इट ट्रूली मीन्स अ लॉट. सो सबसे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. बॉबी मान जी ने हमें अपना गुड मॉर्निंग मैसेज जो है ये आज सुबह सुबह भेजा है और इन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग जय साई राम, पूजा एंड विजय, हैप्पी थर्सडे, साईज ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके साथ और आपके मैसेज के लिए. और इसके अलावा राम राम साई राम एवरीवन, हैप्पी थर्सडे, हैव अ ग्रेट डे. मिस्टर माटा माटा की ओर से मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग गाइज, मैंडी ने कहा है गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे. बिनीता जी की ओर से भी मैसेज आया है,
1: थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को जहां कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं. कल जो सिनेमा लवर्स हैं हम सभी के लिए एक एक्साइटिंग डे था. वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज जो है इसका ट्रेलर रिलीज हुआ एंड आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव वॉच्ड इट.
0: कौन सी मूवी?
1: दृश्यम 3.
0: ओ नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक.
1: यू हैवंट सीन द ट्रेलर ऑफ दृश्यम 3?
0: नो, नॉट एज येट.
1: फिल्म का ट्रेलर जो है अभी मालूम नहीं कि क्योंकि मैंने भी नहीं देखी ट्रेलर, बट हलचल काफ़ी मची है इसके रिलीज के बाद. अजय देवगन ने इतना कहा है कि ये फिल्म जो साउथ में दृश्यम 3 आई थी उनके जो लीड एक्टर हैं क्या नाम है उनका, मोहनलाल हाँ, उससे किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है,
0: तो वो कहानी नहीं है
1: ना.
0: बिकॉज पहले वाली तो वही कहानी थी ना.
1: उन्होंने कहा है कि सेकंड फिल्म शायद कहीं ना कहीं वाज इंस्पायर्ड बाय द ओरिजिनल मलयालम फिल्म, बट दिस इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट स्क्रिप्ट.
0: ओके,
1: दृश्यम 3 हिंदी जो है ये पूरी तरह से अलग है, इस फिल्म की कहानी अलग है. एंड अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चेंजेस इधर उधर किए हैं, इट्स एंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी.
0: ओके,
1: तो आपको तो पता है कि अजय देवगन वापस आ रहे हैं विजय सलगांवकर के रूप में, तबू आ रही हैं मीरा देशमुख के रोल में, श्रेया सरन एज नंदिनी, रजत कपूर भी वापस इस फिल्म में दिखेंगे, जबकि प्रकाश राज और जयदीप अहलावत भी इस फिल्म के स्टार कास्ट में शामिल हैं.
0: इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट आई वुड से. सीजन टू में दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना थे ना, तो अब दृश्यम 3 में ये भी आ रहे हैं, मतलब जयदीप अहलावत और प्रकाश राज. वेरी इंटरेस्टिंग, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, बट अभी तक मैंने तो नहीं देखा है ट्रेलर. इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच, आपके पास अगर कोई फीडबैक हो तो अबाउट द ट्रेलर, इफ यू सीन इट डू लेट अस नो. फिलहाल के लिए चलिए थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे डिटेल्स अबाउट द 10th ऑफ सितंबर टुडे और साथ में आज का पहला सवाल.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Hum passengers, your next boarding call could take you to paradise. Listen out for your special hum boarding call for your chance to win to return a tickets to Vanuatu with Solomon L.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
2: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: बहुत सी चीजें आज के दिन मार्क की जा रही हैं. ऑन द 10th ऑफ सितंबर काफी चीजें जो है ये हुई थी. इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे एज वेल तो हमें जरूर बताइएगा. अगले घंटे हम आपको विश भी करेंगे. गुड मॉर्निंग परमिंदर, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है फ्राइडे लोडिंग. गुड मॉर्निंग भाई विजय एन पी जे सलू लिसनिंग आउट फ्रॉम गल्फ हवा फंगपुर रोआ. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच सलू आपके भी मैसेज के लिए. तो जल्दी जल्दी बताइए आज क्या कुछ मार्क हो रहा है.
4: आज वैसे मार्क करने के तो काफी चीजें मार्क की जा रही हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ग्लोबली जो आज मार्क किया जा रहा है इज सुसाइड प्रिवेंशन डे.
3: ओके,
4: तो ये आज मार्क किया जा रहा है. इसके अलावा एक और चीज जो है दुनिया के कई देशों में मार्क की जा रही है इज आर यू ओके डे.
3: ओके,
4: और साथ ही में इसके साथ आज टीवी डिनर डे ये मार्क किया जा रहा है. एंड इट्स स्वैप आइडियाज डे. आइडियाज का आदान प्रदान करने का आज दिवस है.
3: वेरी इंटरेस्टिंग. तो कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मार्क की जा रही है. एंड आप जिस किसी भी हिसाब से इस दिन को यू नो सेलिब्रेट करना चाहे, अवेयरनेस वगैरह जो है क्रिएट करना चाहे, यू कैन डेफिनेटली गेट दैट डन. बट कीप इन माइंड कि आज सुसाइड प्रिवेंशन डे है. बहुत ज़रूरी दिन है ये. इससे जुड़े कुछ और यू नो डिटेल में बातें हम बाद में चलकर आज ज़रूर करेंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ ही बने रह सकते हैं. पर फॉर नाउ चलिए आज का पहला सवाल जो है ये आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे आपको गेस करनी है. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने सोचा यही क्यों ना आज आपसे हम पूछ लें. सो ये सवाल जो है दिस इज इन रिगार्ड्स विद अमिताभ बच्चन, जिन्होंने किसी एक फिल्म में सुपर हीरोज जो है या फिर पीपल विद पावर्स इनके गुरु का किरदार प्ले किया था, इनके टीचर का और इनके क्या बोलते हैं गाइड करने के लिए ना उनको.
4: आई थिंक आई हैव सीन दिस मूवी.
3: यू डेफिनेटली हैव सीन दिस मूवी बाय द वे.
4: या बस मुझे नाम नहीं याद आ रहा है.
3: हाँ,
4: वही मैं सोच रहा हूँ.
3: ठीक है, तो अगर आपको नाम याद आ गया है या फिर आपको जवाब पता है तो जल्दी से हमारे पास टेक्स्ट करें आप. 1599 BF लिखे सबसे पहले, फिर उसके बाद अपना आंसर अपना नाम. वो कौन सी फिल्म है आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे जिसमें अमिताभ बच्चन प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ गुरु ऑफ सुपर हीरोज और पीपल विद पावर्स. तो जल्दी से अपने आंसर्स BF स्पेस या आंसर योर नेम 5599 पर भेजे. स्नेहा ने कहा है आंखें. नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर अनफॉर्चुनेटली स्नेहा, सॉरी अबाउट दैट.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
3: Ruzbe, tickets book ho gaye.
4: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
3: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
4: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
5: Fatiha.
4: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
3: Tuk-tuk, street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
6: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
7: Hello everybody.
2: Do shahar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
8: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
2: Text drive on 5599 for the all-inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Ruzbe, only on Hum. Hum. Accurate traffic.
9: Harvey Furnishings Home Show Specials.
10: A high of 17, cloudy most of the day, rain tonight into the city. Just starting to slow down on most motorways. Southern 27 minutes, Manukau to town, 47 from Drury. Slow Papakura on and off to Mount Wellington, few faster spots. Northwestern 25 minutes in from Massey, slow on the Causeway and St. Luke's to the city. Northern 20 in from Constellation, slow at Silverdale and Constellation to Waito Valley.
9: Exclusive Auckland Home Show offers great savings and stylish inspiration this month at Harvey Furnishings.
11: Kya baat hai us khane mein jo पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
12: The Auckland Home Showers are now at Auckland Showgrounds with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice and the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Auckland Home Show, New Zealand's number one home show. We'll see you there.
13: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Get 20% off selected Guardian fence panels and accessories. And get your seeds really growing with Yates 5-litre Black Magic Seed Raising Mix, now only $5.99. Mitre 10, your home for outdoor living.
14: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
15: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
14: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
15: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: Breakfast catch up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
16: काफी इंटरेस्टिंग आंसर्स जो है अभी तक हमारे पास आए हैं जो सवाल हमने पूछा उसके लिए धीर ने अपना मैसेज भेजा है रोनल्ड ने कहा है अजूबा आई डोंट रिमेम्बर दिस मूवी
17: अजूबा में अमिताभ बच्चन थे
16: हाँ बट कहानी क्या थी वो मुझे नहीं याद है 90s की मूवी है ये ओके तो वाज ही लाइक अ लीडर और अ गुरु और अ टीचर
17: मैं अगर कल फिल्म देखता हूँ आज मुझे याद नहीं है वो
16: तो मैं आपसे पूछ के करूँ क्या ओके गॉट इट ओके एनीवेज तो रोनाल्ड अनफॉर्चुनेटली आई कैन कंफर्म इफ इट फिट्स द बिल लेकिन वो जवाब नहीं है जो मुझे चाहिए सो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इट वुड बी रॉन्ग रोज ने कहा है मोहब्बतें सनी ने कहा है मोहब्बतें और हमारे पास किसी और ने भी लिखा है मोहब्बतें अलादीन किसी का जवाब आया है नारा ने कहा है अलादीन सल्लू ने कहा अपना जवाब जो है फंगपरवा से भेजा है कृष्ण ने अपना आंसर भेजा है हर मिलाप का जवाब आया है सो आंसर्स आ रहे हैं इंटरेस्टिंगली कई गलत आंसर्स आए आई थिंक गलत आंसर्स ज्यादा आए हैं आज हमारे पास तो हम आपको थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं जब तक कि थ्रोबैक प्ले हो रहा है आइडेंटिफाई करें आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे और बताना है आपको अमिताभ बच्चन एज अ गुरु ऑफ सुपर हीरोज और पीपल विद पावर्स इनके गाइड थे ये इनके टीचर थे कहीं ना कहीं इनको सिखाते थे अपने पावर्स के बारे में समझना उसे कंट्रोल करना एंड ये पर्टिकुलर मूवी जो है बहुत पुरानी नहीं है, अभी 2015 इधर वी कैन से उसके बाद आई है ये.
17: अच्छा.
16: और अनदर थिंग आई वुड से कि इस पर्टिकुलर मूवी से एक नाम बहुत बड़ा पॉपुलर हुआ था, एक नाम मीम्स में चलने लगा था, बहुत पॉपुलर हुआ था बिकॉज ऑफ द लीड एक्ट्रेस जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था. मैं जितना क्लू दे सकती थी विदाउट गिविंग द आंसर आई हैव डन दैट. अभी देखते हैं किसी को समझ में आता है कि नहीं. बी एफ स्पेस आंसर ये नहीं. 5599 पर आंसर्स भेजे और अगले घंटे हम आपको टॉप ऑफ द

0: finance experience. Call 0800-634-234.
1: गुड मॉर्निंग, 4 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, एंड दिस इज मॉर्निंग मैडनेस ऑल थैंक्स टू मेगा फाइनेंस,
2: जिनकी ओर से हर सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है ये होती हैं. कल मैं एशिया न्यूजीलैंड के एक स्पेशल रिपोर्ट जो है ये पढ़ रहा था, और ये जो रिपोर्ट है वॉज एशियन न्यूजीलैंड फाउंडेशन की रिपोर्ट. उसमें ये बात सामने आई जब मैंने पढ़ा कि न्यूजीलैंडर्स जो हैं 61% ऑफ न्यूजीलैंडर्स जो हैं अब व्यू इंडिया एज एन इम्पोर्टेंट टू न्यूजीलैंड फ्यूचर, एज इंडिया जो है न्यूजीलैंड के भविष्य के लिए जरूरी है,
1: ये ऐसा सोचते हैं अब.
2: हाँ, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें 59% था, सो इट इज गोन अप 2%. 27% लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं इंडिया एज ए वेरी इम्पोर्टेंट.
1: ओके,
2: और जिन लोगों पर ये सर्वे किया गया था उन्होंने हाईलाइट किया है इंडिया का मैसिव पॉपुलेशन, बायलेटरल ट्रेड, इमिग्रेशन लिंक, FTA, और साथ में जो कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज जो है ये मिल रही हैं. यू नो, इस साल जनवरी में जो 1 ईयर खत्म हुआ है, उस दौरान 1 ईयर पीरियड को देखा जाए फ्रॉम लास्ट ईयर जनवरी टू दिस ईयर जनवरी, कितने रिटर्न ट्रिप्स टू इंडिया हुए हैं?
1: कितने?
2: 114,884.
1: वाओ,
2: सो एक साल में 118,884 रिटर्न ट्रिप्स टू इंडिया, और दिस वाज 11% इंक्रीज
1: प्रीवियस
2: ईयर के मिलान में.
1: ओके,
2: और न्यूजीलैंड जो है या इंडिया जो है इज द सेकंड मोस्ट विजिटेड एशियन डेस्टिनेशन फॉर न्यूजीलैंडर्स.
1: दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट कौन सा है?
2: चाइना.
1: ओह ओके.
2: ये रिपोर्ट जो है काफी डिटेल में मैं कल इसको पढ़ रहा था, एंड जब मैंने पढ़ा तो मतलब माय गॉड, 114,000 रिटर्न ट्रिप्स, उनमें से 3 रिटर्न ट्रिप्स जो है हम लोगों का होगा.
1: हाँ,
2: या लास्ट ईयर नहीं, हम लोग
1: साल गए थे.
2: अरे, हम तो इस साल गए थे ना, उसमें नहीं है.
1: हाँ, क्योंकि जनवरी की बात गए थे.
2: हाँ, that is the thing, but that's a massive, massive number. और ये जब मैं पढ़ रहा था तो वहीं पर एक और चीज मेरे नजर में आई. 5 ऐसे स्ट्रीट्स जिनके बारे में माना जाता है that they deserve a spot on your Insta feed.
1: ओके, यहाँ न्यूजीलैंड में?
2: इंडिया के.
1: इंडिया के 5 ऐसे स्ट्रीट्स.
2: हाँ, जो आपके इंस्टा फीड पर एक स्पॉट डिजर्व करते हैं, क्योंकि दे आर रियली ब्यूटीफुल, दे आर रियली डिफरेंट, बट जो कुछ भी हो सकता है. वन ऑफ देम इज फोंटेन हास, जो कि पनाजी गोवा में है.
1: ओके, हैव यू? नहीं, मुझे नहीं याद है.
2: अच्छा, गोवा. दूसरा जो है चांदनी चौक इन दिल्ली.
1: ओके,
2: डिड यू गो टू चांदनी? अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हम लोग गोवा भी गए थे, बट वी डिडंट गो टू ये जो जगह.
1: हाँ,
2: हाँ, जो यहाँ पर है. दिल्ली में भी थे,
1: नहीं गए. चांदनी चौक नहीं गए. इट वाज टोल्ड टू अस कि वन ऑफ द बिजीएस्ट प्लेस है वो चांदनी चौक, तो शायद वी माइट नॉट बी एबल टू मैनेज ऑरसेल्व्स.
2: तीसरा जो है मॉल रोड इन शिमला.
1: नहीं,
2: यहाँ यहाँ पर है ये कॉलोनियल एरा का आर्किटेक्चर आपको मिलेगा. पुरानी दुकानें हैं, हिल टाउन एटमोस्फियर. क्यों हंस रही हो?
1: कॉलोनियल एरा का क्या मिलेगा?
2: आर्किटेक्चर.
1: हाँ, ओके.
2: हाँ, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करो, टाइम ना.
1: इट्स ओके.
2: फोर्थ इज पार्क स्ट्रीट इन कोलकाता.
1: ओके,
2: यहाँ के रेस्टोरेंट्स, कैफेज और बहुत ही लाइवली एटमोस्फियर बहुत पॉपुलर है. एंड द फिफ्थ वन इज हवा महल रोड इन जयपुर. जयपुर भी गई थी आप?
1: हाँ, बट ये नहीं याद है. हवा महल? ओ नहीं, हवा महल क्या, वो ही ना जो
2: हवा महल इस हवा महल.
1: नहीं, वहाँ नहीं गए थे. वो महल देखा था, झील महल देखा था.
2: झील महल?
1: झील महल तो था ना वो. जल महल क्या था यार?
2: मुझे
1: अरे जो पानी के बीचों बीच बना हुआ था, जल महल, समथिंग लाइक दैट.
2: I don't know. ये तो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, मुझे तो याद नहीं.
1: मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है कि वो जल महल था.
2: The interesting thing is कि
1: तीन जगह हम गए हैं
2: और इन तीन चीजों को देखा ही नहीं.
1: हाँ, but it's a
2: obviously
1: different thing.
2: We cannot go everywhere.
1: Yeah, because we went in a different situation. खुद नहीं गए थे हम. We went with a group. We went with a tour group जिसके साथ जहाँ पे planned था चीजें वो हमने की थी. और उस टाइम पे हम ये सारी चीजें जानते भी नहीं थे. तो इंटरेस्टिंग है, अगर आप कभी नहीं गए इंडिया तो प्रोबेबली नेक्स्ट time if you're planning a trip, these are the things you can keep note of.
2: और भी कोई जगह है आपके आपके नजरिए से या आपके ख्याल से अगर आप इंडिया गए हैं या फिर आपकी जो होम कंट्री है जहाँ कहीं भी एक स्ट्रीट आप नेम करे दैट इज वर्थ विजिटिंग दैट इज वर्थ विजिटिंग
1: राइट तो कोई एक जगह जहाँ पर जिस जिस देश से आप बिलोंग करते हैं उस देश का वो एक जगह है जो आप लोगों को कहेंगे कि यहाँ तो जाना ही चाहिए क्योंकि अगर यहाँ नहीं गए तो आपने इस देश को विजिट नहीं किया वैसा वाला सिचुएशन हो जाता है तो आप हमें बताइए
2: लाइक आई एम फ्रॉम फिजी अगर मैं बोलूँ तो आई वुड से आई ड्राइव फ्रॉम रेकी टू तावुआ रेकी तावुआ का जो ड्राइव है समुद्री किनारे पर व्हेन यू गो दैट कंट्री थ्रू दैट कंट्री ड्राइव इट्स सो ब्यूटीफुल
1: ओके तो ये एक चीज है जो आप बोलते हैं कि हाँ, लोगों को करना चाहिए
2: एक्सपीरियंस करना चाहिए
1: आपने हवा महल नहीं देखा कुछ नहीं देखा जयपुर में ये किसी ने कहा
2: भाई देखा भी होगा तो मुझे तो याद
1: नहीं हवा महल नहीं देखा हमने हाँ। मैं वही मैं बता रही हूँ नेपाल में पोखरा ये किसी ने भेजा है हमारे हाँ। पास सी वेरी इंटरेस्टिंग तो ऐसी ही कुछ चीजें आप हमें बताइए चीजें नहीं ऐसे जगह के बारे में आप हमें बताइए दैट इज फ्रॉम योर होम कंट्री जहां पर अगर लोग जाते हैं आपके इस होम कंट्री को विजिट करने और ये जगह नहीं जाते हैं तो इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं देखा
2: yes.
1: जैसे हमारे ये पहले मैसेज पहला मैसेज जिन्होंने भेजा
2: आप बताइए आपके देश में वो कौन सी जगह है वो कौन सी स्ट्रीट है कौन सा रास्ता है व्हाटएवर डेस्टिनेशन दैट इज वर्थ विजिटिंग
1: राइट तो 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे पास एंड बताते रहिएगा अपने नाम के साथ फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हुए पिछले घंटे में सवाल भी किया था मैसेजेस भी आए हैं नितिका का मैसेज आया कुछ लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे नाम नहीं लिखा है सो द मूवी ऑफ द डे टुडे इज ब्रह्मास्त्र पार्ट वन और मैंने एक क्लू दिया था ना कि एक नाम बहुत पॉपुलर हुआ था मीम्स में बिकॉज ऑफ द लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की वजह से शिवा नाम बहुत पॉपुलर हुआ था
2: अच्छा
1: क्योंकि एक फिल्म में ना जाने कितनी बार उन्होंने ये नाम बोला था कुछ कुछ जगह पे तो बस सिर्फ ये नाम ही बोला था डायलॉग के नाम पे तो ब्रह्मास्त्र वाज द मूवी ऑफ द डे टुडे थैंक यू सो मच
2: ब्रह्मास्त्र पार्ट वन पार्ट टू भी आई है
1: पार्ट टू आई नहीं आने वाली है वो पार्ट वन ही थी दैट्स द टाइटल ऑफ द मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट वन ना
2: ओके ओके
1: राइट तो 11 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर थोड़ी देर बाद आपकी राशि वाइब्स हम लेकर आएंगे

0: Indian finance experience. Call 0800-634-234.
1: Rashi Vibes. तो चलिए जानते हैं कि आज का आपका दिन कैसा है
2: भाई। इतना गंभीर कॉन्वर्सेशन छिड़ गया।
1: आई वाज एंजॉयिंग द कॉन्वर्सेशन ना, मुझे मजा आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत देर में रियलाइज किया कि भी ऑन एयर भी जाना है। हाँ, तो राशि वाइब्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं ना
2: मेष यानी एरीज। आज आपकी खातिर बताया गया है कि काम और मेहनत अच्छी तरह से करेंगे तो रिजल्ट भी बढ़िया होगा आपका। और आज अपने हेल्थ का हो सके तो थोड़ा ख्याल रखें। और नए डील्स अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है अच्छी तरह से पढ़ लें।
1: वृषिनी टॉरस, आपके लिए कहा गया है कि एक समय पर एक चीज करिए, ये आपके लिए सही होगा। आज कुछ लोग आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे, इसलिए आपको काम रहना है। एंड व्हेन यू मेंटेन योर कामनेस तो आप फर्मली इन कंट्रोल रहेंगे। एक स्मॉल फाइनेंशियल विन भी आपको हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे आज।
2: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज नेटवर्किंग और नए कॉन्टेक्ट बनाने का मौका आपको मिल सकता है। फाइनेंशियली दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और मेंटली यू विल बी एट पीस। आज ख्याल रखें कि इनफ रेस्ट लें।
1: और कर्क ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि आपका जो घर परिवार है इसे आपके अटेंशन की जरूरत है, तो जहां ध्यान चाहिए वहां ध्यान लगाइए। और साथ में सलाह दी गई है कि हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी कभी सिर्फ सुनना जरूरी है।
2: सिंह यानी लियो, आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा। कोई नया काम या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है और कोई भी काम कर रहे हैं आप अच्छी तरह से उसके लिए पॉलिसीज तैयार कर ले, सोच विचार ले कि कैसे आप ये करेंगे, रिस्क जो है वो इवेलुएट कर लें। काफी एनर्जेटिक आप फील करेंगे आज, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें।
1: और कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि आपका प्रैक्टिकल साइड अभी फिलहाल थोड़ा ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स डन, लेकिन अगर आप कुछ चीजों के बारे में वरी करना बंद कर दे तो शायद आप और भी ज्यादा चीजें जो है ये कर सकते हैं।
2: तुला यानी लिब्रा, टीम वर्क से अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। कोलिग्स काफी सपोर्ट आज आपको देंगे। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। जो लोग कुंवारे हैं आपको आपके लिए कोई नए रिश्ते की बातचीत जो है ये शुरू हो सकती है।
1: और उसके बाद वृश्चिक एंड स्कॉर्पियो, आंखों को खुली रखे क्योंकि बहुत सी चीजें आपके आसपास हो रही है।
2: सोएगा कैसे आदमी?
1: अरे मतलब पे अटेंशन, आंखों को खुली रखना ना, लिटरली ध्यान दीजिए अपने आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें हो रही है जो आपके लिए नुकसान भी ला सकता है फायदा भी ला सकता है, पर आपको वो पहचानते हुए इस पर काम करना है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, स्पेशली अगर आप कोई बहुत जरूरी फैसला ले रहे हैं तो।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, रुके हुए काम पर फोकस करें। फाइनेंशियली दिन अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको सभी चीजों पर ध्यान देना होगा विच रिलेट टू मनी। पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका आज आपको मिल सकता है।
1: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, मेहनत करते रहे क्योंकि फाइनली योर एफर्ट्स आर गेटिंग नोटिस्ड और इसका फायदा आपको हो रहा है। पर इस पूरे सफर को जो आप तय कर रहे हैं, छोटी छोटी विक्ट्रीज को इग्नोर ना करें, उन्हें भी सेलिब्रेट करें।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, क्रिएटिव कामों से सक्सेस मिलेगा। ऑफिस में कुछ नए ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस्ड रहेगा। अचानक होने वाले एक्सपेंसेस से बचने की कोशिश करें।
1: और आखिर में मीन यानी पाइसेस, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आज, बट नॉट नेसेसरली कि एक बुरी चीज है, इसीलिए अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, लेट इट गाइड यू। और अगर कुछ जरूरी चीजें करते हुए आपको मन की शांति हासिल करनी पड़े तो गेट दैट डन, क्योंकि आपके लिए आपके मन की शांति से बढ़कर आज कुछ नहीं है। ये थी आज की आपकी राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे।
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ।
5: We gotta go. Are you ready?
6: Come and take a trip with me.
7: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
8: hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
9: Let's go.
8: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
10: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie.
11: Nah, all good.
10: Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
9: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
12: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Get 20% off selected Guardian fence panels and accessories. And get your seeds really growing with Yates 5-litre Black Magic Seed Raising Mix, now only $5.99. Mitre 10, your home for outdoor living.
13: NIB's got your back. Sign up for NIB hospital cover before 30 November 2026 and get a $200 gift card after paying for your first 3 months. See nib.co.nz for full eligibility criteria and T's and C's.
14: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
3: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
3: Celebrity Alarm. Hit it.
1: सो फाइनली वो घड़ी आ ही गई जहाँ पर आज की सेलिब्रिटी की आवाज हमें आपको सुनानी है. तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, हियर वी गो.
16: आई वांट टू टेल एवरी वुमन अक्रॉस ऑल यू नो एज ग्रुप, बी विलिंग टू लूज एनीवन फ्रॉम योर लाइफ, बट यू नो डोंट बी विलिंग टू लूज योरसेल्फ.
1: तो ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी, इनकी आवाज आपने सुन ली. अब देखना ये है क्या आपने पहचानी या नहीं कि ये कौन है.
2: सो इजी.
1: So easy.
2: Yeah.
1: तो जब मैंने अभी आपसे पूछा था कि आपको पता चला कौन है, आपने तब क्यों नहीं बताया? आपने बोला मुझे पता ही नहीं.
2: हाँ, मुझे तो अभी भी पता नहीं, but it's so easy.
1: क्या हरकत है आपकी यार, seriously.
2: मुझे नहीं पता कौन है भाई.
1: Oh my God. 23 minutes after 7 for now. Let's see, क्या आप इनकी आवाज पहचान पाते हैं या नहीं. BF space you answer your name, 5599 पर आपको बताना. If you can't text us, you can give me a call right now.
2: B, अच्छा.
1: हाँ. अरे कुछ लोग होते हैं टेक्स्ट नहीं कर पाते, तो कौन कर सकता है.
2: अभी अनमोल से इतना भारी भरकम कॉन्वर्सेशन.
1: मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यार. He took out his time. उन्होंने कॉल किया, वो सिर्फ बता रहे थे, जैसे आपने वो सवाल पूछा कि कौन कौन सी जगह आपकी होम कंट्री में घूमनी चाहिए, तो उन्होंने बताया वो कहाँ के है, वहाँ पे कौन सी जगह थी हमने मिस किया. दिल्ली में चांदनी चौक, उन्होंने बोला सच में आपने बहुत अच्छी चीज मिस कर दी, देखना तो चाहिए था एक बार ना. तो कॉन्वर्सेशन आई अप्रिशिएटेड कि he took his time out, उन्होंने कॉल करके बताया. बट द फैक्ट कि जब हम राशि वाइब्स करने गए थे, हमें करीबन 3-4 मिनट लगे.
2: He waited.
1: He didn't put the phone down without saying bye. उन्होंने इंतजार किया. When we finished, ऑफिया गए हम, उन्होंने वापस से वहां से कॉन्वर्सेशन किया, अच्छा दिन हो आपका ये विश कर कर, and then he put the phone down. So it's
2: sweet of him.
1: It's very sweet of him.
2: Yeah. थैंक यू सो मच अपना टाइम जो है ये हमें देने के लिए. तो अब पहचानो भाई आज किसकी आवाज जो है ये हमने आपको सुनाई है. बी सी अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमें भेजें. क्या बोल दिया आपने?
1: मैंने ऑलरेडी बोल दिया था बी एफ लिखने को.
2: नहीं, बी सी लिखो, क्योंकि मैं बताऊं क्यों.
1: चलो, जिन्होंने बी एफ लिख दिया, इट्स फाइन.
2: हाँ, इससे आगे
1: बी सी,
2: इससे आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ.
1: अभी क्या करते हैं,
2: हाँ.
1: एक बार फिर से आवाज सुनाते हैं.
2: हाँ.
1: आप एक बार फिर से ध्यान से आवाज सुन लो. ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी.
16: टेल एवरी वुमन अक्रॉस ऑल you know, age group, be willing to lose anyone from your life, but you know, don't be willing to lose yourself.
1: तो इनकी आवाज आपको पहचाननी है और मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत आसान है इनकी आवाज पहचानना. एक टाइम था व्हेन पीपल वेंट क्रेजी फॉर हर, दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये असल में कैसी दिखती हैं.
2: अच्छा,
1: रियलिटी जो है इनकी, ये कैसी लगती हैं, दिखती कैसी हैं.
2: ओके,
1: हाँ, देयर इज अ रीजन, पर क्यों ये हम आपको बताएंगे बाद में. फिलहाल आप इनकी आवाज पहचाने, बीसी अपना आंसर, अपना नाम हमारे पास भेजे. और आपने कहा थोड़ी देर आप बाद आप बताएंगे ना कि क्यों बीसी लिखकर भेजना है.
2: हाँ,
1: ओके, सो गेट स्टार्टेड. क्या आज की सेलिब्रिटी की आवाज आपने पहचानी या नहीं?
3: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
11: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ,
17: मैं लाऊं अपना ए गेम.
3: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Indian finance experience. Call 0800-634-234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में ऑकलैंड के बॉल्डविन एव रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन से टक्कर की वजह से एक पेडेस्ट्रियन की मौका वारदात पर मौत हो गई है। पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद हाई स्कूल स्टूडेंट्स और गवाहों से बातें की हैं और बाकी लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर क्रिस बिशप ने कहा है कि आउट ऑफ सीक्वेंस प्रोजेक्ट्स के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिकवर करने के लिए कानून में जल्द बदलाव किया जाएगा ताकि काउंसिल की चिंताओं को दूर किया जा सके। ऑकलैंड काउंसिल ने वार्न किया था कि प्लैंड ग्रोथ एरियाज के बाहर बन रहे 50,000 से 60,000 अनएंटिसिपेटेड घरों के कारण उन पर 5 बिलियन तक का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल आ सकता है। प्लानिंग कमेटी चेयर रिचर्ड हिल्स के मुताबिक बिना फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के हो रहे इन अप्रूवल्स और फास्ट ट्रैक डिसीजंस ने काउंसिल पर बड़ा बोझ डाल दिया है। इंडियन क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड टूर को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, जिसमें टिकट्स खुलने के 2 हफ्ते में ही 50,000 से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं। भारी डिमांड के चलते ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम का टॉप लेवल यानी 6th tier 2019 के बाद पहली बार खोलना पड़ा है, जबकि क्राइस्टचर्च में 2nd tier 20 की 75% टिकट्स पहले ही बिक चुकी हैं। 6 साल बाद हो रहे इस टूर में इंडिया 5 T20s 5 ODIs और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा, जिसके लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट फैन एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए स्पेशल तैयारियां कर रहा है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
5: Your holiday boarding pass could be waiting. Keep listening for the next hum boarding call and you could be flying to Vanuatu with 2 return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.
4: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
6: We're gonna fly.
4: Accurate traffic.
7: Monarch, a finish worth celebrating.
8: Fine at times, a lot of cloud, rain in the evening, a high of 17. And on the southern, got a breakdown between Drury and Papakura. It's affecting traffic there, quite heavy at Drury. Then we got slow patches from Manurewa, heavy at Ellerslie, 35 minutes Manukau to town. Northwestern, half an hour in from Massey. Slow Massey to Point Chev, fine to Western Springs, then slow from there. Northern, 24 Constellation to town, slow there to the bridge.
7: Save time without compromising quality. Monarch's premium paint tools deliver a finish worth celebrating.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
9: Moisture और ventilation का problem लगता है।
10: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
12: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
13: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo, and red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
14: Spruce up and save big today only at Briscoe's with incredible up to 60% off store-wide savings on duvet sheets, towels, air fryers, kitchen appliances and more. Stores open late today only at Briscoe's. See online for TCs and store hours.
15: The all-new Mazda CX-5 is big on the road ahead. With 5 years of Mazda care included, it's big on servicing, big on warranty, big on roadside assistance, and big on peace of mind. Mazda.
16: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
17: The masalas are ground fresh, in-house every single day.
16: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
17: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
16: iVillage at Victoria, Indim Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
18: The Beat.
17: of Bollywood.
6: World's best, hamari koi branch nahi hai.
17: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
17: Birthday greetings.
18: Iska birthday bhai?
19: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
18: Happy birthday to you.
10: A very happy birthday, many many happy returns of the day आपको विश करते हैं आज जहाँ कहीं भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. सबसे पहले आज कामो बेन वल्लभ जी जो है ये माउंट रॉस्किल में अपना बर्थडे मना रही हैं. थैंक यू आपके मैसेज के लिए. और ऑफकोर्स अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको विश कर रहे हैं आपके सभी परिवार वालों की ओर से, दोस्तों की ओर से एंड रिश्तेदारों की ओर से.
2: और इनके साथ आज शैलविंद्र नंद अपना सीक्रेट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पापा टोई टोई में. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आप की पत्नी हैं और साथ में बेटी हैं फ्रांसिया, पत्नी फराना हैं, आपके पेरेंट्स हैं बैक इन फिजी, आपके जीजा जीजी हैं शिवा और संजनी और साथ में नीसिस नेफ्यूज और द कावर क्लब के जितने भी टीम मेंबर्स हैं सभी ने आज आपको याद किया है. सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं हम सभी की ओर से. ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.

0: 234.
1: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
3: बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई आज हमारे सेलिब्रिटी अलार्म को लेकर. हमने आपसे कहा कि इनकी आवाज़ पहचानिए, तो मैसेजेस तो आए, कई आए. निखिल है साथ में हमारे पास, शिव का मैसेज आया है, पिंकी ने अपना मैसेज भेजा है, संजय है, आंचल है, देविका है, शनील है, इमरान है, आप सभी के मैसेजेस आए हैं. पर कमाल की बात ये है कि आज मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द सेलिब्रिटी रॉन्ग. आपने हमारे पास अपना जो मैसेज भेजा है, सम आर सेइंग इट्स दिया मिर्जा, कुछ लोगों ने महिमा चौधरी जो ये लिखकर भेजा है, कुछ लोगों का मैसेज आया है स्मृति ईरानी. इंटरेस्टिंग आंसर्स जो है ये हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर आपको इनकी आवाज़ जो है ये हम प्ले कर सुना दे, ताकि आपको अगर आइडेंटिफाई करनी हो एक बार फिर से तो ये आवाज़ आपको पहचाननी है.
4: टेल एवरी वुमन अक्रॉस ऑल यू नो एज ग्रुप, बी विलिंग टू लूज एनीवन फ्रॉम योर लाइफ, बट यू नो डोंट बी विलिंग टू लूज योरसेल्फ.
3: जब इनके बारे में मैंने आपको बताया था, तो जो क्लूज मैंने दिए थे, इफ़ इट एड्स अप टू महिमा चौधरी, ओ दिया मिर्जा और स्मृति ईरानी, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ यू ने मैसेज किया हुआ है, तो कुछ और चीज़ें मैं बताती हूँ. मैंने कहा था कि एक टाइम था जब इनको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही थी, एक्साइटमेंट हो रहा था कि ये असल में दिखती कैसी है. तो मैं अगर आपको प्रिसाइज क्लू दूँ इनके बारे में, ये एक एक्ट्रेस है, ये आपने सही पहचाना. शी स्टार्टेड ऑफ विद टेलीविजन, जहाँ पर ये दिखी थी पहली बार, और इनका एक पर्टिकुलर शो था जिसमें जो कैरेक्टर ये प्ले करती थी वॉज नॉट हाउ शी लुक्ड इन रियलिटी. तो उनके कैरेक्टर को थोड़ा ऐसे बनाया गया था दिखाने के लिए टेलीविजन में कि ये ऐसा कैरेक्टर है, ऐसी दिखती है. एंड पीपल ग्रीव सो मच क्यूरियोसिटी कि ये हकीकत में कैसी दिखती हैं, जिसकी वजह से इनका जो लुक है ये रिवील करने के लिए जर्नलिस्ट भी इनके पीछे पड़े रहते थे, इनकी एक फोटो इनके रियल लुक में लोगों को मिल जाए टू रिवील हर एक्चुअल लुक, क्योंकि इनका कैरेक्टर दैट शी वाज प्लेइंग ऑन टेलीविजन लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ शी लुक्ड इन रियलिटी.
5: अच्छा.
3: और इन्होंने बाद में चलकर इस पर्टिकुलर शो से तो सबसे ज़्यादा फेम इन्होंने कमाया, एंड शी वॉज नोन बाई एवरी हाउस होल्ड, एंड दैट पर्टिकुलर शो गे गॉट अ लॉट ऑफ फेम इज वेल. ये जो एक्ट्रेस है, इन्होंने बाद में मूव किया टू मूवीज,
5: ओके,
3: फिर वेब सीरीज. कल हम बातें कर रहे थे वरुण सोपती के बारे में, आपने इनका नाम भी मेंशन किया था जब इनके बारे में बातें कर रहे थे. एंड एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जहां पर एक फिल्म में इन्होंने आमिर खान की माँ का रोल प्ले किया था, एंड बहुत सवाल उठे थे उस टाइम पर.
5: ओके.
3: अब मैं इससे ज्यादा क्लू आपको नहीं दे सकती.
5: अब तो बहुत इजी हो गया.
3: या
5: वेरी वेरी इजी. आई स्टिल डोंट नो.
3: ओह माय गॉड,
5: मुझे नहीं पता जवाब क्या है.
3: मैं इससे ज्यादा क्लूज नहीं दे सकती क्योंकि आई कैन आई शुड गिव यू द आंसर ओनली, यू नो.
5: इट्स ओके, इट्स ओके. अभी देखेंगे आप में से कितने लोग सही सही आइडेंटिफाई कर पाते हैं. बीसी अपना आंसर और नाम आपको 5599 पर टेक्स्ट करना. मैंने बोला था बताऊंगा क्यों.
3: राइट.
5: आज और कल, दीज आर द टू फाइनल डेज
3: for our hum boarding call competition,
5: and we are almost hitting the 4700 mark,
3: matlab 5000 entries mein pahunchne wale hum.
5: Haan.
3: Okay,
5: itne sare logon ki entries aa chuki hai, kya aapki entry hai yahan? Nahi hai to bhai, ab jab bc aap likh kar bhejenge, link aapko mil jayega, us link par aap click kar dein. Aur taiyar rahe kyunki agle ghante kisi bhi time par hamara hum boarding call jo hai ye play hone wala hai. So bahut आज और कल का टाइम ही बाकी है आपको ड्रो में शामिल होने का मौका टू विन टू रिटेन एयर टिकट्स टू वनुआतु फ्लाइंग सोलोमन एयरलाइंस, जो हफ्ते में चार बार ओकलैंड टू वनुआतु फ्लाई करता है, और $1,000 न्यूजीलैंड हम आपको देंगे स्पेंड करने के लिए.
3: yes.
5: तो ये आप जीत सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एंट्री डालें, अपनी बोर्ड नाव लिखें और ड्रो में शामिल हो जाएं. सो कौन से आवाज आपने सुनी है? बीसी आंसर और नाम. ये इन द नेक्स्ट कितना टाइम बाकी है?
3: 4 मिनट्स.
5: नेक्स्ट 4 मिनट्स का टाइम ही है आपके पास. 5599 पर हमें जरूर भेजें.
3: राइट. तो गेट स्टार्टेड और अपनी एंट्रीज जब आप हमारे पास सेंड कर रहे हैं, मेक श्योर बीसी लिखकर आपको अपना जवाब जो है ये हमारे पास भेजना है आज की सेलिब्रिटी को पहचानने के लिए. और जैसे ही आपके पास लिंक आए कंपटीशन पेज का हम बोर्डिंग कोड में पार्ट लेने के लिए, तो जैसे ही आप क्यू टू बोर्ड सुने अपना कोड एंटर करते हुए सबमिट जरूर करें.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Accurate traffic.
4: ThePropertyDirectory.com.
5: Fine spells, a lot of cloud, high of 17 today. And on the southern motorway, a breakdown between Drury and Papakura has slowed it down in that area. And then we're just slow from Monaco. Heavy patches Mount Wellington to Green Lane, 40 minutes Monaco to the CBD. Northwestern 37 in from Massey, we're slow Massey to the city. Heavy at Te Aratu and Point Chev all the way to Western Springs. Northern half an hour from Constellation, heavy patches there to the bridge.
4: Thinking about property? Everyone you need in one place. ThePropertyDirectory.com.
6: Craving ho rahi hai. थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
7: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
1: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
12: The Breakfast Show.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: Kahi messages aaye hain Shimal, Som, saath mein Vidhi, Anmol, Sunita, Krishna hai, Ranjita Krishna ji hai, saath mein Prashil hai aur uske alawa Arna, Densi, Manju, Firoz, Gunjan ne bhi apna good morning message aur jawab bheja hai. Navneet hai, saath mein Renu hai, Lokesh hai, मोहित, मंजू, हिबा और श्रुति और उसके अलावा रोहिल, कुछ लोगों ने आंसर्स भेजे हैं लेकिन नाम नहीं लिखा है, पर शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए. तो कुछ क्लूज हमने दिए, फाइनली जाकर आई थिंक थोड़ा इजी हुआ एंड दैट्स व्हेन एवरीवन स्टार्टेड टेक्सटिंग द करेक्ट आंसर. आज की हमारी सेलिब्रिटी वॉज मोना सिंह. जस्सी जैसी कोई नहीं इस शो में जब इन्होंने काम किया था, तो जस्सी का जो लुक था वो मोना नहीं थी एक्चुअली में, इट वॉज जस्ट अ लुक. लाइक मोना असल में डिफरेंट दिखती है ना, तो उस लुक को लोग रिवील करना चाहते थे कि मोना जो है द एक्ट्रेस प्लेइंग द कैरेक्टर वो कैसी दिखती है.
2: ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स के लिए.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल टेम्परेचर 11.1 डिग्रीज तक पहुंच चुका है. हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर. मौसम के बारे में कहा गया है, बादल छाए रहेंगे, रह रहकर बारिश होगी. इनफैक्ट शाम के समय ज्यादा गंभीर बारिश होने की संभावना बताई जा रही है. ओवरनाइट टेम्परेचर 9 डिग्रीज रहेगा. एनसन से राज का 6:08 पीएम पर होगा.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: ट्रेंड पेट्रोल में आज हम बातें करने जा रहे हैं अबाउट एप्पल का बिल्कुल नया प्रोडक्ट जो कल अनाउंस हुआ है.
1: ओह इंटरेस्टिंग.
3: यस, आपको पता होगा अगर आपने खबरों में सुना या पढ़ा देखा है कि जो एप्पल ने अपना पहला फोल्डेबल फोन जो है इसे लॉन्च किया है एक सरप्राइज एंड शाइन इवेंट के दौरान. और इसे नाम दिया गया है आईफोन डुओ.
1: क्या?
3: आईफोन डुओ.
1: ओके.
3: तो दो डिस्टिंक्ट कलर ऑप्शंस में ये मार्केट में आएगा. एंड इट इज पावर्ड बाय एप्पल का जो लेटेस्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म है A20 प्रो चिपसेट, व्हिच इज बिल्ट ऑन ए 2nm प्रोसेस. चिपसेट आल्सो पावर्स द न्यू आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स. और ये इक्विप्ड होगा विद अ डुअल रियर कैमरा यूनिट, 48 मेगापिक्सल मेन शूटर. और इस फोन में कैमरा ऑन द इनर फोल्डेबल स्क्रीन जो है मिलेगा एंड द कवर डिस्प्ले. द पासपोर्ट लाइक फोल्डेबल ऑल्सो शिप्स विद द सपोर्ट फॉर मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग. और इसके इसका प्राइस US में आई थिंक अराउंड $2,000 फॉर 256 GB स्टोरेज वाला जो है ये शुरू होगा. एंड जो मैं पढ़ रहा था कि ये शिप होगा विद eSIM सपोर्ट ओनली.
1: ओके.
3: और काफ़ी चीज़ें जो हैं इन डिटेल आज बाद में चलकर ये रिलीज होने वाली हैं. इसके बारे में डिटेल्स हम आपको ज़रूर देंगे. सो दैट्स ट्रेंडिंग, दैट्स व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ. और इसके अलावा इस घंटे हमारा व्हाट्स योर टेक टॉपिक. कल हमने बात की थी व्हाट इज सक्सेस,
1: राइट? हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस.
3: हाँ, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस. अगर आपने मिस कर दिया है तो BF लिखकर आप 5599 पर भेजे. पूरा का पूरा जो व्हाट्स योर टेक है ये यहाँ आपको मिल जाएगा एक लिंक पर हमारे कैचअप पॉडकास्ट में. आज का जो व्हाट्स योर टेक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है.
1: ओके.
3: एंड ये एक ऐसे एस्पेक्ट पर फोकस करेगा या जिस तरीके से इसे हम प्रेजेंट करेंगे शायद वैसे हमने कभी इसके बारे में बातें नहीं की होंगी.
1: तो तैयार रहेगा फाइंड आउट करने के लिए कि आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक क्या है, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम इसे रिवील करेंगे. एंड ऑन द अदर हैंड आप हमारे पास आज भी कॉल करते हुए इस टॉपिक ऑफ द डे में जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं टू मेक द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंग.
3: और इसके साथ इस घंटे हमारा हम बोर्डिंग कॉल ये भी प्ले होगा. याद रखें टू रिटेन एयर टिकट्स टू वनुआतू और $1,000 स्पेंडिंग मनी जीतने का मौका. आज और कल फाइनल टू डेज बाकी रह गए हैं. एक बहुत बड़ा सवाल अभी उठ खड़ा हुआ है. और ये है मेरे मन में तो एक और सवाल इससे जुड़ा आ गया था लेकिन वो अभी नहीं पूछूंगा
1: जी.
3: कि छोले भटूरे,
1: हाँ,
3: when is the best time to eat? Is it breakfast, lunch or dinner?
1: I would say lunch personally. क्योंकि heavy होता है वो.
3: पता नहीं, मुझे तो नहीं पता.
1: मुझे तो heavy लगता है, तो I would say lunch is better.
3: Okay. आप हमें बताइए छोले भटूरे खाने का सबसे perfect time कौन होता है? ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में?
1: Right.
3: वो आप हमें बताएं. दूसरा सवाल जो है कि आप जिस इलाके में रहते हैं, वेयर डू यू गो व्हेन यू क्रेव फॉर छोले भटूरे?
1: ओके.
3: और तीसरा सवाल मेरे मन में ये आया था
1: जी
3: कि छोले भटूरे और चना पूरी में क्या डिफरेंस होता है?
1: बिकॉज भटूरे इज नॉट पूरी, भटूरे इज पूरी का बड़ा भाई है उससे
3: कल जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो बाकी चीजें तो मैं पढ़ रहा था, लेकिन ये सवाल उसी टाइम पर मेरे मन में आया क्योंकि वी हैव ग्राउन अप नोइंग चना पूरी ना, क्योंकि
1: वो हमारे लिए
3: हम लोगों का वहाँ पर छोले भटूरे नहीं होता था, यहाँ आकर छोले भटूरे के बारे में पता चला
1: राइट।
3: तो मैं सोच रहा था कि यार चना पूरी और छोले भटूरे में डिफरेंस
1: क्या है,
3: क्या होता है, फिर ये सारी चीजें कि इज इट ब्रेकफास्ट लंच और डिनर और वेयर डू यू फाइंड द बेस्ट छोले पूरी।
1: अच्छा, बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं।
3: हाँ, क्योंकि सी आई एब्सोल्युटली डू नॉट लाइक छोले भटूरे।
1: अच्छा, तो व्हाई टॉकिंग अबाउट इट,
3: बट it would be interesting to see कि मैं कितने छोले भटूरे खा सकता हूँ।
1: अच्छा, कोई कॉल कर रहा है, I don't know क्या बोलना क्या इनको, but let's find out. Good morning, hello.
4: Good morning.
1: जी
4: जी, आपने जो पूछा है उसका आंसर दे सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी, बताइए।
4: छोले भटूरे is दोपहर में खाया जाता है, और चना जो आपने बोला था दूसरा वाला, चना पूरी जो होता है वो, उसमें डिफरेंस ये है, जब कंजक होती है तो चना पूरी क्या दी जाती है, कंजक आप समझते होंगे
1: नवरात्रि के टाइम पे,
4: और छोले भटूरे होते हैं नॉर्मल नॉर्थ इंडियन फूड।
3: अच्छा, चना पूरी वैसे नहीं मिलता?
1: सी द नहीं,
4: कंजकों पे खाया जाता है, वैसे नॉर्मल आपको शॉप पे नहीं मिलेगा। हाँ, शॉप पे नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी और आलू का झोल मिल जाएगा आपको नॉर्थ इंडिया में, मतलब की शॉप पे खरीदने का।
3: अच्छा, ओके, आई डिडंट नो दैट,
4: आपको बता दिया तभी तो मैंने।
1: अच्छा, छोले भटूरे का जो छोले होते हैं वो व्हाइट चना जो होता है ना, वो वाला होता है
4: एक चीज। हाँ जी, व्हाइट
1: राइट, और जो कंजक में जो चना पूरी होती है वो काले चने का होता है,
4: ब्लैक वाले छोटे वाले डाले जाते
1: हैं, काले चने विद हलवा एंड ऑल ना। बट हमारा, वी आर फ्रॉम फिजी, और वहाँ पे कॉन्सेप्ट जैसे आप बता रहे हो ये छोले भटूरे का, जैसे जिस तरह से ये वाइट चना जो होता है चिकपी, उसकी उसी तरह से हम ऐसे ग्रेवी में बनाते हैं उसको, और जैसे भटूरों का आप कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा होता है वो साइज में, थोड़ा थिक होता है, तो उसी तरह से हम भी वहाँ पे बनाते हैं, बट वो इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाते, लाइक स्मॉल पूरी, पूरी साइज का, जो छोटे साइज का होता है।
4: आप पूरी का, ये एक तरह का ये पंजाबी फूड है जो छोले भटूरे कह रहे हैं ना, ये पंजाबी फूड है, और मतलब कि वो है, और जो दूसरे वाला है वो टिपिकल मैं कह सकता हूँ हिंदू फूड है बोला,
1: राइट ओके,
4: तो थोड़ा डिफरेंस है इसमें, वो थोड़ा हैवी खाते हैं, ये थोड़ा लाइट खाते हैं, वो आटे का बनता है, ये मैदे का बनता है।
1: अच्छा, so that could be another difference, जो जिस तरह से distinguish कर सकते हैं,
4: बड़ा बनता है जो छोले भटूरे हैं, वो मैदे का बनता है, मोस्टली आपको मैदे का मिलेगा, तो मैदे से मैदा फुला देता है उसमें सोडा डाल के, और दूसरे वाला है जो दूसरे वाला छोटे वाला वो तो आटे का बनता है,
1: आटे का बनता है राइट,
4: वो हेल्दी है।
1: That's the difference. We would basically understand properly. चलो जी, thank you आपके कॉल के लिए। नाम क्या है आपका?
4: रोहित।
1: रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए। रोहित है वो,
4: wonderful day.
3: आप ऐसा करो,
1: नहीं रख दिया इन्होंने फोन। मैंने हंसना शुरू किया कि इन्होंने फोन रख दिया अपना। But anyways, interesting यार, काफी interesting conversation हो गया इस घंटे की शुरुआत में। थोड़ी देर बाद आज का वन से टॉपिक आपको बताएंगे।

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye jari hai on hum playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM aur Rover par thodi hi der mein aaj ka hamara What's Your Take ye shuru ho jayega jahan par you will be able to tell us ki aap kya feel karte hain ya What's Your Take aapki raaye kya hai ya apne experience ke bare mein aap hame bata sakenge aaj hum baatein karne ja rahe hain about two or three aspects of savings
1: okay
0: one of them the old school वर्सेस अभी के टाइम पर मॉडर्न
1: ओल्ड स्कूल क्या था
0: ओल्ड स्कूल ना पिगी बैंक तकिए के नीचे गद्दों के नीचे किस तरह से लोग पैसे बचाते थे क्या यू नो हम बातें करेंगे कि डज ट्रेडिशनल सेविंग स्टिल वर्क और सबसे ज्यादा कितने टाइम तक यू बीन एबल टू सेव मनी फॉर
1: ओके
0: इन चीजों के बारे में इसके पीछे एक स्टोरी है वो भी बताएंगे थोड़ी देर में आप अपनी अपने बारे में सोच ले यू मे बी रिकॉलेक्ट आपने क्या किया एंड व्हाट डू यू फील एंड जब बातें होंगी देन यू कैन गिव अस अ कॉल
1: राइट 0800 00 हम 0800 00 4866 पर आप हमारे पास कॉल कर सकेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ आज के व्हाट्स योर टेक टॉपिक में अपनी अपनी राय जो है ये शेयर करने के लिए सो इसके लिए तैयार रहिएगा
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी
5: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना
4: और गानों में जिस

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: SF Rovapa.
1: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn Smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
2: TradeDepot.co.nz.
3: Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: Club discount days वापस आ गए हैं Myteton Mega Westgate और Henderson में इस Thursday और Friday Myteton Club members को पूरे store में मिलेगा 15% off जो भी चाहिए stock करो और save करो TCs and exclusions apply Myteton Mega Westgate and Henderson.
5: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
6: Sorry about that.
5: But it's about time you got a taste of Aussie style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
7: Auckland, it's time to sit back, relax, and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites, or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: What's your take?
11: 18 minute hue hain, 8 bajkar what's your take ka waqt ab ho chuka hai. आपको हमने बताया आज हम बातें करेंगे सेविंग्स के बारे में जो ट्रेडिशनल तरीके थे या पुराने ज़माने में या पहले के टाइम पर जो इस्तेमाल होता था जिस तरह से हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं पैसे सेव करते थे अलग अलग तरीका होता था कहीं कहीं तो मैंने ये भी सुना है कि लोग पहले गड्ढा खोद कर पैसे तोप देते थे
12: ये तो मैंने पहली बार सुना
11: देखा
12: है।
11: तो नहीं है मैंने कभी बट हाँ। सुना हुआ है ऐसा कि करते थे पता नहीं किया किसी ने या पैसे मिले या नहीं या फिर ऐसे ही सुनाते थे लेकिन पहले के टाइम पर आप देखेंगे जो बड़े बुजुर्ग थे अलग अलग तरीके थे एक तो पिगी बैंक्स वो तो चलन कितने जमाने से आई डोंट नो चल रहा है और कौन कौन से तरीके थे जो इस्तेमाल किए जाते थे पैसे सेव करने के और मॉडर्न डे सेविंग किस तरह से की जाती है इसके बारे में आज हम आपसे जानना चाहते हैं क्या आप अभी भी ट्रेडिशनल तरीके का इस्तेमाल करते हैं आपके घर में क्या होता है हाउ डू यू सेव मनी एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट टाइम सबसे लंबे कितने समय तक आपने पैसे जो है ये सेव किए हम ये नहीं जानना चाहते कितने पैसे आपने सेव किए ये स्टोरी कहाँ से एक इंस्पिरेशन के रूप में मुझे मिली इट्स अबाउट 29 ईयर ओल्ड लेडी या लड़की जो है ये इंडिया में है इनका नाम है दीक्षा जायसवाल उन्होंने पिगी बैंक्स में 9 सालों तक बचत की 9 इयर्स तक 2017 में उन्होंने शुरुआत की थी तो हिंदुस्तान टाइम्स पर मैं उनके बारे में पढ़ रहा था जहां पर पिछले 7 सालों में पैसे बचाने के बाद 2026 में उन्होंने अपने उन बचाए हुए पैसों से एक जमीन खरीद ली अपना अपने अपना खुद का घर बनाने के लिए एट द एज ऑफ 29 तो वहीं पर मैंने सोचा कि एक पर्सन जो है जिन्होंने 2017 में शुरू किया और 8-9 सालों में शी मैनेज टू सेव सो मच मनी कि उन्होंने अपने खुद की जमीन जो है ये खरीद ली घर बनाने के लिए। उन्होंने और भी कई बातें कही कि लड़की को हमेशा बताया जाता है कि तुम्हारा घर कहीं और है, तुम बस यहाँ
12: मेहमान हो, हाँ, वो किसी सारी की अमानत हो, हाँ,
11: एंड उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि भाई मुझे अपना कुछ बनाना है, अपना कुछ बनाना है जो मैं खुद अपना कर सकूं, कह सकूं। और उनको 2017 से जो पैसे इधर उधर से कुछ मिलते थे, जो उनके पापा उनको देते थे, तब उसे उन्होंने सेव करना शुरू किया किया। एंड दिस ईयर शी बॉट अ प्लॉट टू बिल्ड हर ओन हाउस।
12: दैट्स अमेजिंग एंड एनकरेजिंग एट द सेम टाइम ना।
11: या
12: तो आज चलिए आप भी अपनी राय हमारे साथ बांट सकते हैं 0800 हम 0800 4866 पर कॉल करते हुए और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या सही लगता है, तरीका क्या है ना सेविंग्स का फॉर यू, द ओल्ड स्कूल मेथड या कुछ नया तरीका, या सबसे लंबे समय तक आपने कितने सालों तक या महीनों तक पैसे जो है इसकी बचत की। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग पूजा जी, कैसे हैं आप लोग?
11: हम लोग ठीक है, आप कैसी हो?
0: बस सब ठीक है, सब बढ़िया। तो ये रोशनी बोली कि मम्मा चावल के डब्बे में रखे जाते थे पहले पैसे, उसने देखा है कहीं?
11: आप तो नहीं रखती थी?
0: नहीं मैं नहीं, मैंने एक्चुअली मैं इंडिया गई थी एक बार बीच में दुबई से, और उसके बाद फिर आई थी तो जो थोड़ी बहुत खर्ची वर्ती मिली थी, जो देते ना लोग निकलते समय, पापा ने दे दी, मम्मी ने दे दी, सबने, तो वो सब मेरे 500,000 के नोट थे और फिर नोटबंदी हो गई और वो पैसे मेरे रह गए।
11: ओके,
0: बहुत दिक्कत हुआ था मेरे साथ।
11: वैसे आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हैं पैसे बचाने के? डू यूज द ट्रेडिशनल?
0: वॉलेट में मेरे साथ जितने मेरे पास पर्सेस है, वॉलेट से, उनमें सब में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा, कोई भी पर्स खाली नहीं रखा हुआ है।
11: तो आप पिगी बैंक जैसे तरीके का इस्तेमाल नहीं करें?
0: नहीं नहीं, कोई जरूरत पड़ती है तो किसी ना किसी पर्स में से निकल जाते हैं पैसे।
12: इंटरेस्टिंग।
11: ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू, टेक केयर, बाय
11: बाय
12: बाय बाय, थैंक यू। गुड मॉर्निंग परविंदर, कैसी हो?
6: मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो?
12: एकदम बढ़िया। आप बताइए अपनी सेविंग्स करने का राज कैसे, किस तरीके से?
6: मैं बहुत सेविंग करती थी, अब जब से घर लिया है बिल्कुल सेविंग नहीं हो रही है ऑनेस्टली।
11: अंडरस्टैंडेबल या
6: पर जो विजय भाई बोल रहे थे ना कि गड्ढा करके डाल देते थे उसमें पैसे या ज्वेलरी, मैंने बचपन में मैंने एक सीरियल देखा था, मिट्टी के रंग आता था इंडिया में, उसमें दिखाया था कि ऐसे दंगे हो गए थे तो लोगों ने अपनी सेविंग ऐसे गड्ढे में डाल के वहां पे से निशानियां रख दी कि यहाँ हमने अपना खजाना गड़ाया है।
12: अच्छा,
6: तो होता ही होगा तभी उन्होंने दिखाया।
12: इंटरेस्टिंग।
11: ओके,
6: तो मेरी मम्मी ऐसे करती थी, रुमाल में बांध के रखती थी पैसे जो भी बचता था, फिर उनको देख के मैंने भी पैसे अपने जो मुझे मिलते थे कभी भी राखी और ऐसे ऐसे इवेंट है ना, मैंने भी पैसे दबाने शुरू कर दिए।
12: दबाने शुरू कर दिए? दबाने नहीं, बचाने।
11: सबसे लंबा कितने टाइम तक यू मैनेज टू सेव परविंदर?
6: मतलब उस टाइम पे जब मैं काम भी नहीं करती थी और मुझे पैसे मतलब कभी भाई ने दे दिए, कभी डैडी ने दे दिए, तब मैंने मतलब जब मैं शायद हाई स्कूल में थी या फिर यूनी में थी, मैंने 2,000 रुपए सेव किए थे।
11: 2,000 रुपीज? ओके,
6: पुरानी बात है, 2000 की बात है, तब तो 2000 का काफी कुछ आ जाता था।
11: इंटरेस्टिंग, थैंक यू।
6: और मेरी मम्मी और मेरी मम्मी किचन में भी हमेशा पैसों का स्टॉक रखी है क्योंकि वाज द फर्स्ट थिंग जो हमारे घर से गेट खुलता था, दो गेट है ना, एक कमरे से, कमरों से और एक किचन से, तो जैसे मम्मी तो मोस्टली किचन में होती थी ना, इट्स सो रॉन्ग, ऐसा नहीं होती है, तो जैसे सब्जी वाला हो गया या कोई, पहले तो आते थे ना ऐसे फेरी वाले, अब तो बंद हो गए हैं
12: जी,
6: तो सबसे पहले किचन से ही मम्मी निकलती थी, तो किचन में पैसों का स्टॉक हमेशा होता था क्योंकि वो सब्जी वगैरह खरीदती थी, कुछ चीजें लेती थी ना, तो किचन में जगह जगह हमारे पैसे होते थे।
12: इंटरेस्टिंग, थैंक यू,
11: थैंक यू परविंदर।
6: मम्मी बोलती थी कि पर्स खाली नहीं रखना चाहिए,
0: उससे लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है, तो चाहे आप एक रुपए रखो। तो ऐसे मेरी मम्मी के पास जो भी पर्स थे उसमें भी हमेशा पैसे होते थे इधर उधर।
12: इनको सब पता है कहाँ कहाँ पे पैसे थे, बस खुद के समय पर नहीं रखती है।
11: थैंक यू परविंदर,
12: चलो टेक केयर। आपके कॉल के लिए अभी आप चाहें तो टेक्स्ट कर सकते हैं, टॉपिक है तो इंटरेस्टिंग, पर बहुत से लोग ऐसे चीजों के बारे में ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते हैं।
11: इसीलिए हम बहुत जेनेरिक रख रहे हैं ना। क्या आप अभी भी ट्रेडिशनल सेविंग के जो तरीके हैं उसका इस्तेमाल करते हैं?
12: ट्रेडिशनल सेविंग्स एज इन बैंक्स में,
11: पिगी बैंक्स,
12: जो पिगी बैंक्स वगैरह थे,
11: पिगी बैंक्स गद्दे के नीचे नीचे,
12: आई मीन क्या एनवलप में भी पैसे डालकर लोग कहीं रखते हैं ना, ये जो घर में चावल के डब्बे में ये पैसे रखने वाली बात, अ लॉट ऑफ अस ग्रोइंग अप हमने शायद एक्सपीरियंस किया होगा विद आवर मम्स विद आवर ग्रैंड मदर्स, तो ये है एक चीज, तो ये पहले होता था, उनका एक तरीका होता था ना, बिकॉज दे न्यू कि उनके किचन में उनके चावल के डब्बे में कोई हाथ नहीं लगाने वाला।
11: और अगर आपके पास कोई नया तरीका है
12: तो वो भी आप बता
11: तो
12: सकते
11: वो भी बताएं भाई, हम भी पैसे बचाना चाहेंगे।
12: राइट तो आप हमारे पास टेक्स्ट जरूर कर सकते हैं 5599, जैसे कि हमने कहा हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है, इस पर आप अपने मैसेजेस हमें सेंड कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद विल हैव अ लुक कि आप ऐसे कितने लोगों ने हमारे पास क्या कुछ मैसेजेस भेजे हैं। प्लस ऑन द अदर हैंड आज थर्सडे है तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु किंडोला से भी बातें करेंगे।
10: Hollywood's most wanted.
13: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना A game.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: राघव चैतन्या रूअक है और साथ में महमूद की आवाज में आपके लिए ये गाना आज हम पेश कर रहे थे बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड में कॉकटेल 2 उस फिल्म का ये ट्रैक आपके लिए हमने पेश किया। फिलहाल जैसे कि हमने कहा था बातें करेंगे आज लॉजिक फाइनेंस के गुरु किंडोला के साथ एंड वी हैव गॉट गुरु ऑन द लाइंस विद अस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गुरु।
1: गुड मॉर्निंग पूजा, हाउ आर यू?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत बढ़िया,
2: थैंक यू। और गुरु के साथ आज एक और स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ लाइन पर जिनका सपना गुरु ने साकार किया है। फजील, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो।
3: गुड मॉर्निंग विजय,
2: सब बढ़िया चल रहा है?
3: सब बढ़िया चल रहा है एक्चुअली में।
2: हाँ। ओके, तो सबसे पहले फजील आप बताइए अपनी कहानी, क्या हुआ था आपके साथ और कैसे गुरु और लॉजिक फाइनेंस ने आपको हेल्प आउट किया?
3: जी, 3 साल पहले मैं गुरुजी से मिला, ओवर द फोन मैंने बात किया था, तो उसने मेरा लोन रिस्ट्रक्चर उस वक्त किया था। तो उस वक्त उसने मुझसे बोला था कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं बहुत हेजिटेंट था तो मैंने उस वक्त मना कर दिया। तो फास्ट फॉरवर्ड 3 ईयर्स नाउ, जबकि अब मेरा यू नो लोन स्ट्रक्चर जब फिर से रिव्यू होने का टाइम आया, तो मैं 2 महीने पहले गुरु के पास गया और उन्होंने मेरा लोन का रिस्ट्रक्चर देखा और उसने मुझे बोला कि आपके पास डेफिनेटली अभी पॉसिबिलिटी है एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करने का और अपने पैसे को अच्छे तरह से यूटिलाइज करने का। तो हमने सोचा कि नहीं, मे बी मेरे पास इतना पोटेंशियल नहीं है या मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है एक ही घर के मोगज के साथ ना, तो और मेरे पास 2 बच्चे भी थे तो मुझे डिफिकल्ट लग रहा था। तो गुरु ने मुझसे डिस्कस किया, नंबर्स लिए, फिगर्स लिए और मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर उस वे से किया और डिजाइन किया स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू माई लाइफ स्टाइल, और उसने फिर मेरा लोन रिफाइनेंस कराया, मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो लोन था वो अप्रूव कराया, और उन्होंने साथ साथ में मेरे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज थे वो भी उसने रिव्यू किया, और जो स्ट्रक्चर था बहुत उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया मेरे इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी उसी वक्त। और आफ्टर अ मंथ जब मैंने उससे बात की, तो अभी लास्ट वीक ही मेरा सब मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेस किया हुआ है, मेरा वो लोन भी सेटल हो गया है, रीफाइनेंस भी उसने किया। तो विद इन जब मैंने उससे रिकंसल्ट किया, जब उन्होंने मेरा रिव्यू किया, उसके 1 महीने बाद एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, मुझे अच्छी तरीके से उसने एक लोन स्ट्रक्चर करके दिया। और मैं आपसे ये बोलूं कि मैं उस वक्त या कभी भी सोच नहीं सकता था कि मैंने दूसरी प्रॉपर्टी भी ले सकता हूँ या इन्वेस्ट कर सकता हूँ ओकलैंड मार्केट में। तो गुरु ने वो मेरे लिए पॉसिबल किया, मेरी फैमिली के लिए पॉसिबल किया, जो मुझे एक फाइनेंशियल स्ट्रेस लगता था उसने वो फाइनेंशियल सक्सेस करके दिखाया मुझे। और गुरु ने थ्रू आउट द प्रोसेस day 1 to जब तक सब चीज प्रॉपर नहीं हो गया, पूरा मेरा रीफाइनेंस का लेकर इंश्योरेंस पॉलिसी अपडेट होकर और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब सेटल भी हो गया, पूरे वक्त वो प्रोसेस में साथ साथ थे, कम्युनिकेशन उसका बहुत बढ़िया था। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, कभी कभार वो रात को भी काम कर या कॉल कर मेरे पेपर्स के लेकर वो काम करते थे, बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, इनके पास जो टीम है ना वो बहुत ही नंबर 1 टीम है एक्चुअली। मैंने पहले भी इसके साथ काम किया और इस वक्त जिस तरह का डेडलाइन था और जिस तरह का सब लोन स्ट्रक्चर था, बहुत ही पेपर वर्क था, बहुत ही काबिल तारीफ से इन्होंने काम किया, इसके टीम ने भी काम किया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मिरेकल्स डू हैपन, और अगर जो भी लोग सुन रहे हैं वो सोच रहे हैं कि कब राइट टाइम आएगा, क्या अभी राइट टाइम है या हो सकता है या ना हो सकता है, आप गुरु को कॉल करो और अपने अपने अपने आप को अपने फाइनेंस को रिव्यू कराओ और डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन और गोल्स वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे आपके लिए।
2: Amazing. Congratulations, फजील आपको। अब गुरु ये बताइए, फजील की बातें सुनकर कई लोग शायद अभी इंस्पायर्ड हुए होंगे और वो सोच रहे होंगे कि मैं भी, अब वो टाइम आ गया है कि हमारी भी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो कैसे आपसे बातें कर सकता है?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विजय भाई, to bring Fazil online. And Fazil, thank you for this awesome feedback. Fazil ka ek sabse badhiya baat jo I think every listener should listen and understand ki jo financial stress tha inka, usko he convert karke financial success kar diya. Kya badhiya baat bola inhone. Beautiful. So wohi jo agar aisa hi financial stress ko agar financial success mein convert karna hai, to definitely you can get in touch with me on Logic Finance. Logic Finance, aap agar Google mein search karoge, you will get my details. Or 0800 number hai, which is a free number, which is 0800 Logic G. Agar aap 0800 Logic G type karte ho, to it comes to me, which is 0800-564-424. So 0800-564-424 is the number to get in touch with me.
2: Thank you so much, Guru, and thank you so much, Fazil, aapke time ke liye, and we wish you all the best.
3: Thanks.
1: Thank you, Fazil. Thank you, guys.
2: Thank you.
4: Ladies and gentlemen.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: Curtin Studios Massive Madness sale on now.
3: A fine start. Cloud will take over, a high of 17. Into the city, Southern Motorway, couple of breakdowns coming in. One between East Tamaki and Princes, and then between Ellerslie and Green Lane. We are slow from Manurewa, got some heavy patches of Tahuhu to Ellerslie. Northwestern 32 and from Massey, slow from the causeway, heavy patches. Northern 28 Constellation to town, heavy at Silverdale, slow from Constellation, heavy at times.
2: Free curtain making, half price custom blinds, and up to 50% off ready-mades. Visit Curtin Studio today.
4: Professional by Ninja. है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
6: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
7: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
8: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
9: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
10: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
10: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: याद रही हम बोर्डिंग कॉल ऑलरेडी प्ले हो चुका है. अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता ही चल गया कि ऑलरेडी प्ले हो गया. इसका मतलब आपके पास उसी प्ले टाइम के बाद से 60 मिनट्स का टाइम है. अभी कितने बाकी है ये तो खैर आपको जाकर जब आप एंट्री करोगे पता चल जाएगा, लेकिन अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं की है तो अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि इसी घंटे प्ले हुआ है. बिफोर द एंट्री क्लोजेज आप जाकर अपने नामों को ड्रो में शामिल कराइए हम बोर्डिंग कॉल के लिए. आपको पहुँचना है रोवा ऐप पर, जहाँ पर आपको कंपटीशन पेज मिलेगा जहां पर लिखा हुआ होगा एंटर कोड नाउ. उस जगह पर आपको जाकर दो वर्ड्स बोर्ड नाउ ये टाइप करने हैं और सबमिट करना है अपनी एंट्री. वंस यू टाइप बोर्ड नाउ और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी एंट्री जो है ये रजिस्टर हो जाएगी. आप ड्रो का हिस्सा बन जाएंगे जहां पर आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न टिकट्स टू वनुआतु विद सोलमन एयरलाइंस plus $1,000 spending money. Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. FlySolomons.com आप विजिट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए. टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिटेल्स चाहिए तो आप hum.over.nz जो है ये विजिट कर सकते हैं. याद रहे टाइम है तो मेक द मोस्ट ऑफ इट. और अगर आप रोवा पर जाकर नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कहाँ पर है कॉम्पिटिशन पेज, कहाँ पर जाकर आपको बोर्ड नाउ टाइप कर सबमिट करना है, तो आप क्या कीजिए, BC लिखिए और 5599 पर सेंड कर दीजिए. हमारे पास BC लिखकर 5599 पर आप सेंड कर दीजिए. ऑटो रिप्लाई में आपको मिल जाएगा लिंक और उसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे उस पेज तक पहुंचेंगे जहां पर बस आपको जाकर ये कोड यानी कि बोर्ड नाउ ये टाइप कर सबमिट करना होगा. फिलहाल समय की ओर देखें तो 7 मिनट बाकी है 9 बजने में और आज है थर्सडे 10th of September. आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है. अ सिंपल कॉन्वर्सेशन कैन मेक अ डिफरेंस. If you are struggling, talk to someone you trust. If someone you know is having a hard time, reach out. Together, we can save lives. Asian Family Services offers free counseling and mental health support. take the first step today. Call Asian Helpline on 0800-862-342 for free and confidential mental health support.

0: morning. There were delays after a person was struck and killed by one in Mount Albert yesterday afternoon. RNZ reports police at the scene told them it was a boy who died. Police are yet to confirm details about the victim. They're speaking to witnesses, including students, understood to be from Mount Albert Grammar, who were on the platform at the time. A study has looked into the long-held theory that smokers are less likely to develop Parkinson's. Researchers found a possible link with carbon monoxide absorption, but Otago Uni's Tony Pitcher stresses the exact reason for the result is unclear.
1: This is just an observational study. We can't hang our hat on this just yet and say that carbon monoxide is going to prevent Parkinson's.
0: $8 million is being put towards the Waitangi Treaty Grounds and supporting its continued operation. The government says preserving heritage buildings, museums, cultural facilities and public infrastructure and a site of this significance is essential. President Trump admits the Ukraine-Russia peace deal is tough to resolve. He says he's had a great conversation with President Vladimir Putin recently.
2: And if Zelensky is wanting to make a deal, that'd be very nice.
3: What is the hold-up?
2: The hold-up is two people that hate each other.
0: And in sport, a massive blow for the Black Ferns ahead of their WXV test matches in the Northern Hemisphere. Co-captain Roahe Demand suffered a calf injury in last weekend's win over South Africa. The first five will miss Sunday's match against France and the games against Scotland and England. Rugby with All Blacks travel on hospitality.com. An American tennis player, Coco Gauff, has set up a US Open semi-final against new number one, Elena Rybakina.
4: Sports News.
5: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari good brands bhi hai.
5: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
7: याद रहे सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का वेदर ज्यादातर क्लाउडी रहेगा. रह रहे करोड़ शावर्स होंगे. शाम के समय ज्यादा गंभीर बारिश होने की संभावना है. सनसेट तो होगा 6:08 PM पर और फिलहाल टेम्परेचर 14 डिग्रीज है. हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड लेटर टुडे. ओवरनाइट 9 डिग्रीज रहेगा.
5: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको. स्प्रिंग सेल ऑन नाउ. ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
8: What's going on? Kya bakte ho?
9: Are kehna kya chahte ho?
7: आज की क्या वक्त है स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. और ये जो कहानी है ये दरअसल आपके लिए बिहार से हम लेकर आ रहे हैं. वहाँ की कहानी है ये. बिहार में गोपालगंज एक जगह है और वहाँ पर एक परिवार जो है ये काफ़ी पॉपुलर हुए हैं. और इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद चलकर इनके इस पर्टिकुलर सिचुएशन की जो डिटेल्स है ये सामने आई. बिकॉज जब ये चीज़ ये कर रहे थे तो आसपास के लोग उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर रहे थे. तो गोपालगंज में यहाँ पर ये जो परिवार है इन्होंने रिसेंटली एक महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक गाड़ी जो है ये खरीदी. और गाड़ी के मालिक है मनोज यादव. रिपोर्टेडली वो इसराइल में काम करते हैं और वो वरिड थे इस बात को लेकर कि उनकी व्हीकल की सिक्योरिटी कौन रखेगा. ख्याल कहीं चोरी वोरी हो गई या उसके गाड़ी के अंदर का सामान चोरी हो गया जब वो नौकरी पर जाएंगे तो.
10: Okay.
7: तो इनिशियली जो गाड़ी है उसे देखा जा रहा था बाय अ ड्राइवर जब ये बाहर जाकर काम कर रहे थे. बट द ड्राइवर हैड लेफ्ट एंड वेंट अब्रॉड लीविंग की फैमिली जो है उनकी गाड़ी जो है ये कंसर्न थे कि क्या होगी उनकी गाड़ी को लेकर. अगर गाड़ी को बाहर पार्क किया तो कुछ हो गया जैसे कि मैंने कहा स्क्रैच आ गया चोरी हो गई जो भी है. सो उन्होंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन का एक बड़ा ही एक्सट्रीम सोल्यूशन जो है ये निकाला. एक क्रेन जो है ये हायर किया. क्रेन के जरिए पूरी की पूरी जो गाड़ी है ये उन्होंने लिफ्ट की और घर के सेकेंड फ्लोर के रूफ पर गाड़ी जो है ये पार्क कर दी. इस वीडियो में ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है इसे देखा जाता है बीइंग लिफ्टेड बाय अ लार्ज क्रेन. स्लोली इसे लिफ्ट कर सेकंड फ्लोर के रूफ टॉप पर जो है ये पार्क किया जाता है. और वहाँ पर जब ये पार्क होती है तो ये अनयूजुअल साइट बेसिकली ऑफ पार्किंग ये दरअसल ऑनलाइन काफ़ी वायरल हुआ. लोगों ने इसे देखा और फिर अपने अपने जो रिएक्शंस हैं ये शेयर किए कि आज से पहले शायद इस किस्म की पार्किंग ऐसी गाड़ी की किसी ने कभी नहीं देखी होगी.
10: सेकंड फ्लोर पर
7: घर के सेकंड फ्लोर पर क्योंकि वहां पे से अब गाड़ी नीचे कैसे आएगी. अनलेस एंड अनटिल द ओनर हायर्स अ क्रेन अगेन और उसके जरिए गाड़ी को नीचे लेकर आते हैं उसके बिना वो नीचे आएगी कैसे. सो कोई चोरी करने के इरादे से अगर जाएगा भी तो वो गाड़ी का पूरा जो गाड़ी है ये नहीं चुरा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें वगैरह अंदर से चुरा सकते हैं, पर पूरी की पूरी गाड़ी कम से कम ये नहीं जाएगी ना, वो चीज़ है। सो ऐसी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस जो है ये लोग निकाल ही लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स का। और ये प्रॉब्लम्स जब ऐसे प्लेटफॉर्म पर आती है, सोशल मीडिया पर आती है, तो लोग अपना बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन भी उस पर देते हैं।
10: और वही रिएक्शंस और ऐसी स्टोरीज आपके लिए हम लेकर आते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, हर दिन क्या बकते हो में। थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है, इसकी भी जानकारियां आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे।
7: और लेटर दिस आवर आज का डेली राउंडअप ये भी आपके लिए हम शेयर करेंगे। कुछ बहुत ही जरूरी जानकारियां जो है ये सामने आई हैं। इनफैक्ट एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है ड्राइवर लाइसेंसिंग को लेकर, और काफी फ्रॉड एलिगेशंस वगैरह जो ये सामने आ रहे, केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन जो है ये एक बार फिर सामने आया है, और इससे जुड़े कुछ डिटेल्स आपके लिए आज के डेली राउंडअप में हम जरूर शामिल करेंगे। सो स्टे विद अस फॉर दैट।
3: Mixing in the house.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, dekho maa gaye.
4: तो क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में, जिसका हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आपको हम याद दिला दें कि श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, यहाँ पर गणेश उत्सव जो है ये मनाया जाएगा 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच, और आप हर रोज़ इसमें 7:20 से प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। वैसे 20 सितंबर को यहाँ पर प्रोग्राम जो है, पूजा जो है, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद गणेश विसर्जन ये किया जाएगा दिन में 12 बजे से। अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, चाहिए तो इसके लिए आप श्री राम मंदिर को जरूर संपर्क कर सकते हैं।
5: श्री भारतीय मंदिर पर सेंड्रिंगम में 14th ऑफ सितंबर से 20th ऑफ सितंबर तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, और भागवत व्यास रहेंगे ब्रजरास रसिक डॉक्टर श्री कृष्णा किंकर जी, जो कि श्री धाम वृंदावन से आ रहे हैं और नाम संकीर्तन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और उनसे ये कथा आप श्रवण कर सकेंगे। साथ में 100 ईयर्स ऑफ पिछवाई का सेलिब्रेशन जो है ये भी रहेगा, तो आप इसमें भी ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं।
4: और अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप कम्युनिटी के लोगों के लिए कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम बातें करें, डिटेल्स जो है ये लेकर आए, तो आप ज़रूर हमारे पास मैसेजेस जो है अपने ये भेज सकते हैं ऑन buzz@hamfm.com पर आप हमारे पास ईमेल कर सकते हैं, और डिटेल्स जो है ये हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हमारे व्हाट्सएप ऑकलैंड के सेगमेंट के दौरान।
6: Please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
7: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
8: Let's go.
7: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
9: Ma,
7: it's
9: your dinner. Haan, it's
10: your dinner. Jab kashish desi ghee se khana banega, to yahi to hoga. New Zealand mein most advanced technology se bana grass-fed danedar cow ghee. Jab khane mein hogi itni shuddhta, itna swad. तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
9: मुझे भी।
10: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
11: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
12: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
11: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
13: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
14: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
15: Yes, and Zillow sounds great, but I'd really like to see one in person.
14: Now you can. Come and walk through 2 fully finished Zillow homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
15: Now that I like the sound of.
14: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane, or visit zillow.co.nz.
16: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
2: The Auckland Home Showers are now at Auckland Showgrounds, with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice, and the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Auckland Home Show, New Zealand's number one home show. We'll see you there.
8: Farmers Manchester Mania sale is now on, with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows, and more. 50% off towels by top brands like Sheridan, plus 50% off sleepy head beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
17: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम
18: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
17: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
19: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
4: 19 minutes after 9 और आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज है 10th ऑफ सितंबर और आपको याद दिला दे 13th ऑफ सितंबर को हमारे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं फॉर फीजी कीर्तन रिकॉर्डिंग, यानी अभी से 3 दिनों के अंदर अंदर.
5: और अगर अभी तक आप रजिस्टर नहीं हुए हैं, यू स्टिल हैव टाइम. आपको क्या करना है, अगर आप एक कलाकार हैं और कीर्तन गाते हैं और चाहते हैं कि आपके कीर्तन की रिकॉर्डिंग की जाए बिल्कुल फ्री में, एंड दिस कीर्तन टू फीचर ऑन हम फिजी कीर्तन संग्रह, जो कि 24/7 जो फिजी कीर्तन है जहां पर आप जाकर सुन रहे हैं, उसे अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए तो हम आपके शुक्रगुजार है ही. लेकिन अब आपके टैलेंट को, आपकी कला को भी दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं. ऑल यू हैव गॉट टू डू इज कि आप जो रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट करें. रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना तो बड़ा ही सिंपल है, आपको बस KR लिखना है और उसके बाद भेज देना है हमारे पास 5599 पर. आपको एक लिंक जो है ये मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करते हुए आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये हासिल कर सकते हैं.
4: बहुत ही आसान है, आपको बस जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिले उसमें आप डिटेल्स एंटर कर उसे सबमिट कर सकते हैं. पर ये बात याद रखिए कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपनी सबमिट कर दी है, ये आपकी रिकॉर्डिंग स्पॉट को कंफर्म नहीं करता, क्योंकि सिर्फ 20 आर्टिस्ट्स की रिकॉर्डिंग जो है ये की जाएगी. और जब आपके रजिस्ट्रेशन हमारे पास आएंगे तब हम आपको कन्फर्म करेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग स्पॉट मिला है या नहीं. ये भी हो सकता है कि 13th of September से पहले, आज 10th of September है, कई लोगों ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास भेजे थे मैसेजेस. अगर 13th of September से पहले 20 आर्टिस्ट्स के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, मतलब 20 से ज़्यादा नहीं लेंगे वैसे भी, विच मीन्स कि आपको वैसे भी मिल जाएगा स्पॉट. बट अगर 13th of September से पहले ये होता है तो जस्ट इन केस अगर 13th of September तक 20 आर्टिस्ट नहीं हो पाते, कुछ एक्स्ट्रा हो जाते, देन विल कन्फर्म योर स्पॉट.
5: तो आपको क्या करना है, बस KR लिखें और उसे 5599 पर हमारे पास भेजें. KR लिखकर 5599 पर भेजें ताकि लिंक आपको मिल जाए और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन जो है ये आप कंप्लीट कर लें.
4: तो याद रहे, आप एक कीर्तन कलाकार हैं, आप कीर्तन जो है ये गाते हैं, या किसी को जानते हैं जो कि कीर्तन कलाकार है, बहुत अच्छा गाते हैं, पर अभी तक शायद उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो. आपके बच्चे हैं जिनको आप इनकरेज करना चाहते हैं, वो ऐसे पब्लिक गैदरिंग्स में गा चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, आप चाहते हैं कि उनका भी एक खुद का एल्बम हो, रिकॉर्डेड हो, तो आप इसमें ज़रूर रजिस्टर करा सकते हैं खुद को, अपनों को, या फिर अपने बच्चों को. और अगर किसी और के बारे में डिटेल्स हैं तो आप खुद नहीं शेयर करना चाहते, उन तक ये इन्फॉर्मेशन आप पहुँचा सकते हैं. बस KR लिख के 5599 पर सेंड कर दे और ऑटो रिप्लाई में जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आपको मिले वो आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं.
5: याद रहे, सिर्फ रजिस्टर होने से कुछ नहीं होगा, या फिर लिंक हासिल करके अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा. इसीलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसी वीक बंद होने जा रहा है, दिस अनदर 3 days टू गो, सिर्फ 3 ही दिन बाकी रह गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए. सो गेट दैट डन एज क्विकली एज पॉसिबल ताकि आपका स्पॉट जो है ये कन्फर्म हो जाए. लेकिन जो पहली चीज आपको करनी है, KR लिखें और उसे हमारे पास भेजें 5599 पर.
17: Bollywood's most wanted.
20: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं?
21: मैं लाऊं अपना A game.
17: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो बड़ा ही कमाल का ये गाना विशाल ददलानी और उनके साथियों की आवाजों में आपके लिए हम लेकर आ रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा। आज का इस घंटे का चार्ट बस्टर ये रहा। ऐसे और भी कमाल के गाने अगर आपको सुनने हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लेटेस्ट पॉडकास्ट ट्रेंड मेकर्स, जहां पर ये एक म्यूजिकल पॉडकास्ट है, पॉप एक म्यूजिकल जर्नी आप इंजॉय कर सकते हैं। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है अलग अलग जॉनर्स के एरियाज के गाने जो हैं ये इंजॉय करने के, जहां पर ट्रिब्यूट्स प्ले किए जाते हैं टू द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड, सिंगर्स हो, कंपोजर्स हो, लिरिसिस्ट्स हो या फिर एक्टर्स हो, उनके गाने जो है ये आप सुन सकते हैं। बाय द वे, अगर आप भी अपना एक यू नो रोड ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग ऑन गोइंग ऑन अ लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव, तो आप ये जो ट्रेंड मेकर्स पॉडकास्ट है ज़रूर सुन सकते हैं, जहाँ पर एक स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया प्ले लिस्ट सेट किया गया है आपके लिए, आपके मूड को बनाए रखने के लिए, ताकि आप अपनी जर्नी जो है ये इन्जॉय कर सके, जो आप सैंडी एंड रूसबे के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, टॉकिंग अबाउट सैंडी एंड रूसबे अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट, इनका जो है इसका एक रिसेंट एपिसोड इन्होंने रिलीज किया है, और इट आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इफ यू डाइड टुमारो तो आपके पैसे किसको मिलेंगे, आपका घर, आपका कीवी सेवा, आपके गहने, आपका बिजनेस, ये किसके पास जाएगा? ज़्यादातर लोग ऐसे सिचुएशन में ऑफ कोर्स ये सोचते हैं कि बीवी बच्चों को, परिवार वालों को, माता पिता को, लेकिन व्हाट हैपेंस इफ दैट्स नॉट द केस और दैट्स नॉट एक्चुअली हाउ द होल सिचुएशन वर्क्स। न्यूजीलैंड में अगर आप बिना विल छोड़े या बिना कोई एक लीगल विल जो है अपना ये लिखे आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप एस्टेट टू सब्जेक्ट इंटेंसिटी लॉज के हिसाब से आउटकम जो है ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्ट। और अगर आप समझना चाहते हैं द मिसकंसेप्शंस अराउंडेड जो शायद हमारे आसपास हो, हमारे इनहेरिटेंस को लेकर, हमारी प्रॉपर्टी को लेकर, तो आप तानिया पिंटो जो कि सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट रह चुकी हैं, इनके साथ जब सैंडी न्यूज़बे ने इन सारे सवालों को डिस्कस किया, इनके जवाब हासिल किए, तो ये अनफिल्टर्ड की रीसेंट पॉडकास्ट में आप जाकर सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको इस पॉडकास्ट का लिंक चाहिए, बहुत आसान है, आप सिर्फ ड्राइव लिखकर 5599 पर भेज दीजिए और आपको लिंक मिल जाएगा। रोवा या स्पॉटिफाई पर भी आप इसे सुन सकते हैं। एंड नॉट फॉरगेटिंग ब्रेकफास्ट कैचअप का हमारा पॉडकास्ट, जहां पर ब्रेकफास्ट शो के दौरान कुछ टॉपिक्स जो कि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं या कोई गेस्ट आते हैं जिनके साथ जो भी बातें होती हैं वो हम आपके साथ जब शेयर करते हैं, तो उसका ये एक कैचअप पॉडकास्ट जो है ये आप सुन सकते हैं। रिसेंटली हमने बातें की थी, आई थिंक कल ही, इसके बारे में, जहाँ पर हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में किस हिसाब से हम सक्सेस को मेजर करते हैं, उसके ऊपर कुछ बातें हम लिखी हैं। तो अगर ये भी आप सुनना चाहें, इसके लिए बी एफ लिख कर आप 5599 पर सेंड कर सकते हैं, फुल लिंक आपको रिप्लाई में मिल जाएगा।
1: Mornings made better.
2: Two frienda, char toast, butter jam, aur ek special chai.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: Get your flooring project started now with Flooring Extra at the Auckland Home Show. So come see us for Auckland Home Show exclusive savings on Bremworth carpets, quickstep laminate, timber and more. Can't make it to the show? Visit one of our 10 Auckland showrooms to discover the deals. But be quick, savings are only available from Thursday 10th to Sunday 13th of September.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: It's spring season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas and furniture. Plus, take a further 10% off all sofas. Hurry, sale ends Monday. Only at Freedom.
7: Spruce up and save big today only at Briscoe's with incredible up to 60% off store-wide savings on duvet, sheets, towels, air fryers, kitchen appliances and more. Stores open late today only at Briscoe's. See online for TCs and store hours.
8: thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
9: Hi New Zealand, Ashley America has cancelled their sofa orders and Big Save got them. So today you get half price sofas. Get 50% off selected sofas. Yes, 50% off. We've got large corner suites only $2,999. 3 plus 2 seater suites only $2,499. And a reversible chaise only $1,499. These deals will not be repeated. Stock is very limited. Don't miss out. Only at Big Save.
10: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
11: आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है. अ सिंपल कॉन्वर्सेशन कैन मेक अ डिफरेंस. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, टॉक टू समवन यू ट्रस्ट. अगर आपका कोई जान पहचान वाला मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, रीच आउट. टुगेदर वी कैन सेव लाइव्स. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑफर करता है. आज ही पहला कदम उठाइए. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
1: What's going on?
0: तो चलिए आज के जो डेली राउंडअप आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि राउंडअप या डेली राउंडअप में हमारे पास क्या कुछ अपडेट्स जो है ये सामने आए हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी, करप्शन एंड फ्रॉड विद इन न्यूजीलैंड्स ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम. और ये इन्वेस्टिगेशन एक अनयूजुअल रिजल्ट के बाद सामने आ रहा है, जबकि एक ड्राइवर लाइसेंस टेस्ट के अराउंड पूरे देश में कई सवाल जो ये उठाए जा रहे हैं. सो फार 23 ड्राइवर टेस्टिंग ऑफिसर्स जो है इन्हें सस्पेंड किया गया है, या फिर दे वास बीन आस्क्ड टू स्टूड डाउन एंड अराउंड 650 ड्राइवर्स जो है दे मे हैव टू सिट फॉर देयर टेस्ट्स अगेन. एनजेडटीए ने कहा है कि दे हैव नोटिस सम टेस्टिंग ऑफिसर्स वर रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स दैट वर आउटसाइड द नॉर्मल रेंज, जिसमें यूजुअली शॉर्ट टेस्ट टाइम्स और यूजुअली हाई और लो पास रेट्स जो है ये शामिल है. इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चली है कि कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद उनके लाइसेंस मिले हैं विदाउट कंप्लीटिंग प्रॉपर टेस्टिंग. और ये भी कहा गया है कि कंसर्न्स ये भी है कि हैवी व्हीकल लाइसेंसेस जिसमें ऑकलैंड शामिल है आर एक्सपेक्टेड टू बी पर्टिकुलरली अफेक्टेड इन रिगार्ड्स विद दिस. NZTA ने बताया है कि मोस्ट ड्राइविंग टेस्ट्स आर बीइंग कंडक्टेड प्रॉपरली, लेकिन वो अपनी ओर से पूरे एक्शंस ले रहे हैं जहां जहां पर कंसर्न्स रेज किए गए हैं और जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है. एजेंसी का कहना है कि फिलहाल वो एक स्ट्रॉन्गर कंट्रोल की तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ताकि बॉडी कैमराज फॉर टेस्टिंग ड्राइवर्स जो है या ड्राइवर टेस्टिंग ऑफिसर्स जो है ये वो इम्प्लीमेंट कर सके, जिसमें ज़्यादा मॉनिटरिंग हो सके और ट्रेनर्स को या फिर यू कहे कि टेस्टिंग ऑफिसर्स को फ्रॉड ट्रेनिंग फॉर स्टाफ जो है ये भी दिया जा सके. NZTA ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन विल कंटिन्यू थ्रू द रेस्ट ऑफ द ईयर और जैसे ही कुछ डिले सामने आते हैं, रीस्केड्यूलिंग या रीटेस्टिंग विल टेक प्लेस जैसे ही कुछ पुख्ता सबूत जो इस मामले में सामने आता है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कहना है कि दे हैव बीन ब्रीफ्ड अबाउट दिस होल सिचुएशन और वो इस पूरे मैटर को लेकर काफ़ी प्लीज है कि इसे काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है फिलहाल.
13: इसके अलावा बाकी एक एक खबरों में देखें तो हाउस प्राइसेस जो हैं 2021 में जो ऊपर गए थे, जो पीक पर पहुंचे थे, वैसे प्राइसेस जो हैं इस डेकेड के अंत तक शायद देखने को ना मिले.
0: मतलब
13: 2021 में घर के दाम जो है बहुत
0: ऊपर गए थे,
13: बहुत ऊपर थे. वैसे दाम आप शायद इस डेकेड के अंत तक ना देखें।
0: अच्छा,
13: ये बात कही है ISB ने।
0: ओके,
13: और रेडियो न्यूजीलैंड पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पब्लिश हुई है और सीनियर इकोनॉमिस्ट मार्क स्मिथ ने बताया कि इन द 30 years अंटिल नाउ 2020 न्यूजीलैंड हाउस प्राइसेस हैड इंक्रीज्ड 6-fold। फिर कोविड एरा पीरियड में वी हैड द पॉलिसी स्टिमुलस और उसके बाद द मोस्ट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इज टिपिकली हाउसिंग एंड दैट टुक ऑफ। और अभी भी हम उसके साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाउस प्राइसेस वे स्टिल 15% बिलो द पीक ऑन अ नेशनल बेसिस एंड 30% जब उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाता है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई चेंजेस नहीं इन नेशन वाइड मीडियन वैल्यूज दिस ईयर एंड एन इंक्रीज इन 3.5% नेक्स्ट ईयर। फिर वहां से प्राइसेस नॉमिनल इनकम के साथ आगे बढ़ती रहेंगी एंड एज अ रिजल्ट ऐसा नहीं लगता कि अंटिल लेट 2029 तक नेशन वाइड हाउस प्राइसेस विल अप्रोच द लेट 2021 पीक्स।
0: ओके, काफी इंटरेस्टिंग है। और इन द सेम रिगार्ड्स टॉकिंग अबाउट हाउसेस एंड होम लोन्स के बारे में कुछ डिटेल्स जो है ये पब्लिश किए गए हैं आज ही ऑन RNZ। एंड मैं ये पूरा आर्टिकल जब पढ़ रही थी तो कुछ बातें जो है सामने आई है कि अगर आपका जो होम लोन है इट्स कमिंग अप फॉर रिन्यूअल और आप सोच रहे हैं कि क्या आपको लॉक इन करना चाहिए अपना मॉर्गेज रेट फॉर अ ईयर या फिर आपको और लंबे समय तक जो ऑप्शन है ये सोचने चाहिए, तो मॉर्गेज रेट्स हैव बीन राइजिंग विद द बैंक्स करंटली ऑफरिंग 6 month रेट्स अराउंड 4.75% और 1 year रेट्स जस्ट अंडर 5% और 2 to 5 year रेट्स जो है दे आर बिटवीन 5.4% टू 5.7%। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि देर इज अ ट्रेड ऑफ, छोटा फिक्सेस जो है पर्टिकुलरली 1 year रेट का आर चीपर राइट नाउ और बोरोवर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू रिव्यू देयर फाइनेंसेस सूनर। लेकिन देयर इज अ रिस्क, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं यू कैन एंड अप पेइंग मोर व्हेन यू रीफिक्स। लॉन्गर फिक्सेस जो है ये कॉस्ट करते हैं लिटिल मोर टुडे लेकिन दे विल गिव यू अ सर्टेनिटी और आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर रेट्स जो है ये सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं। तो एक ऑप्शन है टू स्प्लिट योर मॉर्गेज जिसमें आप फिक्स कर सकते हैं उन पार्ट्स को फॉर अ शॉर्टर पीरियड एंड अनदर पार्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। दैट गिव्स यू सम स्टेबिलिटी ताकि आप जब तक यू नो फिलहाल जो भी सिचुएशन वर्कआउट कर रहे हैं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाए तब तक के लिए आप पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हुए फिक्स कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि देयर इज नो गारंटीड विनिंग स्ट्रेटजी लेकिन एक या फिक्सेस हैव ऑफन वर्कड आउट चीपर ओवर टाइम बट लॉन्गर टर्म्स के लिए इट कुड बी वर्थ वाइल अगर आप रेट्स जो है ये राइज करें which is more than expected currently. So, do you want the cheapest rate today? या फिर आपको और certainty चाहिए about your repayments? इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना फैसला जो है ये लेना है।
13: Just to let you know, $10 million jackpot इस weekend Powerball में must be won. It's a must win lotto this week.
0: I think कल तो 4 million था ना?
13: हाँ।
0: तो अब 10 million हो गया।
13: Saturday को 10 million. कल मैं बैठा था कुछ करने को था नहीं मेरे पास उतना ना? अरे सुन लो,
0: अच्छा सॉरी,
13: कल मैं बैठा था मेरे पास करने को कुछ खास था नहीं, आई वाज नॉट दैट बिजी, तो मैंने सोचा कि
0: लोटो खेलता हूँ,
13: नहीं बढ़ा देता हूँ 4 to 10 million।
0: अरे
13: क्योंकि फिर क्या होगा, लोटो न्यूजीलैंड मूव हो जाएगा इनटू द न्यू 14 बॉल फॉर्मेट।
0: ओ, जो एक्स्ट्रा बॉल्स ऐड किए जाएंगे, राइट राइट राइट राइट। सो 10 मिलियन इज व्हाट मस्ट विन दिस सैटरडे, तो आप भी अपनी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
1: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
1: आज की पहली बात, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो. लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है.
2: ओके.
1: और दूसरी बात आज की, पेमिनेंट सिर्फ माँ का होता है, लोग नहीं.
2: वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए इसी के साथ साथ अब आपसे चाहेंगे हम इजाज़त जाने की. हमारा अब आपसे इजाज़त लेने का समय हुआ है, जाने का समय हुआ है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए, आपके समय के लिए. कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक सुबह 6 पर. द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा लेकर आपके साथ हम जुड़ जाएंगे. Groove.

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल. 10th सितंबर आ गई. बताइए आप के लिए ऐसे चुटकियों में ये महीना भी लगता है ऐसे ही गुजर जाएगा. बस एक बात तो है कि जब आप एक कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं और जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तो एक बात है, कभी भी हार ना माने, क्योंकि यही समय है और यही वो स्थान है जब आपका अच्छे समय को हमने शुरुआत की थी. बिल्कुल. और ये समय की शुरुआत मैं कह सकती हूँ हमारे खुद के एक जज्बे के साथ होती है. आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम चाहते हैं आपको बताएं कि टुडे इज़ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे. अ सिंपल कॉन्वर्सेशन एक्चुअली कैन मेक अ डिफरेंस. इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, यू हैव टू टॉक टू समवन जिन पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं. इफ़ यू नो समवन जिनका कोई हार्ड टाइम चल रहा है, रीच आउट टू देम. टुगेदर वी कैन सेव लाइफ. और एशियन फैमिली सर्विसेज ये ऑफर कर रहे हैं आपको फ्री काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट. पहला कदम उठाइए. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट. थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए यहीं से एक एक्सपर्ट आपका साथ देने आने वाली हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे. बट फिलहाल के लिए यही कह सकती हूँ, जिंदगी है, जिंदगी के साथ प्यार कीजिए, जिंदगी को उस कदर लीजिए कि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, है कि नहीं. अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. मैं काशिक आपका साथ निभा रही हूँ 12 बजे तक कशिश फूड्स के सौजन्य से. लुक आफ्टर योरसेल्फ्स एंड स्टे सेफ वेयरएवर यू आर.

0: Birds Adda.
1: So very very good afternoon to everybody. और good afternoon तो नहीं, मैं good morning ही कहना चाहूँगी. आज का जो दिन है, एक World Suicide Prevention Day है. और किस तरह से हमें एक केयरिंग कॉन्वर्सेशन अगर हम किसी के साथ कर लेते हैं, शायद उनके लिए उनकी ज़िंदगी में वो मायने बदल जाते हैं, शायद उनके लिए उनकी ज़िंदगी ही बदल जाती है. इसी के ऊपर बात करने के लिए आज मैंने इनवाइट किया है मिथिला गडकरी को फ्रॉम एशियन फैमिली सर्विसेज. मिथिला, आप बता सकती हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, कि क्या हम ओपनली सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात कर सकते हैं? Why is it so important? I can say that.
2: Thank you so much, Kashika ji. मुझे हम FM पर बोलने का मौका देने के लिए. Asian Family Services आज बहुत ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है. आज World Suicide Prevention Day है और हम हमारा कैंपेन रीच इन रीच आउट लॉन्च करने जा रहे हैं. तो इस कैंपेन के दौरान हम ये लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि ओपन और रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो हमारे बीच में जो शेम है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए वो कम कर देगा. वो लोगों को लेस अलोन, लेस लोनली फील करने देगा. तो अगर किसी के बिहेवियर में या नींद, भूख या डेली रूटीन में आपको लगता है कि चिंताजनक बदलाव दिखाई दे रहा है, तो कोई अजम्पशंस ना बनाएं. जेंटली चेक इन करें उनके साथ, ये बहुत जरूरी है.
1: तो अगर जेंटली चेक इन करना है तो किस तरह से कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करें उनके साथ?
2: हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कॉन्वर्सेशन सिंपल रहे और जेन्युइन रहे. जैसे आप बोल सकते हैं कि मुझे आपकी चिंता हो रही है, क्या आप बात करना चाहेंगे? जब कोई आपसे बात करे, खुल रहा है आपसे बात कर रहा है, तो उनकी बात शांति से सुने, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज न करे और उन्हें सही सहायता से जुड़ने में मदद करें. लेकिन इस दौरान अगर आपको लगे कि कोई इमीडिएट डेंजर है उनकी जान के लिए या आपकी, तो वो पर्सन को अलोन ना छोड़े और 111 पर कॉल करें.
1: ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंपल रखिए, जेन्युइन रखिए और आप उनसे जब बात करें तो कहें कि आप क्या कुछ बात करना चाहते हैं. उनकी बात जो है हम ध्यान से सुने, आराम से सुने, उनकी भावनाओं को हम इग्नोर ना करें और उनको सही सहायता से जोड़ने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं. और अगर कोई आपको इमीडिएटली डेंजर लग रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा आतुर हो गए हैं, तब उस समय 111 हम कॉल कर सकते हैं. बट बिफोर आई लेट यू गो, ये क्या कोई इसे हम जाने से पहले आप कुछ क्या कहना चाहेंगे, एनी क्लोजिंग मैसेज?
2: अ सिंपल कॉन्वर्सेशन कैन मेक अ डिफरेंस. तो रीच इन टू नोटिस व्हाट इज हैपनिंग, अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या हो रहा है और रीच आउट विद केयर. हम दूसरे लोगों से मदद मांग सकते हैं या फिर एशियन फैमिली सर्विसेज जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जो फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. आप हमें कॉल कर सकते हैं एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342. आपको मुश्किल समय का सामना अकेले करने की जरूरत नहीं है.
1: या एशियन फैमिली सर्विसेज आपके साथ देने के लिए तैयार है. या यू आर सो राइट, आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है. कोई मुश्किल सामना जो आप कर रहे हैं, तो किसी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो आप अकेले अपने आप को महसूस मत कीजिए, बल्कि हेल्पलाइन एशियन फैमिली सर्विसेज की आप उन्हें कॉल कर सकते हैं ऑन 0800-862-342. मैं तो यही समझती हूँ मिथिला, दैट आज क्योंकि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो जान है तो जहान है और ये ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है और इसे हमें जीना ही जीना चाहिए और खुलकर, हंसकर और खूबसूरती के साथ जीना चाहिए. सो बिग थैंक यू टू यू, आपसे दोबारा बातचीत करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.
2: थैंक यू,
1: बाय
2: बाय. माय टाइम विद कशिका. आजकल चल रहा है बहुत न्यूज
1: में, हैप्पी तो नहीं. व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन हमने अभी डॉक्टर मिथिला के साथ किया. लेकिन एक चीज़ है, अगर आप कहीं से भी सुन रहे हैं और आपको लगता है कोई मैसेज आपको देना चाहिए आज के दिन स्पेशली, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रोत्साहित आपकी वर्ड्स बहुत फ़र्क पड़ता है. किसी के लिए भी अगर आप ये मैसेज देना चाहते हैं मोटिवेशनल, डेफिनेटली दीजिए. और फिर शाउट आउट कमिंग अप नेक्स्ट.
0: मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा राधा रे।
3: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
5: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call. Dash!
6: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
7: Yes, and Zillow sounds great, but I'd really like to see one in person.
6: Now you can. Come and walk through two fully finished Zillow homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
7: Now that I like the sound of.
6: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillow.co.nz.
8: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
9: The masalas are ground fresh in-house every single day.
8: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
9: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
8: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
10: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुगाव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुगाव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
11: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
12: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
13: Office Shoutout.
1: ऑफिस शाउट आउट की बात करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है सुशील जी, आपका टेक्स्ट आया है वेरी हैप्पी मगी, अपने अंदर झांकते हुए खुद की हेल्प करने वाली। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एंड हेल्थी। गुड मॉर्निंग एश फ्रॉम सुशील्स मसल शेफ कैफे वेलिंगटन। काशिका जी, जान है तो जहान है, आई टोटली बिलीव इन दिस। जान है तो जहान है भाई, जब तक आप अपनी जान की खुद की खिदमत नहीं करते, खुद की सेवा नहीं करते, तब तक क्या मतलब बनता है किसी चीज़ का। एब्सोल्युटली विद यू एंड आई वुड लव टू गेट सम मोर लवली मैसेजेस। अ बिग थैंक्स एश फॉर योर लवली मैसेज।
12: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वैसे मैदान हम फतेह तो करना ही चाहते हैं, लेकिन हाउस प्राइसेस जो हैं उनकी सिचुएशन अगर देखी जाए तो ये 2021 में इसका पीक था। एंड यू नो कहा ये जा रहा है, सीनियर इकोनॉमिस्ट जो है मार्क स्मिथ, जो लगभग 30 इयर्स का भी एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्होंने कहा कि यू नो 2020 की जब ये बात करें कि न्यूजीलैंड के हाउस प्राइसेस हैज़ इंक्रीज इन सिक्स फोल्ड, ये 2020 की बात है, लेकिन अब जो एक रिज़ल्ट सामने आ रहा है उसके ज़रिए इतना ही पता चल रहा है दैट ये जो हाउस की प्राइसेस वगैरह हैं ये अब बढ़ने नहीं वाले हैं अंटिल 2030 एंड दिस विल नॉट गो बैक टू द लेवल ऑफ 2021। अब आप बताइए ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। हमें एक कुछ लोग जो हैं, इट्स द बेस्ट आई कैन से बायर्स मार्केट, यू शुड गो इन फॉर दैट।

0: Playtime with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: तो इस हफ्ते हैवान फिल्म जो है रिलीज होने वाली अक्षय कुमार और सैफ अली खान की, और इस थ्रिलर ने एक अटेंशन ग्रैब कर लिया है और कहा यह जाता है दैट ये फिल्म जो है इसकी विजुअल बिगनिंग जो है इट्स बीन स्लाइटली मॉडिफाइड, कुछ एक आध डेरोगेटरी वर्ड्स थे उनको भी चेंज कर दिया गया है, और थैंकफुली ये विजुअल कट्स जो इन्फोर्स किए गए इज़ नॉट गोइंग टू हैम्पर दी यू नो द मूवी इटसेल्फ. तो ये 164 मिनट्स की है एंड यानी कि 2 hours 44 minutes के करीब की फिल्म है. लेट्स सी क्या होता है. अक्षय कुमार सैफ अली के साथ साथ श्रिया पिलगांवकर और साथ में सयामी खेर जो है इस फिल्म में आने वाले हैं, और ये कल रिलीज होगी.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल, और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
4: Spruce up and save big today only at Briscoe's with incredible up to 60% off store-wide savings on duvets, sheets, towels, air fryers, kitchen appliances and more. Stores open late today only at Briscoe's. See online for TCs and store hours.
5: The Auckland Home Showers are now at Auckland Showgrounds, with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice in the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Auckland Home Show, New Zealand's number one home show. We'll see you there.
6: What's better than getting the latest Galaxy phone? Getting a bonus 50-inch Samsung TV with it from Spark. Buy the new Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra or S26 Ultra interest-free over 24 or 36 months with an eligible pay monthly mobile plan, and you'll get a bonus 50-inch Samsung TV. New Galaxy phone, new Samsung TV from Spark. Minimum $99 deposit, TV delivered separately. T's and C's apply.
7: 1% finance and $2,000 off. Exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off. Experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
8: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: I knew that इसी तरह का कोई एक सवाल मेरे पास अभी आने वाला है, and yes, it does happen. कभी कभी dreaming about some dead means के physical death instead of using major life transitions. यहाँ पे ये एक प्रोसेस होती है, एक डीप इमोशन होता है. अब किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर आप ये ड्रीम कर रहे हैं, दिस कैन सिग्निफाई योर कनेक्शन जो उनके साथ आपका है वो शिफ्ट हो रहा है. हो सकता है दैट यू आर कटिंग टाइज, और ये भी हो सकता है सीइंग समबडी. जब आपकी पार्ट एंड पार्सल आपकी लाइफ का कोई है, इट्स लाइक अ जॉब, इट्स अ काइंड ऑफ एन आइडिया, इट्स काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप ऑल्सो जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में है, एंड वो आपकी ज़िंदगी में वो इफ़ेक्ट जो है अब लगता है कम होता चला जा रहा है. मोस्टली ये एक पर्सनल ग्रोथ और एक फ्रेश स्टार्ट के लिए भी कहा जाता है. बट दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल पार्ट जहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग जो होता है ग्रीव करता है, और वो एक प्रोसेस होती है किस तरह से हमारा ब्रेन उस चीज़ को हैंडल कर लेता है. कभी कभी ऐसा होता है कि एक इनएक्टिव पर्सन जो है, जो अब नहीं रहा, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत कुछ रखता है, और आपकी वो मेमोरी जो है हील अभी तक नहीं हुई. लॉट ऑफ पीपल जो ड्रीम करते हैं इस तरह से एक बॉन्डिंग जो है, इमोशनल बॉन्ड, उसके बारे में भी ये बातचीत होती है.
0: दिल से दिल तक. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: सही समय कभी नहीं आता, जो समय चल रहा है उसी को सही करना पड़ता है. कितना ब्यूटीफुल लिखा है आपने आकाश.

0: 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: दिस इज रियली लवली जब हमारे लिसनर्स जो हैं जुड़ जाते हैं एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए तो आपने लिख के भेजा यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और आप खुश हो तो आप बहुत अमीर हो ओ वाओ वेरी वेरी प्रिटी आपने ये लिख के भेजा 3552 आपका ये टेक्स्ट बहुत अच्छा है फिर आपने लिख के भेजा समय बहुत ताकतवर चीज़ है अच्छा है तो अपनी चलती है और बुरा है तो सबकी चलती है वो तो बात सही है लेकिन हमें अपने आप को बिल्कुल एक दिशा में एकजुट होकर काम करना है बिल्कुल इसी तरह से मैं चाहती हूँ मेरे जो गाने आज के मोटिवेशनल गाने हैं ज़िंदगी से रिलेटेड हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए टाइम इज़ मनी

0: Rybakina.
1: It's going to be a tough match. Last time we played, it was a tough three-setter for me, and I'm looking forward to the battle.
0: And in rugby with All Blacks, travel and hospitality.com, a former Black Ferns loose forward and three-time World Cup winner, Rochelle Martin, has been inducted into the World Rugby Hall of Fame.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
3: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
4: सूचित किया जाता है कि मिस्त्री और श्याम मिस्त्री के पिता हीनाबेन मिस्त्री के पति पाकुरंगा के विनोद भाई मंगूभाई मिस्त्री की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-0257-0160 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, मिस्त्री और श्याम मिस्त्री के पिता हीनाबेन मिस्त्री के पति पाकुरंगा के विनोद भाई मंगूभाई मिस्त्री की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-0257-0160 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि रावी रावी बा के स्वर्गीय वेलू रेड्डी के पुत्र सरस्वती रेड्डी उर्फ बेबी के पति पापाकुरा के विष्णु रेड्डी वेलिंगटन के रुकमणि सामी उर्फ मंजू वैंकूवर कनाडा के कर्णागरन रेड्डी के पिता पापाकुरा के श्री मुत्तुसामी रेड्डी की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल सुबह 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसेट क्रिमेशंस में किया जाएगा। आज आप अंतिम दर्शन के लिए 7 से 8 बजे के बीच एंस फ्यूनरल होम पहुंच सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 027-562-8629 पर संपर्क भी कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, रवि रवि बा फिजी के स्वर्गीय वेलू रेड्डी के पुत्र सरस्वती रेड्डी उर्फ बेबी के पति पापाकुरा के विष्णु रेड्डी वेलिंगटन के रुकमणि सामी और उर्फ मंजू वैंकूवर कनाडा के कर्णागरन रेड्डी के पिता पापाकुरा के श्री मुत्तुसामी रेड्डी की मृत्यु हो गई है। दर्शन के लिए आप आज 7 से 8 बजे के बीच एंस फ्यूनरल होम पहुंच सकते हैं और अंतिम संस्कार कल सुबह 10 बजे वहीं किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 027-562-8629 पर आप संपर्क कर सकते हैं। रॉड्रिक राम और शिमल राम के पिता उर्मिला देवी के पति विसारी लामी फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैट बुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-870-252 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, रॉड्रिक राम और शीमल राम के पिता उर्मिला देवी के पति विसारी लामी फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैट बुश के निवासी राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 021-870-252 पर आप संपर्क कर सकते हैं। रीटा कुमारी और रानी रेखा की माँ रॉबी हसन और नरेश कुमार के सासू माँ वो तो ले वो फिजी नांदी फिजी के भूतपूर्व निवासी मानुरेवा के चंद्रवती कृष्णा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार इसी शनिवार के दिन दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 021-619-359 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, रीटा कुमारी और रानी रेखा की माँ रॉबिन हसन और नरेश कुमार की सासू माँ वो तो लेवो फिजी नांदी के भूतपूर्व निवासी मानुरेवा के चंद्रवती कृष्णा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार इसी शनिवार के दिन दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 021-619-359 पर आप संपर्क करें।
3: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, हाउ आर यू। और आज का एक ये जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हमें आपको याद दिलाना है कि हमारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, और ऐसे में थोड़ी देर पहले हमने पिछले घंटे पर उनकी टीम से एशियन फैमिली सर्विसेज से बात भी की थी, और मैंने आपसे कहा था कुछ मैसेजेस अगर आप भेजें, तो एक मैसेज विशाल आपने भेजा है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड फेथ इन गॉड टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम एंड मैनी टाइम्स। सो वेल सेट कशिश, फूस के सौजन्य से माय टाइम लेके मैं काशिका 12 बजे तक आपका साथ दे रही हूँ। मिड मॉर्निंग मजा बचाओ क्या। लाइफ इज फॉर हैविंग सम फन, सम हैप्पीनेस, और ऐसे में मजा नहीं लाइफ इंपॉर्टेंट है।
1: मनी बेन, शकुंतला कांता की बड़ी बहन। मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी।
2: शादी कर, शादी कर, शादी कर, आपको ये शादी कर,
1: और कुछ काम नहीं है क्या? गई दिवाली आ गई होली, गई दिवाली आ गई होली, अरे पोस्टपोन कर दे डोली, मैं घर वालों से

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Beyond the debt, what do success actually mean? अब ये बातें breakfast show में विजय और पूजा ने की. अगर इनका audio आपने सुना है तो BF लिख के भेजें 5599.

0: Matter.
1: एक बात तो है कि कुछ लॉन्ग गैप्स खाने के बीच में नहीं रखने चाहिए. गोइंग फॉर सो मच विदाउट नॉट ईटिंग एनीथिंग, इससे क्या होते हैं, आपको लगता है कि शायद आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है या आपका वेट लॉस हो रहा है. एक स्टडी के जरिए पता चला है कि लॉन्ग गैप्स जो हैं मील्स के बीच में ऑन एडल्ट्स, स्पेशली दोज विद द ओल्डर एज ग्रुप्स, कैन गेट इफेक्टेड. तो देयर वॉज अ रिसर्च एंड अ स्टडी डन ऑन 3000 पीपल एज ओवर 60, और उनके ऊपर ये पता चला कि दे डेवलप क्रॉनिक डिजीजेस फास्टर जहाँ पे लोग शॉर्टर गैप्स में खाना खाया करते थे, मील्स को खाया करते थे. सो द डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर अमंग्स पीपल जिनकी एज 60 प्लस होती है. एंड दिस इज़ नॉट मेंट दैट कि फास्टिंग इस डिजीज़ को बढ़ा देता है, बट नॉट एवरी ओल्ड पर्सन शुड गो फॉर लॉन्ग इंटरवल्स और दैट ऑल्सो विदाउट फूड. अब ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे बढ़ जाता है, स्टडी के जरिए पता चलता है प्रॉबेबली ये एक डेवलप कर लेते हैं. अगर आप एक पर्टिकुलर यंग एज से इस चीज़ की शुरुआत करने लगते हैं, फास्टिंग आपकी बॉडी को हेल्प करती है टू यू नो सी योर शुगर एंड स्टोर्ड एनर्जी एक्सेट्रा, आपका फैट उसमें, बट उसके बावजूद आई थिंक मेटाबॉलिज्म पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. कमिंग अप नेक्स्ट सिक्स वर्ड स्टोरी, आज जिंदगी पर कुछ बातें करते हैं.

0: Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, GEM Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए.
2: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m. handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
3: Spruce up and save big today only at Briscoe's with incredible up to 60% off store-wide savings on duvet sheets, towels, air fryers, kitchen appliances and more. Stores open late today only at Briscoe's. See online for TCs and store hours.
4: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He was wearing odd socks. He crossed his feet. No one seemed to notice. The second time wasn't quite as dramatic. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
5: So, you've been thinking about adding a modular home to your property?
6: Yes, and Zillow sounds great, but I'd really like to see one in person.
5: Now you can. Come and walk through two fully finished Zillow homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
6: Now that I like the sound of.
5: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillow.co.nz.
7: Comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
8: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
9: Wow, I have got something very pretty. 7545, aapne likhe bheja hai. Born, dreamed, loved, lost, learned, lived. Kitne saari cheeze aapne ek saath isme keh di hai. Born, dreamed, loved, lost, learned, lived. Perfect. I think ek kitna bada sabak aap zindagi ka sikha rahe hain. अच्छा, मैंने एक अपने लिए सिक्स वर्ड स्टोरी रेडी की थी एंड आई थॉट आई शुड शेयर दैट विद यू. प्लान्ड एवरीथिंग, लाइफ केप्ट एडिटिंग मी. प्लान्ड एवरीथिंग, लाइफ केप्ट एडिटिंग मी. और आई थिंक ये एडिट्स जो हैं टिल द एंड ऑफ आर लाइफ ये चलती ही रहती हैं. बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वक्त सिखा देती है, बता देती है. लेकिन अभी एक चीज़ आपको और बतानी है. ऑन अनदर नोट, फिजी कीर्तन एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है जहां पे हमें आपके हेल्प, आपकी सपोर्ट चाहिए. अब फिजी कीर्तन संग्रह में ऑकलैंड के कलाकारों की कुछ आवाज़ें हमें चाहिए और हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुँचें. अब 25th of September के दिन ये वैदिक सेंटर पापा टोई में इसकी रिकॉर्डिंग होने वाली है. अगर आप ये अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो रजिस्टर कीजिए. KR लिख के भेजिए कीर्तन रिकॉर्डिंग का शॉर्ट फॉर्म 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा. रजिस्टर कीजिए. याद रहे, रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग का स्पॉट मिल गया है. हमें सिर्फ 20 आर्टिस्ट की ज़रूरत है और हम आपको कंफर्मेशन आने पर फौरन कॉन्टैक्ट करेंगे. रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर तक ही अवेलेबल है.
8: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
1: श्री राम मंदिर हेंडरसन में 15 तारीख से गणपति जी की स्थापना करके एक विसर्जन का भी प्रोग्राम किया जा रहा है, तो 7:20 से 9 बजे तक आप पहुंच सकते हैं वहां।

0: airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Bollywood ka asli blockbuster.
2: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: तो याद रहे कि ये बोर्डिंग कॉल आपके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, बस अब ये काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है, यानी कि दो रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआटु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 कैश स्पेंड करने के लिए आपको मिलने वाला है। आपके लिए बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है, चलिए चलिए जल्दी से बोर्डिंग गेट यानी कि रुवा ऐप की तरफ पहुंच जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबमिट करना। कभी कभी कोई मुहूर्त होता है, कभी कभी एक लकी डे होता है, रुवा ऐप पे जाएं और जाके बोर्ड करें। अगर आपको यहाँ इशू आ रहा है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आप BC लिख के भेजें 5599 पे, ऑटो रिप्लाई में लिंक आएगा, आपको लिंक उसी दरवाजे तक ले जाएगा जहाँ से आपको बोर्ड करना है। बस जाइए इस कंपटीशन के पेज पर, पहुँच जाइए, अपनी जो एंट्री उसको ऐड कीजिए और आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड करेंगे फॉर द अनफॉरगेटेबल वनुआटु गेटवे। ये फ्लाइट मिस मत कीजिएगा क्योंकि इट माइट टेक यू टू पैराडाइज। याद रहे आप के ये बोर्डिंग कॉल जो है आपके लिए, हम बोर्डिंग कॉल सोलोमन एयरलाइंस लेकर आए हैं जो हफ्ते में चार बार नॉनस्टॉप ऑकलैंड टू वनुआटु फ्लाई करते हैं। इनकी ज़्यादा जानकारी के लिए flysolomons.com के ज़रिए आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, हमारे टीज एंड सीज जो हैं उन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही स्पेशल दोस्त है जो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, और इनका जन्मदिन जो है, प्रज्ञा रेगे, आप ASB के लिए काम करती हैं, आपकी फ्रेंड्स फ्रॉम ASB, आपकी सुपर बीवी ग्रुप जो है जिसमें आपके लिए आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आप बिराज है, रश्मि है, और साथ साथ आपके लिए यहाँ शर्मिला भी है और साथ में मीनाक्षी भी है, बहुत सारे लोग, एंड योर फैमिली इज ऑल्सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। सो डू लुक आफ्टर योरसेल्फ, स्टे इन योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ एंड कीप स्माइलिंग एज यू ऑलवेज डू। अ हैप्पी बर्थडे विश फ्रॉम मी कशिका एज वेल एज द टीम ऑफ हम। दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक गोइंग आउट, एंड डू यू नो दैट यू शेयर योर बर्थडे विद नन अदर दैन द सिंगर चिन्मई, जिनकी आवाज़ में अब यह गाना सुनेंगे आप।

0: वाह,
1: हाउ
0: अद्भुत।
2: एक रिसर्च के जरिए पता चल रहा है, वुमेन्स रिफ्यूज के जरिए पता चलता है कि दैट दे आर विक्टिम्स ऑफ फैमिली वायलेंस एट वर्क। अब ये अंडर डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट जो लगभग 8 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जो इफेक्ट होते दे इंटाइटल्ड अप टू 10 डेज ऑफ पेड लीव इन अ ईयर, एंड यू नो ये रिक्वेस्ट जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स भी आपको मिल जाती है। सो ये बात पता चल रही है देर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड, बट एक चीज़ जो बढ़कर सामने आ रही है, ये रिपोर्ट बढ़ती चली जा रही है, द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली फ्रॉम 9% हैज़ गॉन अप टू 34% सिंस दिस एक्ट हैज़ कम इन टू फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दैट वुमेन आर एक्चुअली बींग पार्ट ऑफ और गेटिंग दी डोमेस्टिक वायलेंस। तो मोर एंड मोर वुमेन हैव रिपोर्टेड एट वर्क प्लेस एंड दे आर लुकिंग फॉर सेफर जोन्स एज वेल। Let's try and help them out.
3: We gotta go.
4: Are you ready?
5: Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
7: Vacation. Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
8: Let's go.
7: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.

0: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
1: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
0: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
2: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
3: Spruce up and save big today only at Briscoe's with incredible up to 60% off store-wide savings on duvets, sheets, towels, air fryers, kitchen appliances and more. Stores open late today only at Briscoe's. See online for TCs and store hours.
4: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
5: Great news! Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
6: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
7: Rescue me, recycle me.
8: रेस्क्यू मी रिसाइकल मी में मेरे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, काफ़ी सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जो मुझे लगता है मुझे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ ऑकलैंड। और मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सारा रॉ मटेरियल जो होता है आप शायद फेंक देते हैं। ब्रोकन ग्लास की अगर मैं बात करती हूँ, ये बाकी मटेरियल्स के साथ इसको हम ऐड कर सकते हैं सिंगल स्ट्रीम रिसाइकलिंग बिन्स। अब कुछ एक ये एरिया है जहाँ पर जाकर आप ये ग्लास जो है इसको ग्लास कलेक्शन का एक ड्रॉप ऑफ होता है वहाँ पे आप कर सकते हैं। कभी एक चीज़ होती है ग्लास में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ सकती हैं। वी हैव टू बी माइंडफुल व्हेन वी आर ट्राइंग टू थ्रो समथिंग। सो एक स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को जो है प्रिपेयर कीजिए। ग्लास कंटेनर्स जो हैं अगर आप उनको रिसाइकल करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो टू द काउंसिल एंड चेक दैट आउट।
6: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI।
9: तुमसा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: जो व्यक्ति खुद कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और कहते हैं ना कि जीवन में तीन चीजें दोबारा वापस नहीं आती, समय एक बार बीत जाने के बाद, शब्द एक बार कह दिए जाने के बाद, अवसर एक बार हाथ से निकल जाने के बाद। इसलिए आज से अपने समय, शब्द और अवसर की समझदारी से उपयोग कीजिएगा और समय की कदर करके बोलने से पहले सोच लें, मिले हुए अवसर को पहचान कर उसका सही लाभ उठाएं। Isn't that true? Yes, इसी नोट पर थैंक यू वेरी मच फॉर हमिंग अलॉन्ग विद मी, एंड आई डू होप कि आपने यहाँ से आज मुझसे कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर सीखी होगी या कुछ ना कुछ ऐसी बात पिक ज़रूर की होगी जो आपको लगता है कि या ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है, ये मेरी ज़िंदगी के साथ मैं इसे रिलेट कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। बस तो कीजिए स्वीकार, कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार या बृहस्पतिवार मेरी मुलाकात होगी, वो दिन कहलाएगा शानदार सा शुक्रवार। आपसे मुलाकात तो मेरी होगी ही होगी, लेकिन चाहूँगी कि आप ज़रा कोई फीडबैक देना है तो मुझे आप भेज सकते हैं buzz@hamfm.com पे, या आप kashikasingh@mediaworks.co.nz पे भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ, दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं है उसको।
3: बाल जा रहे हैं ना।